मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन। विषय है योग निद्रा। वाचक स्वर चैतन्य गुरु का।
1: योग निद्रा, ये योग निद्रा, इसका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको जानने से पहले हम निद्रा क्या होती है, यानी रात को हम सो जाते हैं तो होता क्या है, सो जाने का मतलब जाते कहाँ। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और वो हमारा कंठ के पास में हिता नाम का एक नाड़ी होता है जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो दिन भर हम काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारा बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम सो जाते हैं रात को। लगभग आम व्यक्ति के लिए 6 से लेकर 8 घंटे का नींद जरूरत पड़ता है। इन 6 से 8 घंटे में होता क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में मिल जाता है, तब वो जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। जब वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति अपना जीवन में जो कुछ भी उन्होंने देखा, सोचा और वो सभी बातें वो किया नहीं है, कर्म में नहीं लाया, और वो नींद में ड्रीम्स जो हमारे ख्वाबों के माध्यम से बाहर निकलता है, और उस स्थिति के बाद में जब वो अनकॉन्शियस माइंड पे लेवल जाते हैं तो गहरा नींद में चले जाते हैं। अब योग निद्रा का मतलब है इस कॉन्शियस माइंड को जागते हुए कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में मिल जाना, मतलब हमारा सोच के अंदर में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दीवार होता है, उस दीवार को तोड़ देने का नाम योग निद्रा है। मतलब हमारा कान सुनते रहेंगे और शरीर स्पर्श होते रहेगा लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करते किससे, जब हम कॉन्शियसनेस से पहचानते हैं तो अब कॉन्शियसनेस को हम काम देते हैं। तो इसमें 3 प्रक्रिया होता है। नंबर 1, हमारा कॉन्शियस माइंड को हम अपना अंगों में ले जाते हैं, लेट करके आंख बंद करके अपना पूरा मन को, चित्त को, जो सिर के सिरे पर जहां ब्रह्मरंध्र कहलाता है वहां पर केंद्रित करते हैं। वहां से केंद्रित करता हुआ उसको हम मेरुदंड के ऊपर जहां से शुरू हो रहा है वहां पर रिंग के नीचे, रिंग बीच में जगह पर, इस तरह हमारा कॉन्शियस माइंड को चलाते रहते हैं। ऐसा पूरा मेरुदंड के ऊपर, रिंग के नीचे, रिंग बीच में जगह जहां पर मज्जा, बोन मैरो कहते हैं, तो उसको देखता हुआ नीचे तक आते हैं। अब ऊपर से जो रंध्र निकला हुआ है वो मेरुदंड के आखिरी कोना पर वो जो रंध्र निकलता है, अब उसके अंदर में से हम छीनता हुआ, उसके अंदर में रोशनी देखता हुआ ऊपर को पहुंचेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरा सीधा हाथ सीधे तरफ, इसमें पूरा शरीर के अंदर में हर अंग प्रत्यंग में से पूरा हम अपना मन को गुजारेंगे। इससे क्या होगा, आज तक हम मन का बात सुनते आए हैं, अब हम क्या करेंगे, मन को काम दे रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे मन का काबू में से बाहर आ रहे हैं। इस तरह हम पूरा शरीर को करने के बाद दूसरा एक स्टेप होता है जिसमें हम मन को बिल्कुल काम नहीं देते हुए लेटे रहेंगे, जिसको असली योग निद्रा बोलते हैं। इस तरह हम 15-20 मिनट बिना किसी संपर्क का ऐसा लेटे रहेंगे। इस तरह 5 मिनट हड्डियों में और शरीर में देखना और 15-20 मिनट बिना संकल्प का रहना, लगभग 35 मिनट का विधि है, जिससे हम 6-7 घंटा सोने से जो आराम मिलता है वो आराम 35 मिनट में मिल सकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन। विषय था योग निद्रा। वाचक स्वर था चैतन्य गुरु का।

जी हाँ, आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही समय बाद 7:10 पर कार्यक्रम होगा खेतीहर वास्ते। विषय रहेगा कंपोस्ट खाद के फायदे। 12:50 पर दोपहर कार्यक्रम खेत खलिहान में ग्राम श्रोता सुनेंगे जानकारी, फसल चक्र कम लागत ज्यादा उत्पादन। रोज की भांति चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7:00, जिसमें आज ग्राम श्रोता अपने व्हाट्सएप, ईमेल और पत्रों पर आधारित अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे। इसके अलावा उपलब्ध हुआ तो बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी ग्राम श्रोताओं को इस कार्यक्रम में दी जाएगी। मानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर। आज सुनिएगा भाग संख्या 263, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर, शोभना राव और रविंद्र साठे का होगा। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मुरमंगल आप सुना करते हैं 9:10 पर। कलाकार रहेंगे राजीव खान। प्रोग्राम सुप्रभात होगा 7:30 पर। कुछ युगल फिल्मी गीत आप सुनेंगे 9:30 पर। दिन में 10:00 फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा सुहाना सफर। कार्यक्रम सैनिकों के लिए दिन में 11:00। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। चंद और फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं दोपहर बाद 2:30। प्रोग्राम फिल्म संगीत होगा शाम 7:45 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और रात 10:00 आप सुना करते हैं हेलो मनभवन। प्रस्तोता रोहिताज शर्मा, निदेशक संयोजक नवीन सिसोदिया। युवाणी में युवा श्रोता शाम 5:00 सुनेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का महत्व। आपकी पसंद ये कार्यक्रम फरमाइश पर आधारित होगा और टुडे हिस्ट्री विषय पर जानकारी। दोपहर 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में विश्व साइकिल दिवस विषय पर जानकारी, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, कुछ उपयोगी टिप्स, पसीने की दुर्गंध से कैसे पाएं छुटकारा। एक अन्य विषय पर चर्चा रहेगी बचे हुए खाने का सही उपयोग कैसे करें। इसके अलावा बहनें अपनी पसंद के कुछ फिल्मी नगमे भी इस कार्यक्रम में सुन पाएंगी। सुगम संगीत में 8:45 पर आप कुछ भजन, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर चंद गजलों का लुत्फ उठा सकते हैं। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:40 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को हैं। अब पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रशासनेन

0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: राम राम। किसान भाइयों, आप सगला आजकल देखण लाग रहे हैं माटी की जिकी उर्वरा शक्ति है बिना बनाए रखने खातर आजकल प्राकृतिक खादा को जिको उपयोग है वो दिन ब दिन बढ़न लाग रहे हैं। आप प्राकृतिक खादा में गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट खाद होगी और हरी खाद होगी, ए सब बढ़िया है। पिछले कई साल में कंपोस्ट खाद बनाने खातर केंचुओं को प्रयोग होने लाग रहे हैं। आप सगला जाना ही है जिकन आप वर्मी कंपोस्ट भी कह देवा। वर्मी कंपोस्ट केचुआ की मदद तो बनेड़ी जैविक खाद है जिन्हें किसान भाई आप भी बना सके हैं। इन्हें जरूरी को नहीं कि भाई आपा बाजार में लेगा वहाँ, अगर आपा ने इनकी सही विधि और सही तरीकों पता हुआ है तो किसान भाई ने आप भी बना सके हैं। तो इन विधि के ऊपर जब आप बात करें किसान भाइयों, तो सारों पहले तो आपने अच्छी नमी और बढ़िया तापमान वाली जगह देख कर रखनी है जिनके ऊपर क्या है कि भाई आपा एक छप्पर बना सका या अस्थाई आपा शेड बना सका। इस शेड की लंबाई और चौड़ाई जिकी भी आपा टैंक बनावांगा आपा वर्मी टैंक बिंग संख्या पर निर्भर करेगी। वर्मी टैंक को जिको औसतन साइज है वो भाई लोगा 3 मीटर चौड़ो, आधा मीटर गहरो और 10 मीटर लंबो हो है। वर्मी कंपोस्ट बनाने खातर सामग्री के रूप में आपा वनस्पति कचरो है ना बेने भी इस्तेमाल कर सका, जिया अपने कृषि अवशेष हो गया, अपने केला और बबूल की पत्तियां होगी, दूसरी कोई और हरी और सूखी पत्तियां होगी, सड़ी गली सब्जियां होगी, सड़े गड़े फल हो गया और गोबर ऐ में काम में आवे। वर्मी टैंक में भाई लोगों आपा 6 इंच नमी युक्त वनस्पति कचरा की आपा तय लगा देवा सबों पहले, फिर 6 इंच की परत पर लगभग आपा 6 इंच ताई अच्छो सड़े गोबर घाल देवा। ई गोबर की तय पे आपा लगभग 500 1000 केंचुआ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब में आपने डालना है। फिर बिंग बाद ई तय पर आपने 1 फुट ऊंची आधी सड़ी और बारीक वनस्पति कचरा की तय लगा देनी है। तो इंग बाद के उसी की ढेर की ऊंचाई होगी लगभग 2-3 फुट तक हो जाएगी। बाद में आपने क्या करना है, इन्हें जूट के बोरों आपा ढक देना है। कोशिश आपने आई रखनी है कि जिको आपनो शेड है विंग अंदर अंधेरों बने रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्या है कि अगर अंधेरों रहे तो भी मैं केंचुआ है जिका ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो शेड के ऊपर भी आपा ध्यान रखा, चारों तरफ आपा शेड के आसपास घास फूस लगा के रखा और बोरो लगा के बिना ढक के रखा। फिर जिको आपा टैंक बनाए हुए बैंग बोरंग ऊपर भी आपा नियमित रूप जरूरत के हिसाब में पानी छिड़कता रहा, जगह में क्या है कि बिंगो तापमान भी सही बने रहे, सागे सागे जिकी नमी है वह भी बिंग ऊपर अच्छी बनी रहे। टैंक को जिको आपा ढेर बनाए हुए अपनों तो भी ढेर ने आपा लगभग 25-30 दिन बाद या तो हाथाऊ या अपना जिको लोहा को पंजो आवे बिंग आपा धीरे धीरे बिना पलटता रहे। जो क्या है कि जिको आपनो ढेर है भी में थोड़ी बहुत हवा लागती रहे और सागे सागे जिको बिंगो तापमान है वो भी सही बने रहे। अपने वो काम 2-3 बार कर देना किसान भाइयों, और लगभग आप यहाँ कह सकें 2-2.5 महीना के अंदर अंदर आपनों जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। अब आपनों वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया तो आप जब इतो काम करने लाग रहे हैं तो अब आप देख लेवा कि वर्मी कंपोस्ट को के फायदे है। सब पहले तो किसान भाइयों अपने वर्मी कंपोस्ट जिकी अपनी जमीन है वह भुरभुरी होगी और बिंग सागे सागे जिकी के बिंगी उपजाऊ क्षमता है जिकी वह भी बढ़ेगी। वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में नुकसान करने वाली दीमक होगी और बाकी जितना भी जीवाणु है बने भी खत्म कर देवे। जीव के होगो कि आपने तो कीटनाशक की जी की लागत है वह भी कम आसी। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग मोबाइल होगा आपने खेत में जिकी खरपतवार की समस्या है वह भी कम हो जाएगी और जिकी आपने मजदूरी है बिंग लागत में भी कमी आ जाएगी। वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करे बाद आपा देखा कि 2-3 फसलें तय आपने जिकी जमीन है बीमा जिका पोषक तत्व है वह बढ़िया रहे। वर्मी कंपोस्ट के आपने जिकी बूटा की जिकी जड़ा भी है वह भी सही बनी रहे, जीव गए कि बांगी आपने बढ़वार हो वह भी बढ़िया हो जाए। यूं के आपने पौधा में जिका पोषक तत्व होवे वह संतुलित मात्रा में बने रहे हैं और एंग उपयोग के एक तो अपनी जमीन भुरभुरी होवे, सागे सागे अपने जमीन में जिकी पानी धारण करने की क्षमता है वह भी बढ़ जावे। वर्मी कंपोस्ट में दूसरी खादा की तुलना में आपा बात करें तो जितना भी आवश्यक पोषक तत्व है वह ज्यादा मात्रा में हो, जिनके कारण के कि दूसरी खादा की तुलना में आ कम मात्रा में ज्यादा फायदो दे जावे। वर्मी कंपोस्ट में भाई लूंगा आपा देखा तो नाइट्रोजन लगभग 1-5%, फॉस्फोरस 1-1.5%, और पोटास 1.5-2% तक पोषक तत्व में पाया जावे। सब बड़ी बात करा भाई लूंगा आपा तो वर्मी कंपोस्ट है जिकी बा पूरी तरीका अपने पर्यावरण मित्र विधि है। यूं कहे कि आपने कोई भी प्रकार को पर्यावरण ने नुकसान को नहीं हुआ, किसी भी प्रकार को आपने प्रदूषण को नहीं हुआ और कम लागत में आपने बढ़िया अच्छो फायदो देवे, अपनी फसल को उत्पादन बढ़ावे, सागे सागे आपने जिकी जमीन है बिंगी भी उपजाऊ क्षमता बढ़ावे। तो किसान भाइयों आ बात आपा सारा ने ध्यान रखनी है, पर अब तो टाइम इतो ही है, आगे दो राम राम सा राम राम।
1: खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में अभी आप जानकारी सुन रहे थे कंपोस्ट खाद के फायदे। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं बैरागनाथ की आवाज में ये लोक भजन।

अभी आपने बैरागनाथ की आवाज में ये लोक भजन सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, DRM 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन पा रहे हैं। आइए कार्यक्रम सुने मानसगान। आज सुनिएगा भाग संख्या 263, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर, शोभना राव और रविंद्र साठे का।

देवर्षि नारद का माया जनित मोह टूट चुका है। प्रभु को अनुरूप पाकर उनके चरणों में बैठ नारद जी अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। प्रभु ने अपनी माया से प्रेरित करके जब उन्हें मोहित किया था तो वे विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए आकुल हो गए थे। देवर्षि की जिज्ञासा यह जानने की है कि तब किस कारण प्रभु ने उन्हें विवाह नहीं करने दिया था। हर्षित होकर श्री रघुनाथ बोले, जो समस्त आशा विश्वास को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर सांप अथवा आग को पकड़ लेना चाहता है तो माता उसे वैसा नहीं करने देती। सयाना हो जाने पर माता का स्नेह तो पूर्ववत बना रहता है, किंतु तब पुत्र अपनी रक्षा आप करने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, किंतु अपने बल तथा क्षमता का मान अभिमान न करने वाला तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे शिशु पुत्र के समान है, जिसे केवल मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, जो जप तप संयम नियम आदि को ग्रीष्म ऋतु की भांति सोख लेती है।

मानस गान अभी आपने सुना। आज आप सुन रहे थे भाग संख्या 263। मुख्य स्वर था सुरेश वाडकर, शोभना राव और रविंद्र साठे का।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। ना रुको कभी न थमो कभी, बस राहों पर अपनी चले चलो चले चलो। मुश्किलें आएंगी हजार, मानना कभी हार। मंजिलों की ओर ऐ मुसाफिर, बढ़े चलो चले चलो। जिंदगी की कविता को समझो, अल्फाजों में ना उलझो। हर एक नज़म को तबीयत से पढ़े चलो चले चलो। तूफान से भरे समंदर में बिकराल लहरों पे, अपनी मन को कश्ती पर संभले चलो चले चलो चले चलो। चट्टानों को पार करते हुए, सपनों पर धार करते हुए, जीवन पर्वत शिखर पर चढ़े चलो चढ़े चलो। सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। हरप्रीत सिंह की ओर से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम गंगा जमुना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। गर्मी बहुत ज्यादा है इन दिनों में, और गर्मी के दिनों में अपने देश में कई शहरों में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। दोपहर में गर्म हवाएं चलती हैं जिसे हम लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं जब हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं तो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसे हम हीट स्ट्रोक या लू लगना कहते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं। अगर आपको लू लग गई है, जैसे सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, तेज बुखार होना, और भी कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। श्रोताओं, लू से बचने के क्या उपाय हैं? गर्मी के दिनों में हल्का भोजन करें, पानी पेय पदार्थ बार बार पिएं, पूरी बाजू के कपड़े पहने और पैरों में बिना कुछ पहने घर से बाहर ना निकले। सूती कपड़े पहने। गर्मियों के दिनों में खाली पेट बाहर ना निकला जाए। बाहर जाते वक्त अपने साथ पानी की बोतल अवश्य लेके जाएं। ज्यादा देर तक धूप में रुकना पड़े तो छाते का इस्तेमाल करें। अगर आप लू की चपेट में आ ही गए हैं तो फिर तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ठंडी जगह पर विश्राम करें। शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी की पट्टियां शरीर पर करें, अच्छी मात्रा में पानी पिएं, और भी कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं। यदि तबीयत बिगड़ गई है तो फिर डॉक्टर को आप अवश्य दिखलाएं। साथियों, लू से अपने और अपने परिवार का बचाव करें।

दोस्तों असहायों का सहारा बने, ये बहुत खूबसूरत सोच है। संघर्ष की बात कर रहे हैं हम, असली संघर्ष वही है जो सिर्फ अपने ही लिए नहीं दूसरों के लिए भी लड़ा जाए। याद रखिए, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके कारण दो चार लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। नरसेवा नारायण सेवा आपने सुना ही होगा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तुलसीदास जी ने कहा। मानव जीवन का उद्देश्य है कि वे अपने मन वचन और काय से औरों की मदद करें। हमेशा ये देखा गया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे सदैव खुश रहते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता रहता है। दूसरों को सहायता या मदद कर व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है। हम हर रोज किसी व्यक्ति को जो देखते हैं, जो जरूरतमंद है, अगर हम उसकी सहायता करें तो हमें असीम आनंद की अनुभूति होती है। दूसरों की मदद अपनेपन का भाव बढ़ाती है, हमारा नजरिया सकारात्मक होता है, जीवन के प्रति भी और खुद के प्रति भी। हमें हमारे जीवन के उद्देश्य समझ आने लगते हैं। समाज सेवा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सेवा करते समय हम बहुत से नए लोगों से मिलते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नए दोस्त बना पाते हैं। श्रोताओं, असहायों का सहारा बनने का मौका उन्हीं को मिलता है जो इसके काबिल होते हैं। अगर आप किसी की सहायता कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप में अपार सामर्थ्य है दुनिया को बदलने की। नया दौर फिल्म का ये एक दो गाना आशा और रफी की आवाज में, गीत साहिर का, संगीत ओपी नैयर का।

नया दौर फिल्म का आपने एक दो गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा की। श्रोताओ, ऑफिस हो जा जिंदगी, जहां हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, उन लोगों के बीच में हम रहते हैं। अगर हम उन लोगों से जलन या दुश्मनी करेंगे तो हमारा संघर्ष और बढ़ जाएगा। आपका कोई मित्र, कोई सहकर्मी आगे बढ़े तो उसे जलो नहीं, बल्कि उसे सीखो। अगर टीम

0: वर्क हुआ है, एक टीम ने काम किया है, तो मैंने किया है की जगह ये बोलो कि हमने किया है। कोई नया बंदा अगर आपके पास आता है, तो अगर कोई गलती वो करता है तो उस गलती को ढकने में मदद करो, शिकायत नहीं, उसकी मदद करो, उसे सिखाओ। पीठ पीछे बुराई रिश्ते खराब करती है और माहौल भी। किसी का बर्थडे हो, प्रमोशन हो, तो मिलकर मनाओ, उनकी खुशी में शामिल हो जाओ। चाणक्य ने कहा है, जिसका कोई मित्र नहीं वह सबसे गरीब है। श्रोताओं, सारी दुनिया एक परिवार की तरह है, ऑफिस भी उसी का हिस्सा है। वहां के लोग जिनसे हमारी मुलाकात लगभग रोजाना होती है, हमारे काम में हमारी मदद करते हैं, वे हवी सभी एक परिवार की तरह है। अपने काम में सहकर्मियों की सलाह आप ले सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। यदि कोई अच्छा काम करता है, कोई उपलब्धि है, तो उसका हौसला बढ़ाएं, तारीफ करें। दूसरों के काम में बिना पूछे अपनी राय कभी मत दें। सभी के साथ मिलकर किए गए काम आसान होते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सहकर्मियों के साथ मैत्रीभाव काम करने के वातावरण में खुशी लाता है, इससे तनाव भी महसूस नहीं होता। कहा भी गया है ना, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन सबसे हंस मिलकर बोलिए और सबका सहयोग करें। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के संबंधे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे।
1: जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और कुछ नहीं रहेगा। नफरत

जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार को सुना। श्रोताओ, फूल बिछे हो या कांटे हों, रहन अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा ना मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत मगर ना छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर खूब भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। संपर्क फिल्म में यशुदास को सुने।

पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। संपर्क फिल्म में यशुदास को सुने।

आप सुन रहे हैं यसुदास को संपर्क फिल्में। श्रोतो, अब अपने दोस्त हरप्रीत को सुप्रभात से अनुमति दें और आप सुनते रहिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी देर बाद 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर सुनेंगे खबरनामा। समाचारों का इंतज़ार करें और सुनते रहिए ये गीत।

0: दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्त।

0: चल के।
1: जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर

0: मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवा मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब

0: पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation, and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical, and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashvani News, Delhi.
2: Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4.05 p.m. More from our correspondent.
5: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivkumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony, as it is the place from where Shivkumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. More from our correspondent.
6: In the first phase, beneficiaries will start receiving rupees 3,000 directly into their bank accounts from today. It is initially estimated that nearly 2 crore women will benefit from this scheme. At Nobarnu, the inauguration ceremony will take place at 12.30 p.m. attended by Minister Rugnimitra Paul of the Department of Women, Child Development and Social Welfare. The Chief Minister's program will be connected via video conference to every block and municipality in the state. Immediately after the inauguration, 100 selected Annapurna Yojana beneficiaries in each block and municipality will be handed approval letters. Similarly, 100 beneficiaries in the Kolkata Municipal Corporation area will also receive these letters. Beneficiaries have been given 90 days to register under this scheme. Women aged between 25 and 60 years will be eligible for this benefit. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Ministry of Tribal Affairs will organize the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi today. President Draupadi Murmu will address the inaugural session of the conclave. The event is being held as part of the ongoing Janjatiya Garima Utsav 2026. President Draupadi Murmu will virtually inaugurate the training fab established at the Center for Nanoscience and Engineering at the Indian Institute of Science, Bengaluru. She will also inaugurate 75 space labs established across Eklavya Model Residential Schools in different parts of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class. A report.
7: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and a stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax.

0: में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा, मईशत, खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिक्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत और सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवासाजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस तीन रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर मुमालिक के मंदुबीन, पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने, पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज सपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिव कुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिव कुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इक्तदार के लिए जारी रस्साकशी भी खत्म हो गई। जनाब शिव कुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर सुबह मुनाकिद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वजरा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिव कुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में अन्नपूर्णा योजना के मुस्तफिदीन तमाम ब्लॉक्स, म्यूनसिपल्टियों और म्यूनसिपल कारपोरेशन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मकामी सतह पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अरकान असेंबली को मकामी सतह पर प्रोग्रामों में मदद किया गया है और वजीर आला का असल प्रोग्राम तमाम ब्लॉक और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आला के इफ्तिताही खिताब के फौरन बाद इजाजत नामे तकसीम किए जाएंगे। हर ब्लॉक म्यूनसिपल्टी और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 मुंतखब मुस्तफिदीन बाकायदा इजाजत नामे हासिल करेंगे। पहले मरहले में आज से मुस्तफिदीन को 3,000 रुपये बराह रास्त उनके खातों में मिलने शुरू हो जाएंगे। नाबंदा में इफ्तिताही तकरीब 12:30 बजे मुनाकिद की जाएगी, जिसमें खवातीन, बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद से मुतालिक महकमे की वजीर अग्निमित्र पॉल शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम मुतवस्सित तबके की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल में हुकूमत ने वसी पैमाने पर इस्लाहात करके मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। आसान टैक्स निजाम और मजबूत बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन के निजाम की वजह से उनके माली

0: तहफुज में इजाफा हुआ है। नए टैक्स निजाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद हरगिज टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। खासतौर पर मुतवस्सित तबके के लिए जीएसटी निजाम ने टैक्सों को आसान बनाकर और रोजमर्रा के अखराजात को कम करके 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने करोड़ों लोगों को महफूज मकानात फराहम करके उनकी जिंदगियों को बदल दिया है, जिससे कई ठोस फायदे हुए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि ये स्कीम गरीबों के लिए रिहाइश को यकीनी बना रही है और किराए के मकानात में रहने वालों के लिए राहत का बाइस बन रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, जिससे सेहत की देखभाल के तहफ़ तक रसाई में इजाफा हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम जन औषधि केंद्रों के जरिए 50% से 80% कम कीमतों पर मयारी जेनरिक अद्वियात फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर अद्वियात मार्केट के मुकाबले इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब हैं।
2: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉक्टर रहमान को अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्क निज़ाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरिस को 91 वोट मिले। अक्वाम मुत्तहिदा के आला मुज़ाकराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी 1 साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रा उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉक्टर रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फ़ाल रखेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की 2 रोजा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दत कार 2 अक्टूबर 2023 और ज़िला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

0: में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है दिल्ली में बीजेपी सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है भारत और जनूबी अफ्रीका ने 2 तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज सपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजेंद्र जैन को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप राजेंद्र जैन को सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं

आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, DRM 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। आइए सुनते हैं राजेंद्र जैन की आवाज में अगली रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप राजेंद्र जैन को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को है अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।

0: जयपुर अजमेर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। प्रदेश भर में वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले कल जल स्रोतों का पूजन किया गया, साथ ही इनकी साफ सफाई के काम भी किए गए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कुम्हेर स्थित कच्चा कुंडा पर जल पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पूरे देश में एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों की साफ सफाई सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सभी नगर पालिकाओं में लोक कल्याण मेले लगाए जा रहे हैं। इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने सहित ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए इस मेले में रेहड़ी, ठेला संचालक, फेरी वाले और छोटे व्यापारियों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
1: लोक कल्याण मेले के दौरान पथ विक्रेताओं, रेहड़ी ठेला संचालकों, फेरी वालों, छोटे व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। अभियान के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण, डिजिटल ऑन बोर्डिंग, भुगतान को बढ़ावा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3 चरण में 90,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजना से जोड़कर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। सोन नगरी में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राज्य में अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकार समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कल शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अब सहकारी समितियों का आवंटन भी ऑनलाइन किया जाएगा। श्री कुमावत ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाकर उन्हें अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा। साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और

0: के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। राज्य में इन दिनों पुलिस की ओर से बाल मजदूरी के खिलाफ उमंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण बनाना और पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के लिए हर जिले में थानेवार विशेष रेस्क्यू टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति और एनजीओ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह ने कल एक बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को बाल तस्करी और मजदूरियों के विरुद्ध जागरूक करने के निर्देश दिए, साथ ही इन कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। आज विश्व साइकिल दिवस है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 3 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य किफ़ायती, बिना ईंधन वाले, पर्यावरण और स्वास्थ्य हितैषी एवं परिवहन के माध्यम साइकिल को लोकप्रिय बनाना है। इस वर्ष की थीम हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना रखी गई है। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जरिए साइकिल के उपयोग को लगातार बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर आज अजमेर में साइकिल रैली रखी गई। ये रैली आनासागर चौपाटी में शुरू हुई। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के कई नागरिक नियमित रूप से साइकिल का उपयोग कर स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से कई स्थानों पर कल भी आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रही। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर दिन का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटों में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं माउंट आबू में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल सभी संभागों में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आने की आशंका है। बीकानेर, चूरू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मरुमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजीव खान को।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं।

0: संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: मुरमुगल कार्यक्रम में आप राजीव खान को सुन रहे हैं।

मुरमंगल कार्यक्रम में आज आप राजीव खान और साथियों को सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कुछ युगल फिल्मी गीत। आइए पहले सुने मोहम्मद रफ़ी और लता की आवाज़ में दोस्त फिल्म का एक दो नगमा, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का।

यादों की बारात लीजिए। इस फिल्म में आशा भोंसले और मोहम्मद रफी को सुनिए, गीत मजरू का, संगीत आर डी वर्मन का। युगल फिल्म गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

प्यासा सावन फिल्म का एक दो गाना, लता और सुरेश वाडकर की आवाजों में, गीत संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़।

प्रोग्राम की अगली पेशकश कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत नसीब फिल्म से, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये युगल फिल्मी गीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, डीआरएम 909 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं।

लीजिए शोर फिल्म में लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए, गीत संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का।

अभी आप कुछ युगल फिल्मी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुहाना सफर। पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आर डी वर्मन का संगीत, बोल आनंद बख्शी के, फिल्म का नाम शक्ति।

Blue.

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ फ़िल्म का नाम उम्मीद, जिसका गीत आप सुन रहे हैं। ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रोग्राम सुहाना सफ़र के अंतर्गत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लता और किशोर की आवाज फिल्म का नाम सिलसिला।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ये एक दो गाना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ, संगीत खयाम का, फिल्म का नाम नूरी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनिए। गीत मजरू का, संगीत आर डी वर्मन का। प्रोग्राम सुहाना सफर इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

पलकों की छाव में लीजिए इस फिल्म में किशोर कुमार और वंदना शास्त्री को सुनिए। गीत गुलजार का, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का।

सुहाना सफर। अभी आपने फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम सुना। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। आइए अब सुने फौजी भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी फौजी भाइयों का नमस्कार। आज संजय बैद की ओर से फौजी भाइयों, सीमाओं की सरहद पर आप दिन रात देश की सुरक्षा के लिए अपने घर बार को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हमारे फौजी दोस्तों को भी अपने घर की याद जरूर आती है। और जब वो छुट्टियों में अपने घर को लौटते हैं तो निस्संदेह जो सुकून मिलता है, जो आंतरिक खुशी होती है, उसे शब्दों में बयां किया जाना मुश्किल है। घर की याद हर व्यक्ति को आती है, चाहे वो कहीं किसी ऑफिस में नौकरी करे, घर से दूर रहकर पढ़ाई करे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, या फिर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहें। आज इस प्रोग्राम में अपने फौजी भाइयों के लिए हम कुछ ऐसे नगमे लेकर आए हैं जिसमें या तो घर का जिक्र है या घर के किसी न किसी कोने का किसी न किसी रूप में उस गीत में जिक्र आता है। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इस गीत को गाया कुमार सानू के साथ अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। समीर के लिखे गीत की धुन तैयार की है जतिन ललित ने। फौजी भाइयों, ले चलें आपको आपके साजन के घर।

अय्यब लता मंगेशकर के साथ चलें अटरिया की ओर। फिल्म का नाम मेरा गांव मेरा देश, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अटलिया से अब चले आंगन की ओर। आवाज अलका याग्निक की और फिल्म का नाम लावारिस।

फौजी भाइयों आइए चलें अब आंगन से छत की ओर, इलारून और अलका याग्निक के साथ। फिल्म का नाम करण अर्जुन, बोल इंदिवर के, संगीत राजेश रोशन का।

छत के बाद आई चले झरोखों की ओर। फिल्म का नाम अखियों के झरोखे से, स्वर हेमलता का, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

झरोखों से अब चलें खिड़की की ओर, किशोर कुमार के साथ। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत आर डी बर्मन का, और फिल्म का नाम पड़ोसन।

कार्यक्रम के अगले गीत में जिक्र है खिड़की और झरोखों के साथ दरवाजे का। फिल्म का नाम मैं तेरा आशिक, स्वर बाबुल सुप्रियो का, शब्द रचना रानी मल्लिक की और संगीतकार है निखिल विनय।

0: फुलझुमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है बॉबी। आवाज लता मंगेशकर के साथ शैलेंद्र सिंह की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने। इसमें जिक्र है एक कमरे का।
1: बाहर से कोई

फौजी भाइयों कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अचानक फिल्म का गीत, जिसे गाया हरिहरन के साथ अलका याग्निक ने, बोल समीर ने लिखे, संगीतकार हैं दिलीप सेन समीर सेन। इसमें घर की ऊंची ऊंची दीवारें फौजी भाइयों को अपने घर बुला रही हैं।

फौजी भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसे फिल्मी नगमे आपको सुनवाए जिसमें घर के किसी भी स्थान का जिक्र था, और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अपने साथी संजय बैद को अनुमति दें। नमस्कार।

फौजी भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसे फिल्मी नगमे आपको सुनवाए जिसमें घर के किसी भी स्थान का जिक्र था। और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अपने साथी संजय बैद को अनुमति दें। नमस्कार।

सैनिकों के लिए, अभी फौजी भाइयों के लिए ये प्रोग्राम पेश किया गया। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप प्रोग्राम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। आज का ये कार्यक्रम विश्व साइकिल दिवस पर आधारित होगा। गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम होगा सुगम संगीत दिन में 12:30 पर। आज हम आपको सुनाएंगे हरी हरण की गाई चंद गजलें। दिन में 12:50 पर खेत खलियान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा फसल चक्र कम लागत ज्यादा उत्पादन। शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम पत्रोत्तर। ये प्रोग्राम श्रोताओं के व्हाट्सएप ईमेल और पत्रों पर आधारित होगा। साथ ही होंगे गीत भजन और बाजार भाव। दिन में 1:05 पर महिलाओं के लिए महिला जगत कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे विश्व साइकिल दिवस रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब। जानेंगे पसीने की दुर्गंध से छुटकारा पाने के कुछ उपयोगी टिप्स और बचे हुए खाने का सही उपयोग कैसे करें इसके बारे में भी आज जानकारी दी जाएगी। फिल्मी नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से लेकर 3 बजे तक। संध्या 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम उर्दू सर्विस से प्रसारित किए जाने वाले। शाम 5 बजे युवा साथियों का प्रोग्राम होगा युववाणी। आज इस कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। साथ ही जानेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी भाषा में कार्यक्रम। शाम 7:45 पर प्रोग्राम होगा फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सुगम संगीत में चंद गजलें आपको सुनवाई जाएंगी रात्रि 9:15 से लेकर 9:30 तक। 9:30 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आज बुधवार का दिन है और आज के दिन रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुना करते हैं आप ही की टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन भावन। आज का ये प्रोग्राम दिवंगत गायिका सुमन कल्याणपुर को समर्पित रहेगा। समय नोट करें आज रात 10 बजे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:05 हो रहे हैं। आइए प्रोग्राम सुने, कुछ बातें कुछ गीत।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज संजय बैद की ओर से श्रोताओं, आज दिन है 3 जून का, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने देखा है, आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। आज से 8 वर्ष पूर्व सन 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को साइकिल दिवस के रूप में मनाने की अनुमति दी थी, और तभी से आज का दिन ये साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि दुनिया में अलग अलग वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है, साइकिल को छोड़कर लोग मोटर वाहन का इस्तेमाल करने ज्यादा लगे हैं। इसे जहां एक और सड़कों पर दबाव बना है, पेट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ी है, वहीं वाहनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए बिना खर्चे के चलने वाली साइकिल को प्रमोट करने के लिए यूएनओ ने विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की, और लगातार आज के दिन लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करें, ताकि वाहनों के धुएं से मानव जाति को कुछ न कुछ राहत दिलाई जा सके। साइकिल के अनेक लाभ हैं, इससे मोटापा कम रहता है। आपने देखा होगा जो होकर प्रातःकाल उठकर साइकिल पर अखबार बांटते हैं, उनमें से मोटे लोगों की संख्या नगण्य होती है। एक उम्र के बाद घुटने बदलने की समस्या नहीं रहती, क्योंकि साइकिल के पैडल मारने पर आपका तन बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसलिए साइकिल का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। साइकिल चलाने से दिमाग भी एक्टिव रहता है, ब्रेन की पावर भी बढ़ती है, और दिमाग की जो क्षमता है उसमें 15 से 20% तक का इजाफा भी हो जाता है। खैर, इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी, पहले ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, यूएनओ हर साल जिस भी दिवस को मनाता है उसकी एक थीम घोषित करता है, और विश्व साइकिल दिवस की 2026 की जो थीम है उसका विषय है साइकिलिंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर, यानी हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बार इस विषय पर देशों के द्वारा आम नागरिकों में प्रचार किया जा रहा है कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए, हरे भरे इस पृथ्वी के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। और इसीलिए साइकिल को एक प्रदूषण मुक्त वाहन माना जाता है। ये टिकाऊ परिवहन का साधन भी है जिसके संचालन का खर्चा भी नगण्य सा है। भारत सरकार के द्वारा भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया है, फिट इंडिया। इस कार्यक्रम के द्वारा बड़े स्तर पर साइकिलिंग के आयोजन किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में देश भर के नागरिक एक साथ हिस्सा लेकर साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा विभिन्न सामाजिक संगठन या पुलिस प्रशासन के द्वारा या प्रशासन की अन्य इकाइयों के द्वारा भी सामूहिक रूप से साइकिल रैली निकालकर इस दिवस को मनाने के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

दोस्तों, साइकिल परिवहन का एक सस्ता, सरल और किफायती साधन है। चाहे जितना ट्रैफिक सड़कों पे क्यों ना हो, साइकिल सवार अपनी साइकिल को उस ट्रैफिक से किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेता है। जहाँ तंग गलियाँ हैं, बड़े वाहन जहाँ नहीं जा सकते, वहाँ साइकिल आराम से चल सकती है। चाहे रास्ता कच्चा हो, पक्का हो, पगडंडी भी हो, तो भी साइकिल सवार अपनी मंजिल को जरूर हासिल कर सकता है। अनेक रोगों से साइकिल हमें बचाती है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में साइकिल ना चलाई हो और वो साइकिल से बचपन में कभी ना गिरा हो, लेकिन गिरते पड़ते आदमी संभल जाता है और साइकिल का जो मोह हमारे स्कूली जीवन में रहता है, वो यदि हमें कोई बड़ी दौलत या जागार भी दे दी जाए तो भी उसका मुकाबला वो नहीं कर सकती। स्कूली शिक्षा के अंदर पढ़ाई का जो सबसे सहयोगी साधन है वो एक साइकिल ही है। और स्कूली शिक्षा के बाद जब आदमी बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तब डॉक्टर भी उसे सलाह देते हैं कि वो कम से कम आधा घंटा रोज साइकिल चलाए, क्योंकि इससे पूरे शरीर का व्यायाम एक साथ हो जाता है। साइकिल चलाने से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है और हमारा जो प्रदूषण है वो भी कम रहता है। एक सस्ता माध्यम साइकिल है, लेकिन यदि जीवन में हम मोटर कार के स्थान पर इस लोहे की साइकिल का प्रयोग करते हैं तो निसंदेह ये एक चांदी की साइकिल जितना हमारा तेल बचा सकती है।

तो यूरोपीय देशों में साइकिल के इस्तेमाल का विचार लगभग 18वीं शताब्दी के दौरान आया था। उसके बाद 1816 में पेरिस में पहली बार एक व्यक्ति ने साइकिल का आविष्कार किया और उस समय इस साइकिल का नाम होबी हॉर्स यानी काठ का घोड़ा रखा गया था, लेकिन ये चलाने में काफ़ी कठिन थी। उसके लगभग 50 वर्ष बाद पैडल से चलाने वाली साइकिल का आविष्कार किया गया और इसे वेलोस्पीड कहा गया। हालांकि इसके चलाने में भी काफ़ी थकावट चालक को हुआ करती थी, 5-7 साल बाद इसे मॉडिफाई किया गया और 1872 में इसे आधुनिक रूप प्रदान किया गया। लोहे की पतली पट्टी के इसमें पहिए लगाए गए जिससे साइकिल को चलाने में आसानी होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुए, साइकिल में गियर लगने लग गए, मोटर लगने लग गई, स्पीड उसकी बढ़ गई और आज साइकिल एक आधुनिक रूप ले चुकी है और अनेक रेस व्यक्ति भी शौकिया तौर पर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। खैर, विश्व साइकिल दिवस के बारे में ये प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत इसी चर्चा के साथ संपन्न होता है। 12:30 हो चुके हैं और आकाशवाणी के इस कॉटन सिटी चैनल से अब आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। आज के फनकार हैं हरिहरन।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में हरी हरन की गाई गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेत खलियान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है फसल चक्र, कम लागत ज्यादा उत्पादन।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ की राय माना तो आप साल भर गमा दो या तीन फसलों की बीजांत करा, और एक बात आ भी है कि आप हर साल एक दो त्रियों की ही किस्म लेके अरबंगी बीजात करता रहा, क्योंकि कई बार किसान भाई लोग है आपने जगह बे है बे जे नरमो है तो नरमो बीज लियो, अगले साल भी आपने जो कोई बासागण फसल है भाई बीज ली, या फिर कणक की फसल है आप बीजन ला रहे हैं हाड़ी गमा और कणक की अगला साल फिर हाड़ी बीज ली, तो इतनी किसान भाइयों की हुए का आपने जो की खेती है वा या किस का कह एक बार दो बार तो बढ़िया हो जाए लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जो की खेती है आपनी बा कमज़ोर होने ला जाए, क्योंकि आपनी जो की जमीन की जो की उर्वरा शक्ति है बा एक ही त्रियंगी एक ही किस्म अगर आप बीजता रहें बार बार तो आपनी जो की उर्वरा शक्ति है जमीन की बा खत्म हो जाएगी, जमीन है जो की कमज़ोर पड़ जाएगी, जगह की वजह से आपनी जो की फलत है फसल की बा बहुत कम होएगी। इन वास्ते आपने टेम टेम पर जगह कृषि विशेषज्ञ है कृषि वैज्ञानिक है या फिर कोई जागरूक किसान है बे आई राय देवता रे है का आपने जो की फेरबदल करके अगर आप कृषि की बीजांत करा खेती की बीजांत करा तो अपन ज़्यादा फायदा हुए, जब फसल चक्र अपना गया आप बीजांत करता रहे वहाँ तो एक तो आपनी जी की माटी की जी की उर्वरा शक्ति है बात तो बढ़िया बनेगी, इनके अलावा किसान भाइयों आपनी जी की फलत है वह भी बढ़िया होएगी और अपन भाव भी फसल का अच्छा मिलेगा, फसल की जी की उन्नत किस्म लेगी आप बीजांत करांगा बढ़िया किस्म लेके बीजांत करांगा तो आपने जी की फसल है बिंग जी की दाना की जी की चमक है वह भी एकदम बढ़िया बरकरार रहेगी बढ़िया बनी रहेगी। इन वास्ते किसान भाइयों जे आप हर साल बांध बांध की फसलां बीजा यानी फसल चक्कर अपना आगे आप बीजांत करा तो अपनी माटी की उर्वरा शक्ति थान बताई दियो का कायम तो रहेगी, इनके अलावा जो खर्चो पानी है बिंगे भी अपने चौखी बचत हो जाएगी। किसान भाइयों फसल चक्कर अपना आगे आप कई तरीके का लाभ है बे आप ले सका जहाँ माटी को कटाव भी कम हुए, क्योंकि फसल चक्कर अपनाना से कई तरह की ऐसी फसल है जगह की वजह से आपने ज़्यादा जुताई करनी पड़े ज़्यादा माटी इन्हें भी ना करनी पड़े, जे आप बांध बांध की अलग अलग तरह की फसलें बीजाएंगे तो आपने ज़्यादा जुताई की भी इतनी ज़्यादा खेचल कौन करनी पड़े नहीं, एक माटी का जो कटाव है वो भी कम होगा। फसल चक्र से कई तरह की बीमारियाँ जहाँ कीट है बे भी कम लग है, कई तरह की जगह रोग है बे भी कम लग है, तो इन वास्ते किसान भाइयों आपने फसल चक्र अपनाना जरूरी है। किसान भाइयों फसल चक्र अपनाता टाइम इन बात को ध्यान रखना जरूरी है कि एक बार आप गेरी जड़ वाली जी फसल है बिंग बाद गम आप कम गेरी जी जड़ वाली फसल है बंगी बीजात करनी चाहिए, इसी फसलों की जड़ा ज़्यादातर गेरी और माटी के अंदर तक हुए जिस पौधा माटी के ऊपर से आप जो भोजन पानी है ना लेगी अंदर गहराई से पोषण ले लेवे, जगह की वजह से किसान भाइयों जमीन के ऊपरी स्तर पर मौजूद जगह जरूरी पोषक तत्व है बे अपने अपनी जी फसल है बिना काम को

0: बात करें तो कई तरह जगह नरमांगामा या फिर ग्वारगामा, कई तरह जगह खरपतवार है, बना भी आप निकालना जरूरी है, क्योंकि आप बरसात को मौसम चलने ला रहे हैं, तो बरसात के मौसम में आपने जो फसल है भी पूरी तरह देखभाल करनी है, ताकि अपन बाद में कहीं भी तरह जी अब खाई हवा ना हो। इन सगे सगे किसान भाइयों, आपने बरसात को मौसम चलने ला रहे हो तो अपन खेत का मा पानी भी थोड़ा सा मौसम के हिसाब से ही देना है, क्योंकि अब बरसात के टाइम का मा कई बार हो जाए कि आप पानी लगा दें कुआ को या फिर नहर को, और बाद में ऊपर बरसात हो जाए तो फिर अपनी फसल है वह खराब हो सके। सगे सगे किसान भाइयों, अभी कई तरह जगह कीड़ा कांटा है, क्योंकि वो थोड़ा सा मौसम है इशू है, जगह में कई तरह की बीमारियां हैं, कई तरह जगह रोग है या फिर कीट पतंग है भी अपनी जगह फसल अभी में लागने की संभावना रेवे है, तो टेम सर अपने खेत में जाके और थोड़ा सा जाँच परख कर तो रहना चाहिए कि भी तरह जगह अगर कोई रोग का लक्षण अपने दिखाई देवे या फिर कोई कीड़ा कांटा दिखाई देवे तो अपन तुरता फुर्त बिंगो जो को नियंत्रण है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आज की बीमारी है या फिर कीट रोग ऐसे कभी ज़्यादा बच जाए तो फिर बाद में दिक्कत ही दिक्कत है। तो आम बातों को ध्यान रखना जरूरी है सा, पर मैं खेत काम का और भी काम धंधा करना है, हूँ चालू, राम राम सा, राम राम।
1: फसल चक्र, कम लागत।

0: लगा दें कुआ को या फिर नहर को, और बाद में ऊपर बरसात हो जाए तो फिर अपनी फसल है वह खराब हो सके। साथ साथ किसान भाइयों, अभी कई तरह जगह कीड़ा कांटा है, क्योंकि वो थोड़ा सा मौसम है इशू है, जगह में कई तरह की बीमारियां हैं, कई तरह जगह रोग है या फिर कीट पतंग है, भी अपनी जगह फसल अभी में लागने की संभावना रेवे है। तो टेम सर अपने खेत में जागे और थोड़ा सा जाँच परख कर तो रहना चाहिए कि भी तरह जगह अगर कोई रोग का लक्षण अपने दिखाई देवे या फिर कोई कीड़ा कांटा दिखाई देवे, तो अपन तुरता फुर्त बंगो जो को नियंत्रण है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आज की बीमारी है या फिर कीट रोग ऐसे कभी ज़्यादा बच जाए तो फिर बाद में दिक्कत ही दिक्कत है। तो आम बातों को ध्यान रखना जरूरी है सा, पर मैं खेत काम का और भी काम धंधा करना है, हूँ चालू, राम राम सा, राम राम।
1: फसल चक्र, कम लागत ज्यादा उत्पादन, खेत खलिहान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। अब से थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग से 21 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर 10 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाते हुए दमकल कर्मियों के भी झुलसने के समाचार हैं। ताज़ा जानकारी मिलने तक लगभग 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के टिहरी इलाके में कल एक हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 बच्चा घायल हो गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दुर्घटना एक निजी वाहन के बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर जाने से हुई। कार में सवार शेष 4 लोग लापता हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी लोग जैसलमेर जिले के दरियानाथ बावड़ी के रहने वाले थे और हरिद्वार की ओर जा रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास के लिए आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की कि अभी भी कुछ जनजातीय वर्गों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए

0: उन्होंने कहा कि साइकिल को नियमित आदत बनाने से संतुलित और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ परिवहन को भी समर्थन मिलता है। इस बीच विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैलियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई साइकिल रैली विश्व प्रसिद्ध शांति पार्क में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान पौधे रोपकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। देश की पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में होने जा रही है। ये चैंपियनशिप 8 जून तक आयोजित की जाएगी। इसमें अमेरिका से भी योगा एथलीट का दल शामिल होगा। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF के संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यीय अमरीकी दल का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जनअभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी परी बहनों को रजनी मोदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां और फिल्मी दुनिया के कुछ चुनिंदा गीत और कुछ शख्सियत को याद करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें बशीर बद्र की चंद पंक्तियों के साथ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। एक और बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है उन्होंने, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान। बहुत खूबसूरत लिखा है। अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। बहुत कुछ कह गए बशीर साहब इन चंद लाइनों में। जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव जो जिंदगी भर एक याद बनकर रह जाते। बहनों, आज ही की बात ले लो, आज विश्व साइकिल दिवस है और साइकिल से याद आया कि कितना खूबसूरत था वो जमाना जब हमने पापा वाली साइकिल से सबसे पहले कैंची चलाना सीखा, फिर धीरे धीरे डंडे पर आए और फिर काठी पर। और सच मानो, जिस दिन बहनों सीट पर बैठकर साइकिल चलाई ना, मानो गली के शहंशाह बन गए हों और चारों तरफ देखते थे, सर घुमा के देखते कि कौन कौन हमें देख रहा है। ना पेट्रोल पंप पर जाकर तेल भरवाने की चिंता, ना प्रदूषण की फिक्र, बस मस्त होकर साइकिल चलाना, वो आनंद आजकल की मोटर बाइक में कहां। वो एक नशा ही अलग था। ऐसा लगता था जैसे बचपन से लेके जवानी तक आते आते वो

बहनों, पहले जब लोग पैदल या साइकिल से जाते थे तो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि ये जो आजकल के मोटर वाहन चलते हैं इनसे पोल्यूशन होता है और सांस लेना भी कई बार दूभर हो जाता है। साइकिल से कोई प्रदूषण नहीं, किसी तरह का कोई भी, ये मानिए कि कोई साइड इफेक्ट नहीं थे साइकिल की। धीरे धीरे साधन बढ़ने लगे और बीमार या अस्वस्थ होने लगा मानव जीवन। जो लोग अस्वस्थ हैं उन लोगों को डॉक्टर अब साइकिल चलाने की राय देते हैं। साइकिल को हम जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर मान सकते हैं बहनों। गिरते पड़ते साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले के समय में अधिकतर लोगों के पास ये बड़े बड़े साधन नहीं हुआ करते थे, बस साइकिल ही कहीं पर भी जाने का साधन होता था। तो एक ललक थी कि काश हमारे पास भी बड़ी गाड़ी हो। लेकिन बहनों, सच मानिए, अगर दिल से पूछा जाए तो अब गाड़ी तो है, लेकिन वो पहले वाला सुकून नहीं है जो साइकिल के समय में था। ऑफिस जाना हो तो साइकिल से, स्कूल जाना हो तो साइकिल से, किसी और काम से बाजार जाना हो तो साइकिल से, कोई शर्म नहीं, बस ये लगता था कि हम रॉयल हैं तो बस हैं। लेकिन वक्त बदला, अब साइकिल की उपयोगिता केवल स्वास्थ्य के रखरखाव या एक जरिया बन गई है। साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 तक काफी अच्छा चला। उसके बाद धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का महत्व इसलिए है कि सबसे सस्ता वाहन है ये, ना तेल की चिंता और ना पर्यावरण के साथ साथ ना तेल की चिंता और ना पर्यावरण की, साथ साथ सेहत भी अच्छी रहती है। साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम सही रहता है बहनों। इम्यून सेल्स एक्टिव होने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो चलो, आज फिर एक बार साइकिल पर सैर करने चलते हैं, दोस्तों के साथ कुछ मस्ती करते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मैंने दोस्तों के साथ जब निकलते हैं ना तो मस्ती की कोई सीमा नहीं रहती, बस एक खूबसूरत से पल जिसे दिल में सजो लेने का मन करता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है ना, कुछ रिश्ते इस जहां में खास होते हैं जो दिल के बहुत करीब और पास होते हैं। उन्हीं रिश्तों में से एक खूबसूरत रिश्ता दोस्ती है, जिसमें दोस्त ही जिंदगी और जीने की आस होते हैं। मैंने दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। ये बिल्कुल सच है कि कई बार खून के रिश्तों से ज़्यादा गहरी और मजबूत दोस्ती होती है। ऐसा इसलिए कि दोस्तों को हम खुद चुनते हैं। हालांकि ये कहना कि खून के रिश्ते मजबूत नहीं होते ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि जहां रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते वहीं दोस्त को वह बात कहकर या सुनाकर मन हल्का हो जाता है। यही वजह है कि दोस्त से हमारा रिश्ता भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। दोस्ती में कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सॉरी, थैंक यू जैसा कोई शब्द दोस्ती की डिक्शनरी में नहीं आता। दोस्त आपको वैसा ही पसंद करते हैं जैसे आप होते हैं, लेकिन रिश्ते में बहनों कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हमसे कुछ बदलाव की गुंजाइश रखता है, करता है, उम्मीद करता है हमसे कि हम वो जो चाहता है वैसा बने या वो जो चाहता है वैसा करें, लेकिन दोस्त दोस्त होते हैं।

बहनों, बात हो रही है दोस्ती की। कई लोग मित्रों का साथ रिश्तेदारों से ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। ज़्यादातर दोस्त जो होते हैं वो हम उम्र ही होते हैं, लेकिन बहनों दोस्ती के लिए कोई तय उम्र नहीं है। दोस्ती बच्चों से भी हो सकती है, पिता पुत्र की भी हो सकती है, माँ बेटी की भी दोस्ती होती है, अपनों से बड़ी उम्र के लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। बस सोच और विचार मिलने की बात है। जहां खुलकर अपने मन की बात कही जा सके वहीं सच्ची दोस्ती है। बहनों दोस्तों की बात करें तो घर से दूर रहकर, चाहे पढ़ाई के लिए घर छोड़ना पड़े या फिर नौकरी के लिए, वहां एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है।

क्योंकि रिश्तेदार, माँ बाप हो सकता है उस वक्त आपके पास ना पहुँच पाएं जब आपको उनकी ज़रूरत हो, लेकिन एक सच्चा दोस्त काफ़ी हद तक इनकी कमी पूरी कर देता है। मित्र को कहते वक्त सोचना नहीं पड़ता, लेकिन रिश्तेदार कई बार बुरा मान जाते हैं। और बहनों, जिंदगी की हकीकत ये है कि रिश्तेदार को कई बार जब हम कोई काम कहते हैं तो वो एक एहसान सा मानने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन दोस्ती जो है उसमें कोई एहसान नाम की चीज़ नहीं होती। कई बार बात करते समय भी सोचना पड़ता है कि रिश्तेदार कहीं इसका गलत अर्थ ना ले ले, लेकिन दोस्ती में ये सब नहीं सोचना पड़ता, बस कह दिया जाता है। और इसीलिए तो कुछ लोग ये कहते हैं ना,

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे मौसम में पसीना आना भी लाजमी है। कई बार इस पसीने से बदबू आने लगती है। ये बदबू हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है। ये दिन भर के काम करने से या फिर तनाव से भी हो सकती है। कई बार कोई चिंता होती है, किसी तरह का मन में तनाव होता है तो अक्सर देखते हैं कि पसीना आ जाता है। हालांकि ये गंभीर समस्या नहीं है। पसीने की दुर्गंध बैक्टीरिया के पसीने में मिलने से होती है। डेली नहाना और साफ सफाई रखना ही बेहतर हल है बहनों। रेशमी और भारी कपड़े पहनने से बच सकें तो बचें। पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि बॉडी डिहाइड्रेट रहे। पसीने की बदबू से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पसीना आ रहा है शायद उसे ना पता लगता हो, लेकिन पास खड़े व्यक्ति को इसकी दुर्गंध आ ही जाती है। मैंने जिस व्यक्ति को पसीना ज़्यादा आता है कई बार उसे फंगल इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम कुछ आसान टिप्स बताएंगे जिससे आप थोड़ी सी सावधानी रखकर स्वस्थ रह सकें। बस एक बात माननी पड़ेगी, मन चंगा रखना। तन को चंगा रखने के लिए तो उपाय कोई भी कर लेगा।

मेरे पसीने की दुर्गंध किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम में से कईयों ने कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। शरीर की दुर्गंध की हल्की सी महक से ही नाक सिकुड़ जाती है, फिर पता चलता है कि ये दुर्गंध हम में से ही आ रही है। गर्म जलवायु वाले स्थानों में जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ ये समस्या आम है। बगल की दुर्गंध से कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। बहनों, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। करना क्या होता है कि उचित स्वच्छता बनाए रखें, यह बहुत ज़रूरी है। पसीने वाली जगह जैसे बगल, जांघ, पैर और गर्दन, इन सारे पार्ट्स को नियमित रूप से गर्म पानी व साबुन से धोना चाहिए। वैसे तो बहनों गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो तापमान वर्तमान में चल रहा है उसमें पानी वैसे ही गीजर जैसा आता है, तो ऐसे पानी से ही साबुन के साथ इस बॉडी पार्ट्स को धो लेना चाहिए। काफ़ी हद तक कीटाणु जो है मर जाते हैं। जीवाणुरोधी साबुन यूज़ करें। एंटीबैक्टीरियल जो साबुन है वो शरीर पर कीटाणुओं को कम कर देती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, ज़्यादा पसीना आना जो है वो कम हो जाता है और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। बॉडी यदि डिटॉक्स रहती है तो पसीने की बदबू भी काफ़ी कम हो जाती है, कारण कि पसीना ही कम आएगा तो बदबू का सवाल ही नहीं। और सबसे जो ज़रूरी बात है ना बहनों, वो ये है कि ढीले व सूती कपड़े, जो प्राकृतिक कपास व लीलन के बने हैं, वे ही पहने। ये कपड़ा ठंडा और पसीने को जमा होने से रोकता है। आहार में बदलाव करके भी इस दुर्गंध से बचा जा सकता है। भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां

और साबुत अनाज खाना चाहिए इस मौसम में। प्याज लहसुन जितना हो सके जिसमें गंध वाला जो सामान है वो थोड़ा कम खाएं इस इन दिनों। हल्का योगाभ्यास करके आप तनाव को कम कर सकते हैं, तनाव से भी पसीना आता है बिना। और एक और बात, अच्छी क्वालिटी का डीओ लगाकर भी आप दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बेअसर करने में कामयाब हो सकते हैं, ये मदद करते हैं। थोड़ी सी व्यक्तिगत केयर आपके तन और मन दोनों को महका सकती है बहनों।

तुमसे ओ हसीना ये मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। बहनों, कई बार ऐसा ही होता है, स्थितियां कुछ इस तरह की बन ही जाती हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मीनू आइए अब बात कर लेते हैं बचे हुए खाने का सही उपयोग कैसे करें। कई बार रोज का भोजन बनाते बनाते भी आइडिया गलत हो जाता है और काफ़ी मात्रा में भोजन बच जाता है। ऐसे में खाने की बेकदरी ना करें। पहले तो ध्यान रखें कि उतना ही डालें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। फिर भी गलती से बच जाए तो जूठे भोजन को इकट्ठा करके बाहर आवारा पशुओं को खिला देना चाहिए, और साफ भोजन बच जाए तो उसे फेंके नहीं, उसका रीयूज आप कर सकते हैं। बची हुई रोटी को नूडल्स की तरह काटकर या तो फ्राई कर लें, या ऐसे ही थोड़े से घी में प्याज और टमाटर का तड़का लगाकर हल्के मसाले डालकर नाश्ते में खाया जा सकता है। और यदि आप मीठा खाने के शौकीन हैं, क्योंकि बहनों ऐसा सुनने में आया है कि जैसे आता है कि गांव वाले मीठे के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो हमारे श्रोता तो गांव और शहरों सभी जगह पे हैं, तो मीठा खाने वालों का भी ध्यान रखा जाता है। मीठा खाने के शौकीन इन रोटियों को, जो रोटियां रात की बच जाती हैं, सुबह उठकर इन रोटियों को बारीक चूरा कर लें, हाथ से ही कर लें। रोटी की मात्रा के हिसाब से एक तार की चीनी की चाशनी बना लें, या गुड़ अगर पसंद है तो गुड़ की चाशनी कर लें। थोड़ा सा डाल दें उसमें देसी घी, और फिर क्या वाह, मीठी चूरी बनकर तैयार हो जाएगी। चावल यदि बच गए तो थोड़े आलू उबालकर पेस्ट बना लें, और उसमें प्याज, शिमला मिर्च व थोड़े मसाले डालकर उबले चावल मिलाकर टिक्की बनाकर क्रिस्पी टिक्की बन जाएगी। सॉस के साथ आप खा सकते हैं। दाल बच जाए तो बहनों आटे में मिलाकर स्वादिष्ट परांठे बनाए जा सकते हैं। सूखी सब्जी अगर बच जाए तो मैश करके सैंडविच आप बनाकर उसका यूज कर सकते हैं। ऐसी और भी बेहतरीन जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, बस आप इसी प्यार के साथ हमारा साथ बनाए रखें।

बिल्कुल बहनों, ये तो मानना पड़ेगा। आजकल जहाँ भी बात होती है रेडियो की, टीवी भले ही सब लोग देखते होंगे लेकिन रेडियो की जितनी बात होती है और उसमें भी हमारे सुंदर कार्यक्रम की बात हुए बिना तो रहते नहीं हैं। तो आप अपने प्यार को इसी तरह

ऐसे बनाए रखना, और हम एक खत लिखना ना भूलें। और आजकल तो एक नया व्हाट्सएप सिस्टम चल गए हैं, आप यदि उसे जुड़ना चाहें तो आप यहाँ पे फ़ोन करके उस वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं और अपने मन की बात हमसे कह सकते हैं। जाते जाते इतना ही कहूँगी नमस्कार के साथ, कि आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी महिला जगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है एक रिपोर्ट
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग दिल्ली पुलिस जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्य

0: कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन

0: और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने

0: हिमालय पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत राज 3 फिल्म से, जिसे गाया श्रेया घोषाल ने, शब्द कुमार के और संगीतकार हैं जीत गांगुली।

प्यार में कभी कभी। इस फिल्म में सुनिए महालक्ष्मी अय्यर के साथ शेखर को, गीत लिखा राज कौशल ने, संगीत शेखर का।

जोरदार। इस फिल्म में सुनिए अबू मलिक के साथ अनुपमा देशपांडे को। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

डू नॉट डिस्टर्ब। इस फिल्म में सुनिए सोनू निगम के साथ अनुराधा श्रीराम को, शब्द रचना समीर की और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

ये दिल। इस फिल्म में सुनिए नदीम सैफी को, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

आपकी खिदमत में आदाब अर्ज है। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 पर जनाब आर के शर्मा का तहरीर करदा एक ड्रामा नशर होगा जिसका उनवान है लॉटरी। 4 से आप फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। फिल्मी नगमे शाम के 4:50 तक सुने जा सकेंगे। शाम के 5 आज की दूसरी मजलिस की नशरियात खत्म हो जाएंगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

विद्यानगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वजीर आजम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलुकीन के अफराद खानदान के लिए 2 लाख रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का दोबारा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहरीन का पैनल तश्कील दिया है। भारत शमसी सलाहियतों में सालाना इजाफे के मामले में अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शमसी तरक्की का बाजार बन गया है और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, वहीं 40 अफराद को बचा लिया गया। जनूबी दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने बताया कि आग बुझाने वाली 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि मजीद पुलिस, फायर खिदमत और दीगर हंगामी एजेंसियों की मुश्तरक कोशिशों से 40 से ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है और उन्हें तिब्बी इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मालविया नगर इलाके में आग लगने के वाकई में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकाम सभी मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी राहत फंड से 2 लाख रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया। इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नायब सदर CP राधा कृष्णन ने भी दिल्ली के मालविया नगर इलाके के होटल में आज सुबह आग लगने के अफसोसनाक वाकये में कीमती जानों के अतलाफ पर ताजियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरी की ख्वाहिश जाहिर की। नायब सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासर खानदानों के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ की। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी मालविया नगर में आग लगने के हादसे में जानों के अतलाफ पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हादसे की इतला मिलने के फौरी बाद दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कुदरती आफात से निपटने की जिला अथॉरिटी, कैट्स, एम्बुलेंस खिदमात और दीगर हंगामी खिदमात की एजेंसियों की टीमों को मुतहरिक किया गया और राहत और बचाव कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। वजीर आला ने कहा कि इन टीमों की तेज और बरवक्त कार्रवाइयों ने कई अफराद को बचाने और मुतासर अहाते के इनखला में मदद की। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और मुतासर कुंभों को हर तरह की तिब्बी मदद और मुआवनत की पेशकश की जा रही है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स आज भारत के 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। इस दौरे में वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल के दौरान भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगी। दोनों मुल्क तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई, हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत कलीदी शोबों में इश्तराक व ताउन के इम्कान तलाश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की तशरीह और वजाहत नीज इसकी नक्शा साजी से मुतालिक मरकज की रिपोर्ट का एक आजादाना जायजा लेने की गरज से माहरीन की एक आला इख्तियार वाली कमेटी तश्कील दी है। भारत की जंगलात से मुतालिक तहकीक और तालीम की काउंसिल की डायरेक्टर जनरल कंचन देवी इस कमेटी की सरबराही करेंगी। पैनल से इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली इको निज़ाम के तहफ़ से मुतालिक कलीदी मसाइल हल करने की गरज से एक गैर जानबदाराना और साइंसी जांच की ज़रूरत है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि तकरीबन 40,000 तलबा ने कामयाबी के साथ अपने जवाबी पर्चों की दोबारा जांच की दरखास्तें पेश की हैं और इस पूरे अमल को बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल किया है। CBSE ने 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन और उनकी दोबारा जांच से मुतालिक ऑनलाइन पोर्टल कल शुरू कर दिया। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तयाब है जिन्होंने जांच किए गए जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपियां हासिल की हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने बताया कि नतायज के बाद की खिदमात जैसे जवाबी पर्चों की वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए दरखास्तें पेश करने वाले तलबा के लिए SBI, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। दिल्ली के

0: Moi.
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना सातवां आसमान फिल्म से। अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म है साजन।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए जनाब आर के शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है लॉटरी।

0: कौन है?
1: मैं हूँ चनाना जी।
0: मैं कौन?
1: क्या अर्ज करूँ, नाम बताना तो फिजूल है क्योंकि आप मुझे पहचानते नहीं। जान पहचान करने ही आया हूँ। जान पहचान हो जाएगी तो आइंदा आप पहचान लिया करेंगे।
0: दरवाजा खुला है।
2: शुक्रिया। मैं खादिम अली खुर्जे वाला हूँ।
0: आप शायर हैं?
2: नहीं साहब, शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी शेर बनाया करता था। ऐसे शेर के लोग देखकर दंग रह जाते थे।
0: आप कैसे शेर बनाते थे?
2: मिट्टी के शेर साहब, मिट्टी के।
0: आप खुर्जे के रहने वाले?
2: खुर्जा क्या साहब, अब तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। 15 बरस से यही रह रहा हूँ। इन 15 बरसों में एक बार भी खुर्जा नहीं गया है।
0: तो फरमाइए आप कैसे तशरीफ लाए
2: साहब। सरोजनी नगर तक तो बस में आया, उसके बाद पैदल। बस मैं एक उम्दा नई साइकिल लेने की सोच रहा हूँ। कल मैं एक साइकिल वाले की दुकान पर गया। उसके बाहर बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ साइकिल किस्तों पर मिलती है। मैंने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक साइकिल ले लेता हूँ और कीमत किस्तों पर चुका दूंगा। मैं दुकान के अंदर गया और मालिक से कहा कि मुझे एक साइकिल चाहिए। उसने कहा कि आप पैसे जमा करा दीजिए और साइकिल की पहली किस्त ले जाइए। पहली किस्त में हम हैंडल देंगे, दूसरी किस्त में है फ्रेम, तीसरी किस्त में पहिए, चौथी किस्त में पेडल और चेन, और पांचवी किस्त में है बाकी का सामान।
0: जी
2: मतलब ये कि 5 किस्तों में है साइकिल पूरी कर देंगे। अब साहब आप पूछेंगे कि मैं आपके पास क्यों आया। लीजिए मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं टिकट बेचता हूँ।
0: कहाँ का टिकट? जन्नत का, जहन्नुम?
2: अरे जहन्नुम में जाए आपके दुश्मन साहब, मैं तो आपके लिए इस दुनिया में ही जन्नत का इंतजाम कर रहा हूँ।
0: क्या मतलब?
2: मैं लॉटरी का टिकट बेचता हूँ, छुपे हुए खजानों के दरवाजे खोलता हूँ। आप भी लॉटरी का टिकट लीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए और लखपति बन जाइए।
0: तो आप घर घर दरवाजा खटखटा कर टिकट बेचते हैं?
2: आपने सुना होगा जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज के जमाने में भगवान देता है तो दरवाजा खटखटा कर देता है या फिर बाहर की घंटी बजा कर देता है।
0: सुनिए साहब, मैं लॉटरी के टिकट में बहुत पैसा बर्बाद कर चुका हूँ।
2: अरे साहब आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप लॉटरी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए। जब लॉटरी को मालूम होगा कि आप उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले तो एक दिन आपकी जरूर आएगी और फिर आप मालामाल हो जाएंगे, मालामाल।
0: माफ कीजिए, मैं टिकट नहीं लूंगा।
2: ना लीजिए, हरगिज ना लीजिए। पिछले साल की बात है साहब कि मैंने एक साहब से बहुत कहा कि वो लॉटरी का टिकट ले ले, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद वो टिकट एक पान वाले ने खरीद लिया। सच जानिए साहब, खुदा गवाह है, उसी टिकट पे पहला इनाम पूरे 7 लाख रुपए का निकला।
0: भाई इनाम तो उस पान वाले की किस्मत में था, वो कोई भी टिकट खरीद लेता, इनाम उसी को मिलता।
2: अरे साहब मेरा दिल कह रहा है इस बार आपका इनाम जरूर आएगा। फरमाइए, हरियाणा का दूं 5 लाख का, यूपी का दूं 7 लाख का, या पंजाब का 13 लाख का।
0: बात यह है कि मैं अपने पंडित जी से पूछकर मुहूर्त निकलवा कर टिकट खरीद।
2: अरे साहब हमें यह भी मंजूर है, ये लीजिए मेरा कार्ड, इस पर घर का पता लिखा हुआ है। आपका जब जी चाहे, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आप गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, खिदमत करूंगा।
0: आदाबर्ष।
2: आदाबर्ष।

0: जय राम जी की पंडित जी।
1: जय राम जी की। आओ बाबू रामनाथ जी जो है सो आज तू बहुत दिनों में दिखाई दिए हो।
0: बस यूं ही पंडित जी, दुनिया के झंझटों से फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: भाई हमारे पास आना भी एक झंझट समझ लो।
0: अरे जी क्या कहते हो पंडित जी, तुम्हारे यहाँ आना तो हम तीरथ समझते हैं।
1: तीरथ?
0: हाँ तीरथ।
1: कहो सब ठीक ठाक है ना जो है?
0: सब ठीक ही है।
1: बात ये है भाई, आदमी डॉक्टर के पास तब जाता है जब तन से दुखी होता है जो है, और पंडित के पास तब आता है जब मन से दुखी

0: गया है।
1: पंडित जी, भगवान की दया से तन भी ठीक है और मन में भी कोई खास चिंता नहीं है। बस इधर से जा रहा था, सोचा पंडित जी से मिल चले।
0: ये तो बड़ी मेहरबानी की आपने। सच बात तो ये है भैया, तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। जो है
1: क्यों नहीं पंडित जी, जब भी आता हूँ कुछ देकर ही जाता हूँ।
0: लेने देने की बात नहीं है बाबू रामनाथ जी, ये तो दिल की बात है जो है। अच्छा, वो पिछली बार जो साहब तुम्हारे साथ आए थे, पूछ रहे थे लड़का होगा या लड़की, उनका क्या हाल है?
1: अरे कुछ ना पूछो पंडित जी, उनके तो लड़की हुई है और आपने कहा था लड़का होगा।
0: मैंने कहा था लड़का होगा?
1: आपने कहा था लड़का नहीं लड़की।
0: नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लड़का नहीं लड़की नहीं कहा था, मैंने तो कहा था लड़का नहीं लड़की।
1: अरे वाह पंडित जी वाह, ये तो दोनों तरह ठीक बैठता है। तुम्हारा भी जवाब नहीं पंडित जी, लड़का नहीं लड़की और लड़का नहीं लड़की। क्या बात है पंडित जी। ये बताइए कि मेरी तरक्की कब होगी?
0: अपनी पत्री लाए हो जो है?
1: वो तो नहीं लाया।
0: पंडित के पास कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए जो है।
1: जी हाथ खाली हुए तो क्या हुआ, जेब तो खाली नहीं है।
0: तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी बाबू रामनाथ जी, यही पंडित का वचन है। कह दिया सो कह दिया जो है।
1: जेब खाली तो नहीं रहती पंडित जी, पर पूरी भरी भी नहीं रहती।
0: जेब तो भर जाती है पर आदमी की नीयत नहीं भरती। बस हाथ दिखाओ।
1: ये लो पंडित जी।
0: हाँ, देखो ये है किस्मत की लाइन, सीधी जा रही है बिल्कुल सपाट जो है तो। पर यहाँ आकर इसे एक छोटी सी लाइन काट रही है। अगर ये लाइन इस लाइन को न काटती तो फौरन तुम्हारी तरक्की हो जाती। जी हाँ, ये तो यूं समझो जो कि मोटर कार दौड़ी जा रही हो, रास्ते में अचानक पत्थर आ जाए।
1: पंडित जी ये पत्थर हटा दीजिए।
0: हटा देंगे भैया, बिल्कुल हटा देंगे, तुम्हारी तरक्की का रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे जो है सो। लेकिन ये पत्थर जरा भारी है, इसे हटाने में काफी पैसे खर्च होंगे जो है।
1: कितने पंडित जी?
0: 51 में जाप करूंगा और इसके बाद तुम्हारी तरक्की फौरन हो जाएगी।
1: अच्छा पंडित जी, अच्छा जाप भी कराऊंगा। पंडित जी
0: हाँ,
1: ये भी देखो कि कुछ लॉटरी वाटरी निकलने का भी कोई चांस है?
0: राहु तेरे घर में है जो है सो, शनिचर 11वें में है, मंगल भी अच्छी जगह है, बस बन गया काम जो है सो। आएगी जरूर आएगी भाई, तुम्हारी लॉटरी जरूर निकलेगी। बहुत अच्छा समय जा रहा है आजकल जो है।
1: सच पंडित जी?
0: बिल्कुल, इस हिसाब से तुम्हारी किस्मत खुद बोल रही है बाबू जी की लॉटरी जरूर आएगी, जरूर आएगी लॉटरी। कोई टिकट ले रखा है क्या?
1: लिया तो नहीं है पंडित जी, पर ले लेंगे ले लेंगे। लॉटरी का टिकट खरीदने में कौन सी देर लगती है। अरे हाँ, एक लॉटरी का टिकट बेचने वाला मेरे घर भी आया था।
0: अच्छा।
1: पर मैंने सोचा पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर ही टिकट खरीदूंगा।
0: लो मुहूर्त भी निकाल देते हैं जो है सो। 5 और 3 8, 8 में से 6 गए, बचे 2 जो है सो। आजकल अंधेरी रात है और इधर से आए 40। लो भाई मुहूर्त निकल आया है जो है सो। लॉटरी का टिकट रात के 2:40 पर खरीदना चाहिए।
1: रात के 2:40?
0: हमारे हिसाब से तो यही पकत निकलता है जो है।
1: पर पंडित जी इतनी रात गए कहाँ से टिकट खरीदेंगे?
0: भाई ये तो तुम जानो जो है।
1: अरे हाँ, याद है। हाँ। वो लॉटरी का टिकट बेचने वाला अपने घर का पता भी दे गया था।
0: हाँ, तो बस उसी से टिकट खरीद लेना जो है।
1: पर 2:30 रात के उसके घर जाना।
0: हाँ, उसका घर कितनी दूर है?
1: हमारे यहाँ से कोई 1 मील होगा।
0: फिर क्या बात है
1: पंडित जी? पंडित जी हाँ। आप भी हमारे साथ चलिए।
0: चले चलेंगे, तुम्हारा घर तो यहाँ पास में ही है ना।
1: तो ठीक है पंडित जी। हाँ। मैं कल रात को 2 आपके पास आऊंगा। हाँ। आप तैयार रहिएगा।
0: यानी कि रात को तुम मेरे यहाँ आओगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ कल 9 आ जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूंगा, फिर वहीं से इकट्ठे चले चलेंगे। घर से चलने से पहले कुछ जाप करना होगा, वो भी कर दूंगा जो।
1: ठीक है पंडित जी, मैं यहीं सेक्टर 3 में रहता हूँ, मकान नंबर 548।
0: हाँ हाँ भैया, एक बार

0: तो सीधे साधे आदमी हैं, कोई तकल्लुफ न करना। बस पांच छह असली घी के पराठे, मटर पनीर की सब्जी, एक कोई सूखी तरकारी बनवा लेना। चटनी और रायता तो होगा ही, पापड़ हो जाए कोई हर्ज नहीं। मीठी चीज में खीर बनवा लेना। इसके अलावा दो चार मौसम के फल, बस इतना ही काफी है, बाकी झंझट न करना। जो है
1: पंडित जी
0: हाँ,
1: लाशें तो निकलेगी ना?
0: बिल्कुल निकलेगी बाबू रामनाथ जी, ना निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। जो है
2: अच्छा, तो पंडित जी कल रात को मैं आपका घर पर ही इंतजार करूंगा। नमस्कार
0: नमस्कार। अच्छा तो

0: कहा है ऐसे गाने मत गाया करो।
1: क्यों, आपको क्या एतराज है?
0: मुझे शर्म आती है।
1: शर्म आती है? पर क्यों शर्म आती है?
0: इस उम्र में भी तुम मेरे नैनों की तारीफ करोगे तो मुझे शर्म नहीं आएगी?
1: आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हारे नैनों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ।
0: शादी से पहले हमारे मकान के सामने एक आदमी रहता था, वो जब भी मुझे देखता ये गाना गाने लगता, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म कर।
1: मैं उस आदमी को जानता था, उसकी दो बीवियों और चार बच्चे थे। जब तुम उसे देखती थी तो वो ये गाना गाया करता था। उसका मतलब था कि तुम्हारी आंखें बहुत डरावनी हैं।
0: क्या?
1: इसलिए वो गाता था, दो नैना मतवाले तुम्हारे हम पर जुल्म करें।
0: तुम्हें तो मुझसे डर नहीं लगता ना?
1: मेरी बात छोड़ो, मुझे भूत चुड़ैल से डर नहीं लगता, तुमसे भी नहीं लगता।
0: क्या क्या मतलब तुम्हारा?
1: मतलब ये कि
0: साफ साफ कहो ना।
1: तो साफ साफ कह दूं, नहीं मानूंगी।
0: हाँ कहो, नहीं मानूंगी।
1: तो सुनो,
0: सुनाओ।
1: तुम
0: हाँ कहो, आगे कहो।
1: तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो।
0: इसमें क्या शक?
1: बहुत ही अच्छी हो।
0: अच्छा सुनो, बाजार से जाकर आधा किलो मूंग की दाल, पाव भर टमाटर और 100 ग्राम काली मिर्च ला दो।
1: आधा किलो पाव भर और 100 ग्राम? अरे 2 महीने बाद मैं 1 ट्रक मूंग की दाल का, 1 ट्रक टमाटरों का और 1 कनस्तर काली मिर्च का घर में डलवा दूंगा।
0: क्या?
1: अब तुम पूछोगी इस घर में इतना सामान कहाँ रखूंगा? मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, मैं एक नया मकान भी बनवाऊंगा।
0: ये शेख चिल्ली किसी बातें क्यों बना रहे हो खामखा?
1: चलो तुम्हें तो बताए देता हूँ, वैसे तो मैंने सोचा था कि किसी को नहीं बताऊंगा।
0: तो मत बताओ, रखो अपने दिल में।
1: अरे नाराज हो गए? अरे जाती तो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो तो आज वो पंडित फिर मिल गया था, उसने हिसाब लगाया और फिर मुझे बताया कि मेरी लॉटरी जरूर निकलेगी।
0: ओ लॉटरी निकलेगी?
1: तुम नहीं जानती, वो बहुत पहुंचा हुआ पंडित है।
0: जैसे तो वैसा तुम्हारा पंडित,
1: उसकी बात कभी झूठ नहीं निकलती। मुझे इससे पहले भी किसी नजूमी ने बताया था।
0: तो ठीक है, खरीद लो लॉटरी का टिकट।
1: पंडित ने बताया है कि लॉटरी का टिकट खरीदने का मुहूर्त रात के 2:40 पर है।
0: क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को टिकट कहाँ से खरीदोगे?
1: अरे मैं सब बंदोबस्त कर आया हूँ। पंडित जी कल शाम को यहीं आ जाएंगे।
0: क्या?
1: और फिर 2 बजे रात के मैं और पंडित जी टिकट खरीदने जाएंगे।
0: मेरा ख्याल है तुम किसी लॉटरी के टिकट वाले को भी अपने यहाँ ही बुलवा लो।
1: तुम तो मजाक कर रही हो। हाँ पंडित जी यहीं भोजन करेंगे।
0: क्या करेंगे?
1: उनके लिए वो मटर पनीर, आलू गोभी, टमाटर की चटनी, रायता वगैरह वगैरह और खीर बनवा लेना।
0: मुझसे इतना झंझट नहीं होगा, समझे?
1: पूरे 2 लाख की लॉटरी है भगवान। लॉटरी निकलने के बाद हमारी दुनिया ही बदल जाएगी।
0: 2 लाख?
1: हाँ पूरे 2 लाख।
0: दो लाख।

0: मुझे तो डर लग रहा है।
1: डर किस बात का पानी जी, डर किस बात का?
0: भगवान, अगर किसी ने यहाँ पर लूट लिया तो?
1: लूट लिया? आपके पास क्या है पंडित जी?
0: वैसे तो जेब में 2 रुपए 40 पैसे। भाई बाबू रामनाथ जी, मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। जो है
1: मुझे भी लगता है, लेकिन मैं घबरा। पंडित जी, कोई लाठी तो साथ ले आनी चाहिए थी।
2: खबरदार, जो भागने की कोशिश की,
0: अरे राम,
2: ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम?
1: ये पंडित जी हैं।
2: तुम कौन हो?
1: मैं रामनाथ हूँ।
2: इस वक्त कहाँ से आ रहे हो?
1: पंडित जी आप बता दीजिए ना।
0: नहीं नहीं, आप ही बताइए।
2: चोर बदमाश कहीं के, चलो थाने।
1: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए है चंद्र साहब, बात यह है कि हमें इस मोहल्ले में मकान नंबर 3/10 में खाजम अली खुर्जे वाले के यहाँ जाना है।
2: वो जो लॉटरी बेचता
0: है? हाँ, हाँ, हाँ, वही, हाँ। वही, वही।
2: चलो चलो मेरे साथ।
0: अच्छा,
2: उसका तो वो सामने वाला मकान है
1: जी।
2: अगर कोई गड़बड़ घोटाला हुआ तो मारते मारते दम निकाल दूंगा। चोर चक्के कहीं के।
0: नहीं, हम चोर नहीं है संतरी, चोर नहीं है।
2: अब सब मालूम हो जाएगा। लो, उसका घर तो आ गया। कौन है? बाहर आओ।
3: या अल्लाह, आधी रात को कौन सी बला आ गई?
2: क्या बात है भाई, जल्दी बाहर आओ।
3: या अल्लाह, या बदबदगार, अब तू ही कर बेड़ा पार। जल्दी जलाल तू, आई बला को टाल तू।
4: सलाम संतरी साहब।
2: तुम इन्हें जानते हो?
4: मैं इन्हें नहीं जानता, मेरे इनसे कोई वास्ता नहीं। मैं शरीफ आदमी हूँ, खुदा कसम, मैं कोई बुरा काम नहीं करता। मेरा इनसे क्या ताल्लुक हो सकता है?
2: क्यों बे, तुम लोग इनसे मिलने आए थे? हराम खोर, बदमाश कहीं के।
1: हम चोर नहीं है सर साहब। देखिए हाजम अली साहब, हम भी आपकी तरह शरीफ आदमी हैं। आप उस दिन मेरे घर पर तशरीफ लाए थे ना, आपने ये कार्ड मुझे दिया था।
2: ये कार्ड तुमने दिया था?
4: कार्ड? ये कार्ड तो मेरा ही है।
1: आपको याद होगा मैंने कहा था कि मुहूर्त निकलवा कर लॉटरी का टिकट खरीदूंगा।
4: अरे हाँ, ये तो कहा था, पर ये मुझे नहीं मालूम ये लोग करते क्या है।
2: इनका घर कहाँ है?
4: घर सेक्टर 3 में है।
1: जी हाँ, सरकारी क्वार्टर है, मैं सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ।
2: तुम्हारे पास दफ्तर का पास है?
1: जी हाँ, ये है। ये देखिए,
2: पहले क्यों नहीं दिखाया? ठहरो, मैं इसका नंबर नोट कर लूं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो छोड़ूंगा नहीं।
1: माफ करना, ये पंडित जी हैं, लाठी के टिकट खरीदने का मुहूर्त 2:40 पर निकला।
4: तुम भी अजीब आदमी हो।
1: अब हमारी लाठी निकल आई खाजम अली साहब, तो आपको भी तो कमीशन मिलेगा।
4: अच्छा अच्छा, कितने टिकट चाहिए?
1: सिर्फ 1 टिकट। पर भैया जल्दी करो, 2:37 हो गए हैं, मुहूर्त निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाए।
4: मगर आपको इस वक्त 1 टिकट के 2 रुपए देने हैं।
1: वो क्यों? वो क्यों?
4: ये पूछते हुए शर्म नहीं आती? आधी रात को आके परेशान किया।
1: अच्छा अच्छा, बाबा 2 रुपए ही दे देंगे, जल्दी से ले आओ।
4: अच्छा अच्छा, लाता हूँ।
0: हाँ, 2:38 तो हो गए हैं जो है सो।
4: ये लीजिए।
0: अभी फाड़िएगा नहीं, अभी फाड़िएगा नहीं खाजम अली साहब, अभी आधा मिनट बाकी है जो है सो, पूरे 2:40 पर फाड़गा।
1: हाँ, चलो चलो चलो, 1, 2, 3।
0: एंटीक मुहूर्त पर टिकट फटा है, अब रात्रि जरूर आएगी।
1: ये लो 2 रुपए।
0: कितने की रात्रि है?
1: 2 लाख।
0: 2 लाख।

0: जानते हो रात मैंने क्या ख्वाब देखा?
1: मुझे क्या मालूम, ख्वाब तो तुमने देखा और पूछ मुझसे रही हो।
0: मैंने देखा कि तुम गधे पर बैठे सारंगी बजा रहे हो और तुम्हारे दो सींग निकले हुए
1: शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे ख्वाब देखती हो? अरे ख्वाब देखना ही है तो अच्छे ख्वाब देखा करो, इस तरह के ऊट पटांग ख्वाब देखने से क्या फायदा।
0: अपनी नहीं कहते, तुमने एक बार कहा था कि तुमने ख्वाब देखा कि मेरी टांग टूट गई है, तुम्हें बताओ तुमने ऐसा ख्वाब क्यों देखा?
1: तुम तो बेवकूफ हो,
0: तुम्हें तो सारी दुनिया अपनी जैसी नजर आती है, पूरी बात सुनते नहीं और यूं ही बिगाड़ना शुरू कर देते हो।

0: अरे मैं अभी अभी मंदिर से आ रही हूँ। मैंने पंडित जी को बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ये बहुत ही अच्छा ख्वाब है। हाँ, गधे पर बैठने का मतलब है कि कोई खुशी की बात होने वाली है। सारंगी बजाने का मतलब है कि कहीं से धन मिलेगा। और जब मैंने पूछा कि सींग का क्या मतलब है, तो वो बोले कि दो सींगों का मतलब है कि 2 लाख रुपया। सुनो, जिस लॉटरी का टिकट हमने खरीदा है ना, वो 2 लाख की है ना?
1: हाँ, 2 लाख की है।
0: आप तुम ही सोचो कि पंडित जी को कैसे मालूम हुआ कि लॉटरी 2 लाख की है।
2: तुम्हें मालूम होता है कि ये पंडित भी कोई पहुंचा हुआ पंडित है।
0: हाँ, बड़ा माना हुआ पंडित है।
1: भगवान ने चाहा तो इस बार लॉटरी जरूर निकलेगी।
2: अच्छा, पहले ये बताओ
1: कि अगर लॉटरी मिल गई तो तुम क्या खरीदोगे?
0: 2 लाख रुपया मिलेगा ना?
1: पूरा 2 लाख तो नहीं, कुछ इनकम टैक्स कट जाएगा।
0: कितना टैक्स कटेगा
1: ये तो मालूम नहीं।
0: तो मालूम करो ना।
2: समझ लो कि 1.5 लाख मिल जाएगा।
0: मैं तो पहले 2 दर्जन स्टेनलेस स्टील के चम्मच लाऊंगी।
1: तेरे की 2 लाख रुपया मिलेगा और बात करते हो चम्मचों की।
0: अरे तुम क्या जानो, घर में चम्मच होना बहुत जरूरी है। 4 बरस हुए 1 दर्जन लिए थे, सिर्फ 2 रह गए हैं, बाकी सब टूट गए।
1: भगवान, चम्मच खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया नहीं चाहिए।
0: मैंने कब कहा है कि 1.5 लाख रुपए की चम्मच खरीदेंगे? 2 दर्जन चम्मच ले आएंगे।
1: अरे चम्मच तो अब भी हम खरीद सकते हैं।
0: अगर हम लॉटरी के पैसों से चम्मच खरीदेंगे तो क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी? तुम्हें तो मेरी बात काटने की आदत।
1: अच्छा बाबा, चम्मच भी ले आएंगे, पर मेरा मतलब है कोई और कीमती चीज सोचो।
0: मेरी मानो तो पहले हम फ्रिज खरीदेंगे।
1: फ्रिज?
0: हाँ हाँ, फ्रिज बड़ी काम की चीज है। जब तुम दफ्तर से लौटोगे ना, तो छत से ठंडा ठंडा शरबत पिलाया करूंगी और आइसक्रीम भी बनाया करूंगी।
1: नहीं भाई, पहले टेलीविजन लेंगे। तुम कहती हो ना मैं तुम्हें सिनेमा नहीं ले जाता, बस फिर घर बैठकर फिल्में देखा करना।
0: नहीं नहीं, पहले फ्रिज लेंगे।
1: नहीं, पहले टेलीविजन लेंगे।
0: मैं कह देती हूँ पहले फ्रिज आएगा।
1: मैं भी कह देता हूँ पहले टेलीविजन आएगा।
0: तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो जी,
1: और तुम हमेशा जिद करती हो।
0: मैं कह देती हूँ, हाँ ये भी कुछ
1: किस बेवकूफ से पाला पड़ा।
0: बेवकूफ होगी तो मैं तुम्हारे घर वाले।
1: अच्छा, चुप रहो,
0: तुम चुप रहो।
1: देखो देखो देखो देखो शीला, बात को समझो। 2 लाख मिलने पर हम दोनों चीजें खरीद सकते हैं।
0: यही तो मैं भी कहती हूँ, लेकिन सवाल तो ये है कि पहले कौन से खरीदेंगे?
1: दोनों चीजें एक साथ एक दुकान से भी खरीदी जा सकती हैं।
0: तो फिर क्यों बेकार लड़ते हो?
1: अच्छा मान लिया, दोनों चीजें खरीद ली, ये दोनों तो 8-10 हजार में आ जाएंगी। बाकी पैसे का क्या करेंगे?
0: जमीन खरीदेंगे,
1: मकान बनाएंगे,
0: नए कपड़े सिलवाएंगे
1: या फर्नीचर लाएंगे,
0: कार खरीदेंगे,
1: सब बनाएंगे।

0: अरे खोल दियो मामा, क्यों दरवाजा पीट रहे हो?
1: जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अपनी लैटरिन निकल आई है।
0: नतीजा आ गया?
2: बिल्कुल आ गया।
0: खाओ मेरी कसम।
2: तुम्हारी कसम? अपनी कसम, भगवान की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, सबकी कसम, सब कह रहा हूँ। यानी सब तकलीफें दफा हो गई। रफा हो गई। ये लो टिकट, ये टिकट लो। और ये रहा अखबार, जरा नंबर मिलाओ। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। पाँच
0: पाँच
2: छ
0: छ
2: सात
0: सात
2: तीन
0: तीन
2: दो
0: दो
2: नौ।
0: ये तो बिल्कुल ठीक है, 2 लाख का इनाम है ना?
2: पूरे 2 लाख का। ये लो 2 किलो बर्फी। अरे भाई, लोग मुबारकबाद देने आएंगे तो उनका मुंह तो मीठा करवाना ही पड़ेगा। तो मैं 10 किलो लड्डू का ऑर्डर भी दिया हूँ।
0: अच्छा?
2: वो भी बधाई देने आए, कम से कम 4 लड्डू। तो मैंने तुम्हारे भाई सतीश को भी कार दे दिया है।
0: अच्छा?
2: कल आ जाएगा। और फिर परसों हम लोग लॉटरी की रकम लेने के लिए जाएंगे।
0: अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इतनी बड़ी रकम लेने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए।
2: और सुनो, मैंने अपनी बहन को भी खत लिख दिया है कि इस खुशी में उसे सोने का हार भी पहनवा दूंगा।
0: अजी तुम तो खामखा पैसा लुटाने पर तुले हुए हो। सतीश आएगा तो उसे क्या दोगे?
2: उसे उसे उसे उसे एक नया सूट सिलवा दूंगा।
0: बड़े कंजूस हो जी, उसे कम से कम एक मोटरसाइकिल ले देना।
2: चलो मंजूर है, मैंने कहा अब तो खुश हो।
0: अरे देखो तो कौन है।
3: कहिए। नमस्ते, मैं ओखला के यतीम खाने से आया हूँ।
0: आपका यतीम खाना कहाँ है?
3: मैंने अर्ज किया ना, ओखला में। यतीम खाने में इस वक्त 50 यतीम बच्चों की परवरिश हो रही है।
2: आपको कोई सरकारी इमदाद भी मिलती है?
3: जी नहीं, ये यतीम खाना तो आप जैसे फराग दिल और मेहरबान लोगों

0: ऐसे ही चलता है। अच्छा मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा।
1: क्या 500?
2: 500 तो बहुत है, 300 दे देंगे।
0: अपने मुंह से 500 निकला है, हम 500 ही देंगे।
2: मैं तुम्हें इस तरह पैसा बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ
1: वो भगवान ने हमें दिया है तो हमें कुछ पैसा खैरात में भी देना चाहिए।
2: तो हम आपको 300 दे देंगे।
0: नहीं मैं 500 दूंगा।
2: मैं तुम्हें 500 नहीं देने दूंगी।
1: तुम हमेशा अपनी जिद करती हो,
2: तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो।
0: आप लोग क्यों झगड़ते हैं, मुझे 300 ही दे दीजिएगा।
1: चलो ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, हम 400 दे देंगे।
0: कब देंगे?
1: देखो हमारी लॉटरी निकली है। हाँ। हमें परसों लॉटरी की रकम मिल जाएगी। हाँ। उससे अगले रोज आप आ जाए।
0: मुबारक हो साहब, मुबारक हो, भगवान आपको और ज्यादा दे।
1: अच्छा देखो देखो रुको रुको रुको, ये 1 किलो बर्फी ले जाइए, बच्चों को बांट दीजिए।
2: हाँ, बांट दीजिए बच्चों।
0: शुक्र है, बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। अच्छा नमस्ते।
2: नमस्ते
1: नमस्ते। मैं फ्रिज और टेलीविजन का ऑर्डर देकर आता हूँ।
2: अरे मुझे भी पहले देखने दो ना।
1: ओहो भगवान ने हमें वो दिन दिखाया है कि हमें अब देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। बस मैं कह आता हूँ जो सबसे बढ़िया फ्रिज और टेलीविजन भेज देना।
2: वो सड़क पर पंडित जी जा रहे हैं।
3: मुबारक हो, जो है 2 लाख की लॉटरी है ना।
1: हाँ पंडित जी,
3: जो हम कहते थे वो गलत नहीं होता। बाबू रामराज जी कह दिया था ना कि मुहूर्त पर जो टिकट खरीदोगे तो लॉटरी जरूर आएगी, हमारा हिसाब गलत नहीं हो सकता।
1: तुम्हारा तो जवाब नहीं पंडित जी, ये लो बर्फी मुंह मीठा करो।
3: हाँ, सिर्फ बर्फी से ही काम नहीं चलेगा साहब।
1: पंडित जी अच्छा अच्छा, ये लो 21 रुपए और अब बर्फी खाओ। बेचारा अपना घर ढूंढ रहा है, मुबारकबाद देने आया होगा। पंडित जी इसी के यहाँ तो हम लोग रात को गए थे। आइए आइए, आप तो एक बार पहले भी यहाँ आ चुके हैं, फिर भी मकान भूल गए। ये लीजिए बर्फी खाइए।
0: बरमाइए एक और लॉटरी का टिकट दूँ।
1: पहले इस लॉटरी की रकम तो ले आए हैं, तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा?
3: कमीशन?
1: अजीब आदमी हो, जो टिकट बेचते हो उसका नतीजा नहीं देखते हो? अरे भाई अपनी लॉटरी आ गई है
0: आपकी।
1: ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
0: सुबह मैंने भी लॉटरी के टिकट नंबर देखे थे।
1: क्या देखा था? ये देखो टिकट, टिकट लो। और ये रहा आपका?
0: ये नंबर तो ठीक है साहब, लेकिन आपका टिकट बी सीरीज का है और ये लॉटरी इस नंबर के टिकट की सी सीरीज में निकली है। जरा गौर से देखिए साहब।
1: भगवान ये क्या हो गया?
3: अरे होना क्या था, जो है तो मैं पहले ही कह रहा था कि उसकी घड़ी ठीक नहीं थी, टिकट ठीक मुहूर्त पर नहीं खरीदा गया, वरना लॉटरी जरूर निकलती। 10 किलो लड्डू लाया हूँ, आपने ऑर्डर दिया था ना।
1: कार मैंने सुन, मैंने सुन,

0: अभी आप सुन रहे थे आरके शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा उन्वान थान लॉटरी। पेशकश थी प्रेम वोहरा की। हिस्सा लेने वाले फनकार थे बी आर नागर, चांद नारायण सक्सेना, जलालुद्दीन, बी एन रायजादा, एच के घई और सी एस नागर। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में दीवार फिल्म से।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

सिलसिला फिल्म का नगमा भी अपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है अमीर गरीब।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में ये नगमा आपने जहरीला इंसान फिल्म से सुना। आज के प्रोग्राम के आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, फिल्म है मर्यादा।
1: तू भी आ जा।

0: नगमे के साथ ही आज का फिल्मी मौसिकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। वजीर आजम ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और मेलुकीन के अफराद खानदान के लिए 2-2 लाख रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। भारत शमसी सलाहियतों में सालाना इजाफे के मामले में अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शमसी तरक्की का बाजार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का अक्सर नौ जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहिरीन का एक पैनल तश्कील दिया है। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत आज से ख़त्म कर दी है।

और आलमी मौसमियाती महकमे WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और खदशा है कि ये इस साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह लगी ज़बरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, वहीं 40 अफराद को बचा लिया गया है। जनूबी दिल्ली के DCP आनंद मित्तल ने बताया कि आग बुझाने वाली 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि मजीद पुलिस, फायर खिदमत और दीगर हंगामी एजेंसियों की मुश्तरक कोशिशों से 40 से ज़्यादा लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है और उन्हें तिब्बी इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मालवीय नगर इलाके में आग लगने के इस वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकाम सभी मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब मोदी ने मरने वालों के लिए वायटिन के लिए वज़ीर आज़म के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपये की फौरी मदद का ऐलान किया। इसके अलावा ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी मालवीय नगर में आग लगने के हादसे में जानों के अतलाफ पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हादसे की इतला मिलने के फौरी बाद दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कुदरती आफात से निपटने की जिला अथॉरिटी, कैट्स एम्बुलेंस खिदमत और दीगर हंगामी खिदमत की एजेंसियों की टीमों को मुतारिक किया गया और राहत और बचाव कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। भारत ने शमसी तवानाई की सालाना पैदावार की अपनी सलाहियत में इजाफे के मामले में अमेरिका पर सबकत हासिल कर ली है और अब वो 2025 में शमसी तवानाई पैदा करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। भारत ने काबिले जिक्र 155 गीगावाट से ज़्यादा नस्ब शुदा शमसी सलाहियत हासिल कर ली है, जिसकी बदौलत मुल्क की 50% गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत के अपने हदफ को हासिल करने और मुकर्रर वक्त से पहले ही अपने NDCs को पूरा करने में मदद मिलेगी। PM सूर्या घर, मुफ्त बिजली योजना जैसी कलीदी पहलकदमियाँ लोगों की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही हैं, जबकि छतों पर शमसी तवानाई के पैनल नस्ब करके 40 लाख से ज़्यादा कुनबों को पहले ही बाख्तियार बनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की तशरी और वजाहत, नीज उसकी नक्शा साजी से मुतालिक मरकज की रिपोर्ट का एक आजादाना जायजा लेने की गरज से माहरीन की एक आला अख्तियार वाली कमेटी तश्कील दी है। भारत की जंगलात से मुतालिक तहकीक और तालीम की काउंसिल की डायरेक्टर जनरल कंचन देवी इस कमेटी की सरबराही करेंगे। पैनल से इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली इको निज़ाम के तहफ़ से मुतालिक कलीदी मसाइल हल करने की गरज से एक गैर जानबदाराना और साइंसी जांच की अशद ज़रूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफ़र में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीज़ा को ख़त्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतज़ाम से दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फ़रोग हासिल होगा। इससे पहले फ्रांस ने भी ऐलान किया था कि भारत से फजाई सफ़र करने वाले शहरियों के फ्रांस से गुजर कर जाने के लिए एयरपोर्ट पर कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर अमल दरामद 2026 से शुरू हो गया है। आलमी मौसमियाती महकमे WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और खदशा है कि ये साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। मौसमियाती इदारे के मुताबिक इस बात का 80% इम्कान है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम इस साल जून और अगस्त के दरमियान पैदा होगा और नवंबर तक बरकरार रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को मजीद शदीद बना देगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि तकरीबन 40 हज़ार तलबा ने कामयाबी के साथ अपने जवाबी पर्चों की दोबारा जांच की दरख्वास्त

0: से पेश की हैं और इस पूरे अमल को बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल किया गया है। सीबीएसई ने 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की स्कैन कापियों में पाए गए मामलों के वेरिफिकेशन और उनकी दोबारा जांच से मुतालिक ऑनलाइन पोर्टल कल शुरू कर दिया। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जाँच किए गए जवाबी पर्चों की स्कैन कापियाँ हासिल की। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया कि नतज के बाद की खिदमत जैसे जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें पेश करने वाले तलबा के लिए एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के पेमेंट गेटवेज दस्तियाब हैं। सीबीएसई ने वाजा किया कि दोबारा जाँच फीस की अदायगी के लिए तलबा का इन बैंकों में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अमरीकी फौज के जरिए एक ऐसी तनसीब पर हमला करने के बाद जिसे वाशिंगटन ने ईरानी फौजी तनसीब करार दिया था, ईरान ने मंगल को बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिससे कशीदगी में काफ़ी इजाफा हो गया है और एक नाजुक इलाकाई जंगबंदी के मुस्तकबिल पर खदशात पैदा हो गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज करने वाली अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले एक तेल के टैंकर को नाकारा बना दिया। अमरीकी हुकाम ने बताया कि एक हील फायर मिसाइल ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया जिससे वो अपना सफर जारी रखने से महरूम हो गया। ईरान के इस्लामी पासदाराना इनकलाब IRGC ने एक मुख्तलिफ मौके पेश करते हुए कहा कि अमरीका ने जजीरा कशम के जनूब में IRGC की एक मवासलाती तनसीब को निशाना बनाया था। ख्याल किया जाता है ये वही मकाम है जिसे अमरीकी हुकाम ने ईरानी फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन करार दिया था। जवाब में तेहरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स और कुवैत में एक फौजी हवाई अड्डे पर मिजाइल और ड्रोन ताके। अमरीकी बहरीनी और कुवैती दिफाई निजाम ने आने वाले खतरात को फजा में ही नाकारा बना दिया और किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। कुवैत की फौज ने कहा कि उसके फजाई दिफाई यूनिटों ने कई मिसाइलों को रोका जबकि बहरीन ने एहतियात के तौर पर मुमलिकत भर में इंतवाई सायरन बजा दिए। ताजा तरीन कशीदगी के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ रबते जारी हैं और इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया कि सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के कानून साजों ने एक ऐसा कानून पेश किया है जिसके तहत महकमा खारजा के लिए ये तय करना लाजमी होगा कि आया चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया है या नहीं, जिससे बीजिंग पर उसके इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के हवाले से कांग्रेस का ताज़ा दबाव बढ़ गया है। न्यू जर्सी से रिपब्लिकन नुमाइंदे क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक नुमाइंदे टॉम सूजी ने गुज़िश्ता रोज़ तिब्बत मुजालिम का तयन करने का एक्ट पेश किया जिसके तहत वजीर खारजा के लिए कानून बनने के एक साल के अंदर तिब्बत में चीन के इकदाम का जायजा लेते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वजीर आजम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलूकीन के अफराद खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का अच्छा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहरीन का एक पैनल तश्कील दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1 DD फ्रेडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू
2: मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके

पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, दोस्तों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। लीजिए, पहले करेंगे हम आज की बात और फिर चलेंगे आपके संदेश, आपके पत्रों की ओर। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां मीलों दूर तक सिर्फ उजड़ी हुई धूल, तपती हुई रेत और पत्थरों की जगह रेतीले धोरे या उनकी तस्वीरें दिखाई देती हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण महिलाओं को कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। अकाल और सूखे के ऐसे खौफ कि लोग कहते थे कि पग पुगल धर कोटड़े बाहु बाड़मेर।

दिलों दूर तक सिर्फ उजड़ी हुई धूल, तपती हुई रेत। और पत्थरों की जगह रेतीले धोरे या उनकी तस्वीरें दिखाई देती हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण महिलाओं को कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। अकाल और सूखे के ऐसे खौफ कि लोग कहते थे कि पग पुगल धर कोटड़े बाहु बाड़मेर। दोस्तों यानी अकाल के पैर पुगल में हैं, धर कोटड़े में, और वह बाड़मेर में डेरा डाले रहता है। इस भयंकर सूखे और अकाल की त्रासदी से पश्चिमी राजस्थान को उबारने के लिए कैसे चमत्कार की जरूरत थी जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे सके। और वह चमत्कार बनकर आई दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस महान योजना की परिकल्पना सन 1948 में बीकानेर के तत्कालीन मुख्य अभियंता कंवर सैन ने की थी। दोस्तों उन्होंने बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नाम से एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पंजाब की नदियों के अतिरिक्त पानी को राजस्थान के थार मरुस्थल तक ले जाया जा सकता है। इसी तरह इसकी कुछ प्रोसेस चली और यह परियोजना लागू की गई, जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम कर दिया गया। शुरुआत में इसे राजस्थान नहर कहा जाता था। दोस्तों यह नहर कोई साधारण वाटर चैनल नहीं है, बल्कि यह इंसानी इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति का एक ऐसा अजूबा है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों इसका उद्गम स्थल यह नहर पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज से लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली हेड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसे राजस्थान फीडर कहा जाता है। और दोस्तों इसके हिस्से से पानी का उपयोग नहीं किया जाता, यह सिर्फ पानी को आगे पहुंचाने का काम करता है। मुख्य नहर को देखें तो मसीता वाली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, और अब इसे आगे बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है, जिसे बाबा रामदेव उपशाखा कहते हैं। दोस्तों लीजिए इसके महत्व को जान लेते हैं। जो सबसे जरूरी पहलू है कि जिसके लिए इस नहर का हमारे आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक जीवन में क्या महत्व है। श्रोताओं यह नहर सिर्फ एक जल मार्ग नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन है। इसके महत्व है कि पेयजल संकट का स्थायी समाधान, घर घर पहुंचा अमृत, मरुभूमि का धान का कटोरा बनना, अकाल और सूखे पर परमानेंट फुल स्टॉप लग गया, पर्यावरण का कायाकल्प और मरुस्थलीकरण पर रोक। रेगिस्तान की सबसे बड़ी समस्या थी कि तेज हवाओं के साथ रेत के टीले आगे खिसकते थे, जिससे उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाती थी। दोस्तों इसे मरुस्थल का मार्च यानी डेजर्ट मार्च भी कहा जाता है। लीजिए ये तो कि हमने आज की बात, जिसमें हमने जाना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। लीजिए दोस्तों चलते हैं आपके संदेश की ओर और आपकी फरमाइशों पर आपको सुनाएंगी कार्यक्रम में फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी आई है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन एले, नवदीप एले, विश्वदीप एले और अशोक एले की। अगला संदेश है हमारे पास

गांव खोखरावाड़ी श्रीगंगानगर से, विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन की। अगली फरमाइश है दोस्तों पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा और ईशांत। अगले फरमाइश करता है युवाणी कार्यक्रम के आपकी पसंद के श्रोता, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। अगला पत्र है हमारे पास दोस्तों शादुल शहर से, ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश जी का। अगला पत्र है हमारे पास गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर से, शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत का। लीजिए दोस्तों आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत।

0: वो भी ऐप से। फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: युवा श्रोताओं, हमारी जिंदगी के ये जो भी संघर्ष है, मुश्किलें हैं, ये जो दिन रात जाकर पढ़ाई करना या काम करना, यह और कुछ नहीं बल्कि उस ईश्वर की हथौड़ी और छेनी की चोट है। वो आपको तोड़ना नहीं चाहता, आपके भीतर छुपे भगवान को, आपकी असली क्षमता को बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए जब मुश्किलें आए तो घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराकर कहिए, मुझे तराशा जा रहा है। दोस्तों, इसी तराशने के एहसास को बयां करती है ये कुछ पंक्ति। अगर पत्थरों ने हथौड़े की चोट न खाई होती तो किसी मंदिर में कोई मूरत मुस्कुराई ना होती। लीजिए श्रोताओं, चलते हैं आपके संदेशों की ओर और आपको सुनाएंगे कार्यक्रम में अगला फरमाइशी गीत, आपकी पसंद का। अगला फरमाइशी गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी आई है अरायण से। बनवारी जयपाल, विमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत और विक्रम की। अगली फरमाइश करता है हमारी सांगली जिले के जत शहर से। अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत और रेहान शेख। अगला संदेश है हमारे पास खंडवा से, दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता और गौरव सैनी। अगला संदेश छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और

पूनम वर्मा, साथ ज्योति और शिवांश वर्मा। अगली फरमाइश करता है गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अगला संदेश है हमारे पास गांव कलाना भादरा राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव और लीलाधर स्वामी का। तो दोस्तों, जिंदगी के हर पल का आनंद लीजिए और मुस्कुराइए। लीजिए चलते हैं आपकी फरमाइशी गीतों की ओर। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

लीजिए चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और आपको सुनाते हैं दोस्तों कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। अगला फरमाइशी गीत सुनने के लिए हमारे पास पत्र आए हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप। अगला पत्र है हमारे पास गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जयतेक मिक्का बिरक। अगले फरमाइश करता है आपकी पसंद प्रोग्राम युवाणी कार्यक्रम के मंखू फिरोजपुर, बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और सुनील बजाज। दोस्तों अगला संदेश है हमारे पास मंडी गोलूवाला से ब्रिजलाल चौहान और साथ में नीरज कुमार चौहान। अगले फरमाइश करता है वीरम गांव से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी। अगला संदेश है हमारे पास गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमनाथ, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और ईवा धारणिया। अगला संदेश है दोस्तों नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरमंत कौर और मनुका। हमारे अगले फरमाइश करता है परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत। अगला संदेश है हमारे पास चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। लीजिए सुनिए दोस्तों कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं कभी खुशी कभी गम से ये फिल्मी गीत, आवाजें हैं अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और उनके साथियों की।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित। मेगावाट 918 किलो हर्ट्ज, DRM 909 किलो हर्ट्ज, FM 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोस्तों जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो हर बत्ती हरी हो जाती है। इसीलिए जिंदगी में धैर्य रखिए और प्रयास कीजिए। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जैसा हम सर्व करेंगे वैसा ही हम डिजर्व करेंगे। लीजिए दोस्तों चलते हैं आपके संदेशों की ओर और आपको सुनाएंगे आपकी फरमाइशों पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म करण अर्जुन से। अगला गीत सुनने के लिए फरमाइशें आई है Chak 5 MD पत्रोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और सुनील की। अगली फरमाइश है गांधीनगर गुजरात से, GK परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष की। अगली फरमाइश है दोस्तों ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन धरा, घनश्याम बाबू गोरी और हसन सिक्का की। अगला संदेश है हमारे पास सादुल शहर से, राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ का। अगला संदेश है दोस्तों गांव न्यूला रामपुरा से, सुरेंद्र डिडंट, सकीला डिडंट, संदीप अनवर, अकु बावरा। हमारा अगला फरमाइशी गीत सुनने के लिए अगली फरमाइश है हनुमानगढ़ टाउन से, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और जिशान खान की। तो लीजिए दोस्तों सुनिए ये फरमाइशी गीत।

दोस्तों, अब जानेंगे आज के इतिहास के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को और फिर चलेंगे आपकी फरमाइशों की ओर। आज ही के दिन 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। 1994 में आज ही के दिन यानी 3 जून के दिन ही भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। 2004 में दोस्तों आज के दिन कैन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने। तो लीजिए दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। दोस्तों, इतिहास अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है जो आज एट प्रेजेंट हमारी सामने हैं। जो घटनाएं घटित हो रही है यह भी न जाने इतिहास में चली जाएगी। तो जिंदगी के हर पल का आनंद लीजिए। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। अगला फरमाइशी गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी आई है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण और कपिल, साथ में कुणाल मेहरा की। आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश करता है बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा, कुश, इन सभी की फरमाइश आई है। अगला संदेश है हमारे पास बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना और सुमेध कुमार की। अगला

टॉकीज है दोस्तों हमारे पास, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र। अगला पत्र है श्रीगंगानगर से, मनक्रीत, हीरल और प्रथम का। अगला संदेश है दोस्तों हमारे पास, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य। अगला संदेश हमारे पास, गांव फ्रांसे, जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। अगला संदेश हमारे पास, आसाम से, हितेंद्र दास का। अगले फरमाइश करता है, दुर्गा कॉलोनी, हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए ये अगला फरमाइशी गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और उनके साथियों की।

श्रोताओं, युवाणी कार्यक्रम के बुधवार के आपकी पसंद प्रोग्राम में आप भी अपने पत्र हमें भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। तो दोस्तों, उसके लिए एक पोस्ट कार्ड लीजिए, उसमें लिखिए गीत के बोल, फिल्म का नाम और लिखकर हमें भेज दीजिए। FM 100.1 MHz पर अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए हमारा पता है आपकी पसंद प्रोग्राम द्वारा केंद्र निर्देशक युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़। पिन कोड है 335804। दोस्तों, हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। श्रोताओं, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी।

बुलंदियां खुद ही तलाश लेंगी आपको, बस मौका ना छोड़िए मुश्किलों में मुस्कुराने का। लीजिए दोस्तों, चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी आई है चकपंद्रा पिया से, सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन और गुरमन की। अगला संदेश है मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोशन। अगला संदेश है हमारे पास वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन का। अगला संदेश दोस्तों हमारे पास बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति का। अगला संदेश फाजिल का पंजाब से, खेड़ा परिवार का, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी खेड़ा, शालिनी और टिवांशी खेड़ा का। अगला संदेश दोस्तों हमारे पास नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा का। अगला संदेश दोस्तों डब्बा वाली से बसंत सिंह चंद का। अगली फरमाइश करता है कमल सहानी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, साथ ही संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत का। अगला संदेश दोस्तों गांव ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खान, आरिफ खान, ईयान खान, अर्शन खान, अरमान का। अगला संदेश हमारे पास भटिंडा रोड डब्बा वाले से राजेंद्र, अंजू, मोहित और तानिया नारंग। अगले फरमाइशकर्ता हमारे नई बस्ती गंज डुडवरा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर और कलीम अंसारी का। अगला संदेश वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा का।

दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा सकता। जिंदगी एक आईने की तरह होती है, जब हम मुस्कुराएंगे तभी वो मुस्कुराएगी। समय सबको मिलता है दोस्तों, जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। लीजिए चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर, और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम के आखिर में एक आखिरी फरमाइशी गीत आपकी पसंद का। अनारकली बाजार जगराव से फरमाइश आई है सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या, सुचा सिंह, विनोद पुरी और जयपाल की। अगली फरमाइश आई है गांव अरायन से बनवारी लाल, विमला, ममता, दीक्षा, सुशांत, विक्रम और मोक्ष की। अगली फरमाइश है तहसील भादरा अनूप शहर से गजानन सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, किन्नू, अक्षु, महावीर लोहरा, फूसाराम और उनके परिवार के सभी सदस्यों की। अगली फरमाइश है दोस्तों बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी की। अगला संदेश है हमारे पास गंजडूडवरा उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिस शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी। अगला संदेश हमारे पास बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल, देवांगन कौशल्या और हेमलता, उनके साथ डिंपल का। अगला संदेश हमारे पास हनुमानगढ़ फाजिल का से,

रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल का अगला संदेश हमारे पास महाराष्ट्र जालना से विजय पाटिल का। तो लीजिए दोस्तों आपकी पसंद का ये आखिरी फरमाइशी गीत सुनिए।

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ नए विषय, कुछ नए गीतों के साथ और कुछ नई फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

यशोदा भी युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराइकी हिंदी में। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30।

पर जिले की चिट्ठी 6:40 पर, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल आप सुनेंगे 7 बजे, जिसमें पत्रोत्तर के अंतर्गत आज श्रोताओं के पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत लोक भजन, कुछ कृषि संबंधी जानकारी भी आप इसी कार्यक्रम में सुनेंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर, एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चर्चा का विषय है

एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनभावन आप सुनेंगे रात 10 बजे। प्रस्तोता रोहिता शर्मा, कार्यक्रम के संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिराई की।

अभी आप सुन रहे थे सराय की मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR। हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15-20 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर हवाई यात्रा को महंगी होने से बचाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष ATF को मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन की कीमतों में आए भारी उछाल से इस क्षेत्र को बचाने के लिए ये फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य संकट के समय उचित कीमत पर ईंधन की आपूर्ति करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विमानन क्षेत्र से जुड़े

0: 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
1: आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
2: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक वाहनों में बदलने की योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सहयोग से लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में आज एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगजनी की इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को सशक्त करने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचने के लिए जागरूकता जरूरी है। श्रीमती मुर्मू ने सभी एजेंसियों और हितधारकों से जनजातीय कल्याण से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान देने को कहा।
3: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्यों के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित।
0: भारत सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। देश ने सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की स्थिति दुनिया भर में मजबूत हो रही है। श्री जोशी ने कहा कि देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गति से बढ़ रहा है, इससे ऊर्जा सुरक्षा सशक्त हो रही है। इधर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों ने 7,171 मेगावाट बिजली उत्पादन कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रदेश की 7,580 मेगावाट क्षमता की 23 इकाइयों ने कल ये उपलब्धि हासिल की। प्रदेश के 26 जिलों के 2-2 ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 2027 तक प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली देने की कवायद में अब चित्तौड़गढ़ और टोंक जिला भी शामिल हो गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में अजमेर डिस्कॉम के 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 10 और जोधपुर निगम के 3 जिलों के 2-2 ब्लॉक में दिन में बिजली मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज अंधड़, बरसात और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी

0: जारी की है। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। साथ ही कई हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं। विभाग के अनुसार आंधी बारिश का ये सिलसिला 6 जून तक बना रह सकता है। इस दौरान हीट वेव से राहत का दौर बना रहेगा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के अगले 15 से 20 दिनों में विभिन्न स्थानों पर पहुंचने की संभावना है।
1: वर्तमान में मानसून के केरल तट पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आगामी 24 घंटों में केरल में मानसून के दस्तक होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार इस बार पूरे देश में सामान्य से 10% कम बारिश होने के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में इस वर्ष मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए तकनीक और AI आधारित प्रणालियों के उपयोग पर जोर दे रही है। प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 की अहम भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में आयोजित वेबिनार में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल वित्तीय प्रणाली में डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसीलिए नियमित सुरक्षा ऑडिट के साथ ही साइबर खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। राज्य सरकार के एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म राजकाज ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को नई गति और दक्षता प्रदान की है। इससे शासन प्रक्रियाएं ज्यादा जवाबदेही और नागरिक केंद्रित हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से विकसित इस प्लेटफॉर्म से 71 विभागों और 57,000 से अधिक कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। साथ ही राजकाज के जरिए अब तक 50 लाख से ज्यादा ई फाइलें सृजित की जा चुकी हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में श्री मांडविया ने कहा है कि साइकिल स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की पहचान है। ये हमें फिट रखती है। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। श्री मांडविया ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल अभियान से जुड़ने के लिए युवाओं की सराहना की।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
0: राज्य की ग्रामीण आबादी को अब घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। सहकार से समृद्धि अभियान के तहत सहकारिता विभाग ने ये महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड की सहायता से इन्हें माइक्रो ATM दिए जा रहे हैं। इससे खातों के बैलेंस, वित्तीय लेन देन की जानकारी मिल सकेगी। वहीं समितियों के व्यवस्थापक ग्रामीणों के घर और कार्यस्थलों पर जाकर उनके खाते खोल सकेंगे और जमा संग्रहण भी कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15 से 20 दिनों में देश के

0: विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में बीते महीने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, विधिक जागरूकता और जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जिले की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा। अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ गंगा दशहरा के अवसर पर कैला देवी स्थित कालीसिल घाट से किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। अभियान के दौरान जिले भर में स्वच्छता, श्रमदान, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र एकोरासी का निरीक्षण कर नवीन फार्म पौंड का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर जल संरक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उनके करौली प्रवास के दौरान पर्यावरण चेतना, जन स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा भी आयोजित की गई। मई में पांचना बांध के पानी को गैर कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई का काम शुरू किया गया। कमांड क्षेत्र के किसानों ने पहले 39 गांवों तक सिंचाई जल पहुंचाने की मांग रखी, जबकि गैर कमांड क्षेत्र के किसान भी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय रहे। प्रशासन पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी करता रहा। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित डाइट परिसर में एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 132 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। शिविर में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम चल रहा है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया तथा गुणवत्तापूर्ण तथा त्रुटि रहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में राज्य सरकार का ग्राम रथ अभियान भी ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना रहा। अभियान के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलने के साथ उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करौली जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राशि के प्रभावी उपयोग और शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीणा ने जिला कारागृह तथा किशोर गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों एवं बालकों को उनके अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा नालसा हेल्पलाइन की जानकारी प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई के साथ साथ विद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजाति गरिमा उत्सव के तहत जिले के चयनित ग्रामों में लाभार्थी सैचुरेशन शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ

0: चाया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण जागरूकता गतिविधियां चलाई गई। करौली जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आसारों 10,000 करोड़ रुपया एक मुश्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूता में 155 गीगावाट रो आंकड़ों पार करने दुनिया रो दूजो सबू मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम माए आवणरा आसार। 15-20 दिन माए देशरा न्यारा न्यारा ठोड़ा ताई पूगण री आस। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया री साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज। इनने स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवन शैली रो प्रतीक बताया। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार पश्चिम एशिया संकट ने ध्यान में रखता हवाई यात्रा ने महंगी होवणो बचावण सारो मूल्य स्थिरीकरण कोष ETF ने मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन री कीमता में आया उछाड़ू ई हल्का ने बचावण सारो ओ फंड बनायो जायला। इनरो मकसद आपदारी बगत वाजिब कीमत माथे ईंधन री सप्लाई करनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसला माथे मोहर लागी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देवता मीडिया ने बतायो के इणु कीपना ते बनाई राखण में मदद मिलेला। वणा कहो के ई फैसलाओं विमानन हल्काओं जुड़िया 77 लाख रोजगार सुरक्षित वह सकेला।
2: आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
3: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी हल्का माए पुराना ट्रका और बसा ने आधुनिक वाहन माए बदलन री योजना ने मंजूरी दी है। आ योजना दिल्ली हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश री मददू लागू करी जायला। श्री वैष्णव कहो के 2 साल री ई योजना रो मकसद प्रदूषण ने कम करने साफ परिवहन ने बढ़ावा देवणो है। नवी दिल्ली रा मालवीय नगर माए आज एक होटल माए आग लागणो 21 लोगों री मौत वेगी। वठे ई हादसा माए 40 लोगों ने हिफाजती बारे निकाली जा और इलाज सारू कनेरा अस्पताल माए भर्ती कराई जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसा माथे गहरो दुख जतावता कहो के पीड़िता ने हर चाइज की मदद दी जावे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोषों मरण वाला रा परिवार ने 2-2 लाख रुपये री अनुग्रह रकम दी जायला। घायला ने 50,000 रुपये री मदद देवन रो ऐलान करीजियो है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हादसा ने घणो दुखदायी बताया है, वरना हादसा में जान गवा देवन वाला रा परिवारजन रे प्रति गहरो शोक जतायो है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां और परियोजनावां ने मजबूत करण सारो आज नवी दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन वियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनरो उद्घाटन करियो। ई मौके राष्ट्रपति कहो के जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूपों घणो मजबूत है, इनने आगे बढ़ावण री कोशिश करी जावणी चाहिए। वणा कहो के अजेई कई जनजातीय तबका ने सरकारी योजनावां री जानकारी नहीं है। देशरा हर गांव और हर मिनक ताई विकास पुगाउण सारू जाग जगावणो जरूरी है। श्रीमती मुर्मू सगली एजेंसियां और हितधारकाओं जनजातीय कल्याणों जुड़िया हर बिंदु माथे ध्यान देवण ने कहो।
4: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्य के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों

0: को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित।
1: भारत सौर ऊर्जा भूता में बढ़वार करने दुनिया रो दूजो सब मोटो सौर ऊर्जा बाजार बन गयो है। देश सौर ऊर्जा भूता में 155 गीगावाट रो आंकड़ों पार कर लियो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो के रिन्यूएबल एनर्जी रा हलका में भारत रा हालात दुनिया भर में मजबूत वैरिया है। श्री जोशी कहो के देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गतियों बदरियो है, इणु ऊर्जा हिफाजत मजबूत वैरी है। अठीने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम रा कोयला आधारित विद्युत ग्रहां 7171 मेगावाट बिजली उत्पादन करने अजय ताई रो सब ठाव प्रदर्शन कयो है। प्रदेश री 7580 मेगावाट बूतारी 23 इकाइयां काले कामयाबी हासिल करी। प्रदेश रा 26 जिला रा दो दो ब्लॉक माए काश्तकार ने दिन माए बिजली मुहैया कराई जावे। साल 2027 ताई प्रदेश रा खेती उपभोक्ताओं ने दिन माए बिजली देवण री कवायद माए अबे चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलाई भेड़ा वे गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा बतायो कि अबार अजमेर डिस्कॉम रा 14 माए 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम रा 15 माए 10 और जोधपुर निगम रा 12 माए 3 जिला रा दो दो ब्लॉक माए दिन माए बिजली मिल रही है। यह समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मौसम महकमो प्रदेश रा कई हल्का माए तेज अंधड़ बिरखा और ओलापड़न सारू चेताया है। 5 जिला माए बिरखा रो ऑरेंज और 5 जिला माए येलो अलर्ट बताई जो है। साथ ही कई हल्का माए तेज हवाई चाल सके। महकमा मुजब आंधी बिरखा रो ओ सिलसिलो 6 जून तई बण्यो रह सके है। ई दौरान हीट वेवो आराम रो दौर बण्यो रह वेला। वठी भारत मौसम विज्ञान केंद्र IMD मुजब कालेऊ दक्षिण पश्चिम मानसून रे केरलम माए आवण री आस बताई जी है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के मानसून रा आवता 15-20 दिना माए न्यारी न्यारी थोड़ा ताई पुगण री आस है।
2: वर्तमान में मानसून के केरल तट पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आगामी 24 घंटों में केरल में मानसून के दस्तक होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार इस बार पूरे देश में सामान्य से 10% कम बारिश होने के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में इस वर्ष मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गृह विभाग री आला दर्जा री मीटिंग ली। मुख्यमंत्री रहवास माते भी मीटिंग में श्री शर्मा पुलिस प्रशासन और परिवहन महकमा कानियों गैर कानूनी मोडिफिकेशन और काली फिल्म वाला वाहना माथे कड़ी कार्रवाई रा निर्देश दिया। साथ ही नशा माते असरदार आंकस लगावन सारू सरहदी हल्का माए खास निगरानी और सावचेती बधावण माथे जोरी दियो। राज्य सरकार सुशासन ने मजबूत करण सारू तकनीक और AI आधारित प्रणालियां ने काम माए लेवण माथे जोर दियो। प्रदेश रा माली बंदोबस्त ने बत्तियों बत्ती साफ गोई जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनावण माए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 री खास भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए विया वेबिनार माए रोकड़ प्रबंधन प्रणाली ने मजबूत बनावण री बात कही। वणा साइबर हिफाजत ने ठावी प्राथमिकता देवण रा निर्देश दिया। मुख्य सचिव कहो के डिजिटल रोकड़ प्रणाली माए डेटा हिफाजत महताऊ है। ई कारण बरोबर हिफाजती ऑडिट रे साथ ही साइबर खतरा रे प्रति जाग बधाई जावे। विश्व साइकिल दिवस रे मौके केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया लोगों साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अर्ज करी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे आपरा संदेश माए श्री मांडविया कहो कि साइकिल स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवनशैली री पिछाण है और आपा ने फिट राखे है। वणा कहो कि इणना काम माए लेवणु प्रदूषण माए कमी आवेला। साथ ही पेट्रोल डीजल री बचत वेला श्री मांडविया फिट इंडिया आंदोलन रे तहत चलाया जा रिया संडे ऑन साइकिल अभियान जुड़न सारू नौजवाना री सराहना करी।
3: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक

0: दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
1: विश्व साइकिल दिवस रे मौके प्रदेश में कई ठोड़ा साइकिल रैली राखी जी। करौली में भी रैली री मार्फत बिना ईंधन वाला परिवहन रा साधन साइकिल ने चावो बनावन रो संदेश दी रिजियो। ई मौके हनुमानगढ़ में साइकिल जागरूकता संगोष्ठी भी। रेलवे बोर्ड कोटाऊ उज्जैन रे बीच पहली बार सीधी मेमू ट्रेन सेवा ने मंजूरी दे दी है। इणु राजस्थान और मध्य प्रदेश रे बीच धार्मिक और कारोबारी संपर्क और मजबूत वेला। बोर्ड कोटा चौमहला मेमू ट्रेन रो पसारो उज्जैन तई करण री मंजूरी दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन बतायो कि आ रेल सेवा नुआ भगत माथे बरोबर चालती रहेला। कोटाऊ सवाना पूणी छः बजे रवाना वेर, दोपहरा 12 बजे उज्जैन पुगेला, पाछा आवता दोपहरा 12:30 बजे उज्जैन नु रवाना वेर, संध्या 7 बजे कोटा पुगेला। चुनावी प्रक्रिया और अभियानारी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथमा और नवाचारा माथे बतल सारू नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुई हो। चुनाव आयोग कानियो वेरियो ओ दो दिन रो इस सम्मेलन में जिला चुनाव अहलकार, मतदाता पंजीकरण अहलकार, शिक्षाविद, शोधकर्ता और चुनावी साक्षरता क्लब रा सदस्य भेड़ा वेरिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बतायो कि सम्मेलन में भ्रम वाली सूचनावां, दुष्प्रचार, एआईयू बनिया डीप फेक समेत दूजा मुद्दा माथे विचार करियो जावे। राज्य री ग्रामीण आबादी रो अबे घरा बैठ्या बैंकिंग सुविधा मिलेला। सहकार उ समृद्धि अभियान रे तहत सहकारिता महकमा अ महत्वपूर्ण पहल करी है। महकमा रा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा बतायो के ग्राम सेवा सहकारी समितियां, पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां रे मार्फत डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं ने पसारो दियो जावे है। ने अबे आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन दे रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना सारू 10,000 करोड़ रुपया री एक मुश्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूंता में 155 गीगावाट रो आंकड़ों पार करने दुनिया रो दूजो सबू मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम में आवण रा आसार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया री साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज। ने साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।

मिली हुई 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तुत करता है आज के कार्यक्रम के रमेश चावरिया और नवीन सिसोदिया।

0: राम राम नवीन भाई, राम राम राम राम।
1: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम।
0: कार्यक्रम सुनिया सगळ्या परिवाराने आज आपना कहानी सुन घणी घणी रामा श्यामा और मोकली मोकली
1: रामा श्यामा।
0: बिल्कुल नवीन भाई साहब, और सुनाओ क्या हालवाल है?
1: हाल बढ़िया है। थे सुनाओ, आज गर्मी तो की पच गया कि मन लगे है?
0: थोड़ी बहुत आई है क्योंकि लूज की है बा, थोड़ी सी कड़की सी मंद पड़ी है क्योंकि लालच ना छांटो छिड़को हो,
1: छांटो छिड़को हो, ओला भी पड़या
0: कई जगह। आपने जगह भाई लोग बताओ है कि ओला भी पड़ा और कई जगह कह आंधी की वजह से दरखत भी पड़ गया,
1: कई जगह एक दो मौत भी होगी।
0: मौत भी होगी तो माड़ी बात है, पर प्रकृति का आगे अपनों बस कौन चल नहीं। फिर भी आपने तरफ से सावधानी जिकी है।

0: देखो जी। देखो रामेश्वर भाई, मौसम अगर खराब हो गए नहीं तो सावधानी तो देखो रखनी चाहिए,
1: जरूरी है। और इंगो मोटो सो कारण जी आप प्रकृति की बात करानी तो प्रकृति के माँ छेड़खानी कठिन कठा तो आपने जो को मिनख जाता है नहीं वो भी कर ला रही है
0: तो करिए। देखो अब जी आप अंधाधुंध जी फर्टिलाइजर गेरा,
1: हाँ गेरा गेरा
0: केमिकल गेरा
1: गेरा,
0: तो आज आप कोई जा रहा है तो बड़ा बात हो रही।
1: हाँ हाँ
0: भाई यूरिया मान लो जितनी चाहिए अपने खेत में भी तीन तीन गुना चार चार गुना गिरन ला रहे,
1: गिरन ला रहे है। अपन के करा वो भाई लोग जगह है, अपने किसान भाई लोग है बेबिकी है, माथा में भूख मांड रहा है कि है अब की बार अगर 2 क्विंटल हो तो

0: पास सोचा अगर दो गेर दी तो दुगुनी हो जैसी, अरे दुगुनी कोनी हुआ है
1: सही बात है।
0: बी में बा कमी जिगे बा यूरिया की कोनी बा कमी और कोई चीज की हुआ है, अरे
1: सही
0: अपन
1: बात है
0: पतो कौन लागे ठीक
1: बिल्कुल।
0: है बा पतो क्या लाग सी थे बताओ।
1: पतो इं लाग सी कि आप बिंग माटी की जिकी जांच है बा करवा ले वहाँ, बिंग उसको पीएच मान है वो भी आपने देखना पड़ेगा। कि देखा नहीं कई बार वो के करे नहीं सियाणा मनी के करे कह सूझे ना बुझियो बोलो है ना। तो इन्हें बिना आप जानकारी ले सियाँ भाई लोगों से आगे जाके संपर्क करांगा फिर ही ठा लगेगा।
0: मैं तो आज दिन आगे कई किसानों मिलियो नहीं रमेश सर, मन यहाँ लगा किसान वो सोचा है कि मैं अगर मान लो बदलाव कर दियो कोई कोई मान लो केमिकल कम गाल दियो तो मेरी उपज कम हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी तो रुपया कम आवेगा, और रुपया कम तो देखो कोई नहीं बढ़िया कौन लगे
1: आता है।
0: है। लेकिन एंगो एक इलाज है, एंगो इलाज यह है कि एकर थे 1 बीघा 2 बीघा में शुरू कर गए तो देखो
1: हाँ भाई एक बार थोड़ा सो काम जो को है वो आपने थोड़ा सो कम पसार ले
0: भाई,
1: नहीं।
0: थे 2-3 साल करो घनी अगर ऑर्गेनिक
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: थाना आप ही पता लाग जैसी कि भाई के फर्क है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और आज आपा गेड़ा राजपुरा पिपेरन कानी है ना
0: हाँ किसान सभा ही बटे
1: किसान
0: कृप
1: सभा
0: को
1: ही
0: आयोजित करी देखो
1: कृपको की
0: हाँ
1: तरफ शू किसान सभा ही
0: हाँ
1: प्रधानमंत्री प्रणाम किसान सभा का नाम शू।
0: हाँ एंगो देखो मेन जिको ये सभा को जिको उद्देश्य हो नहीं वो अभी जी क्या प्रधानमंत्री जी आपने घोषणा करी कि भाई खेत बचाओ, तो खेत बचाओ की जिकी मुई में नहीं बिना ढंग से समझाना वास्ता वो जिको आज आज सभा रखी गई, और मैं अच्छा खासा किसान भी आया और कई वैज्ञानिक आया और आपा भी बैठे पुगता गया है।
1: बिल्कुल। तो बार रेडियो रिपोर्ट जी की आप ले रहा है क्यों ना भाई लोग तो करा पुगती
0: करो सा
1: बिल्कुल। श्रोताओ ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरण गमा आज पीएम प्रणाम किसान सभा को आयोजन करो गयो। इस सभा गमा आसला पासला जाने जान विशेषज्ञ पधार्या और जागरूक किसाना भी इस कार्यक्रम में भाग लियो। श्रोताओ इस कार्यक्रम में जितना भी विशेषज्ञ पधार्या वे जैविक खेती का बारा गमा और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैविक खेती अपने किया करनी है और रासायनिक खेती का के दुष्परिणाम है बिंग बारा गमा जानकारी किसाना सु साझा करी। इस कार्यक्रम में सहायक वैज्ञानिक आईपीएम केंद्र सूरतगढ़ का श्री पूर्ण बाधु किसाना सामने आपकी जानकारी साझा करी।
2: हमने एक छोटो सा एग्जांपल बताऊं, आपा खेत में डिग्गी बनावा, डिग्गी में कितो पानी होल्ड हुआ है 10 बीघा को मान लो, तकड़ी बना ली तो 10 बीघा खेत के 5 बीघा तो वो बनावा ही को नहीं। अगर 1% कार्बन इंक्रीज हुआ है नहीं सोयल में, 1 एकड़ में 1% हुआ है 70,000 लीटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ अभी मिट्टी की, मतलब आप मिट्टी खुद में 70,000 लीटर पानी रख सके है कि 1% कार्बन हो गया। आपा नाइट्रोजन फास्फोरस से डाल डाल के फास्फोरस सीधो सो है, फास्फोरस कहीं भी डालोगे पत्थर बना देगी, फास्फोरस पौधे ने यूज की तो ठीक है वरना पत्थर बनेगी। अभी बोस बताए नहीं ऊपरों छिड़का, ऊपरों छिड़का बा अगली फसल में काम आगी तो आगी, पहली में तो आवाई कौन अब है जिका 4 महीना 3 महीना टाइम है इनमें सारो पत्थर बने हैं। बी देख गए पूरे मतलब इंडिया की रिपोर्टा रिपोर्टा के हिसाब सोयल गई हूँ। भारत सरकार अभी के करे कृषि मंत्रालय का एक अभियान शुरू करे खेत बचाओ अभियान MP में करे, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री भी बैठो है शिवराज जी चौहान अपने, तो वहां करे बिंग थी मैं मिट्टी बचाओ खेत बचाओ और किसान बचाओ। पहलो काम ही पौधे भी वह मिट्टी, बीज अंदर जाओगे उगेगो, बीज जाओगे बीज के बाद ही पौधे बढ़ाओ, तो पहले आधार हुआ भी मिट्टी बढ़िया हुआ। तो सीड सर्टिफिकेशन मतलब सीड को आप उपचार को बतावा, आज पोलियो का टीका क्यों लगा है कि काल ने बीमारी ना आवे, सीड अपना एक तरीके को वैक्सीनेशन है भाई, अपना टीका छोटी एज में लगवा लिया नहीं 5 साल तक अपनी पूरी जिंदगी की गारंटी है वह रोग को नहीं आवे। सीड में अब जितनी भी है नहीं फंगस रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वह थे अगर बीज के सागे ही अगर बिन कंट्रोल कर लेगा तो मैं आगे खेत में कोनी बगी, मारो फोकस हो ये खेत बचाओ अभियान काल जी को शुरू करो।
1: कृषि पर्यवेक्ष सुनील शर्मा भी आपकी जानकारी किसान लोगों के सामने रखी।
3: आगे आपने योजनाओं के बारे में जानकारी है, आजकल तो सारा जाना ही है, सारो पोर्टल ऑनलाइन हो गया, किसान पोर्टल है भी आप हर प्रकार की कोई भी स्कीम की अपना आवेदन कर सका। अब का टाइम मौके पर कृषि यंत्र ने छोड़ गए और आप सारा आवेदन कर सका, सारा खतर पोर्टल आपने खुल है। योजना मेन मेन अपने एरिया की आपने मैं हटे बता दू, एक तो फुहारा सेंटर की फाइल आपने ला गई है तो बिंग खतर पोर्टल खुल है, बिंग आप आवेदन कर सका, बिंग बाद में पाइपलाइन को भी पोर्टल खुल है, पाइपलाइन खतरा अनुदान खतरे आवेदन कर सका। पाइपलाइन में वो है भी अब जी अपना जे थे कोई आवेदन करो तो जमाबंदी कोटेशन लेके आप आवेदन जी कर दियो तो एक बार पाइपलाइन दबानी को नहीं जब तक मतलब अपनी फाइल सैंक्शन नहीं हो जाए, कृषि विभाग में अनुमति नहीं मिल जाए इस तक आपने इंतजार करना है। कृषि यंत्र को पोर्टल अभी तक खुलियो को नहीं, तो तारबंदी को भी पोर्टल खुल है, तारबंदी को आवेदन कर सका, तारबंदी खतर भी जमाबंदी नक्शो जनाधारे डॉक्यूमेंट है आपने तारबंदी आवेदन कर सका। डिग्गी को पोर्टल खुल है, डिग्गी की अब प्री वेरिफिकेशन भी चालू हो गया है, मतलब टारगेट सरकार का अब आ जाएगा प्री वेरिफिकेशन कराने ला रहे। देखा पुरानी फाइल लागड़ी 2022-23 के आसपास मांगा नंबर आ जाएगा इस साल
1: भाई लोगों।

0: जयंत हुड्डा जी भी कार्यक्रम में पधारे। राज का सहायक वैज्ञानिक आईपीएम केंद्र सुरतगढ़ का वैज्ञानिक है और आम भी आपकी जानकारी किसान लोगों सागे साझा करी।
1: जैविक खेती की बात हमने बहुत बताई है, यूरिया के बारे में बताई है, डीएपी के बारे में बताई है। तो एक तो गांठ आधा बंद के जानी है के धारो एक बीघो धारे घर के घने खतर होना चाहिए। तो बीम थे कणक कर लियो धारे ग्वार फली घनी है ग्वार कर लियो मूंग कर लियो दाना कर लियो दो तीन बांधगी कितनी सब्जी कितनी दिखा चाहिए। एक बेल लगा लियो वो घिये की बेल कई दिन घन सब्जी पालक लगाओगे पालक धारे कई दिन यहाँ करके कितनी सब्जी घनी हो आपको एक टाइम तो दाल
0: श्रोताओं इस कार्यक्रम में पधारे रखे जागरूक किसानों से भी मैं बात करी।
2: राम राम साहब।
3: राम राम साहब।
2: अच्छा थारो शुभ नाम की है?
3: सुरजीत जी जानी।
2: अच्छा थे ई गांव का ही रहने वाला?
3: हां जी पुराना ही गांव का रहने वाला।
2: तो बिल्कुल आपने आज वो कार्यक्रम रखियो है क्रिपको की तरफ से और अठा जगह विशेषज्ञ आयडा है और माँ जैविक खेती के बारे में बीज उपचार के बारे में और भूमि सुधार के बारे में भूमि बचाने के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई तो क्या लगे?
3: बहुत ही अच्छा लगे जी। हाँ जी की जैविक खेती के बारे में बताई हुआ बहुत बढ़िया बताई हुआ और यहाँ खेती जी की मैंने करनी भी चाहिए जी, थोड़ी जगह में भी करनी चाहिए। अगर जो सारी एक सागर न करा तो एक एक बीघो तो जरूर ही करना चाहिए जी।
2: बिल्कुल इनको जो शुरुआत है ना वह आपने थोड़ा सा रकबा छू थोड़ी सी जगह छू
3: जागरूक
2: किसान है बासु आपा करा बात। राम राम जी।
4: राम राम जी। राम
2: थारो शुभ नाम की
4: है? मेरो नाम दिलीप बंबू है जी।
2: बंबू साहब आपने आज ही कार्यक्रम का जैविक खेती के बारे में आपने जगह विशेषज्ञ है जी राजेश जी है या फिर जगह दूसरा जानी जानी विशेषज्ञ है बातें बताई थाने क्या लागी और नाल टाइम में जैविक खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
4: बिल्कुल करनी चाहिए जी। जागरूकता अभियान चलायो आज बहुत अच्छी लगी। मैं खुद चल गया हूं। मैं 2 बीघा कणक कई साल करने लग रहा हूँ।
2: हाँ हाँ कई साल कर ला लो धीरे धीरे बधायो को
4: धीरे ना बधायो जे को
2: जबकि रासायनिक खेती है नी बा इतनी ज्यादा खराब लोगों का खून का महंगा जगह कणे भी मिलने लग गया और अपनी जी माटी है वह भी दूषित होगी पर्यावरण भी दूषित हो गयो और आपने जगह मित्र कीट है नी वे भी नष्ट हो गया। तो अब जैविक खेती जी की अगर आप अपना से नहीं तो आपने जी भूमि है वह मजबूत होगी?
4: बिल्कुल होगी मजबूत होगी। आज कोई चीज में सब्जी है वो रहता अपने टेस्ट को रही हो बिल्कुल खाने में भी कोई टेस्ट को नहीं ऑर्गेनिक जी बिरयानी चीज कोई खावा तो बिंगो और अपनी नहरी जमीन है सब्जी है तो बहुत अंतर दिशन लग रही है। तो इन वास्ते बहुत जरूरी है की ऑर्गेनिक करनी मजबूरी में करनी पड़ेगी। अरे यूं चाहूं कि सरकार अगर कोई सहायता देने लाग जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार वो निवेदन है कि ऑर्गेनिक पर किन की सहयोग करे तो जमींदार भी का नहीं रुझान बदे बंग।
2: बिल्कुल सरकार तो आपने जी की है ना बे शोकर ला रही है इतनी अच्छी जानकारी दी और महाराज से बात करी वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। बंबू साहब। राम राम साहब।
3: राम राम।
2: थारो नाम की है?
3: रणजीत।
2: अच्छा रणजीत जी आज जो को कार्यक्रम रखियो और इंग आपने जगह विशेषज्ञ है तो आम बड़ी अच्छी जानकारी दी और भी जानकारी थे सुनगी आगे खेती जी की है बात जैविक धीरे धीरे करोगा?
3: बिल्कुल जी करनी पड़ेगी।
2: करनी पड़ेगी है ना आने वाले टाइम में पीढ़ी बचानी है पर्यावरण बचाना जरूरी है।
3: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: थे क्रिप को शु भी जुड़ेड़ा हो तो बिंग बारे में भी जानकारी
3: दे जावा मिल गया जावा सारी जानकारी की बतावा मैंने।
0: इस कार्यक्रम को संचालन क्रिपको का फील्ड अधिकारी राजेश गुदारा जी करियो और जैविक खेती का के फायदा है और अपन जैविक खेती किया कर सका इन बारे में भी जानकारी किसान लोगों ने दी।
5: किसान भाइयों का आज एक पीएम परिणाम किसान संगोष्ठी को आयोजन राजपुरा पिपेरन ग्राम की पंचायत में करियो जिकम अच्छी संख्या में किसान भाइयों भाग लियो। आज की किसान सभा के माध्यम संतुलित उर्वरक उपयोग है जी हाँ यूरिया डीएपी गोंदा धुंध उपयोग करना बिन संतुलित किया कर सका मिट्टी की जांच करवा के ऑर्गेनिक कार्बन को स्तर में किया सुधार कर सका। अब मेन बात जी हाँ बीज की चल है तो बीज में बीज उपचार को के रिजल्ट है बीज उपचार किया कर सका किसान भाई सर्टिफाइड सीड की के भूमिका है बीज खुद गोकर किसान भाई तैयार करे तो बिंग लिए बीज उपचार किया करे इन बारे में विस्तार चर्चा करी
0: और आखिर में ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन का सरपंच प्रशासक लालचंद लोहरा आयडा विशेषज्ञ ने और जागरूक किसाना ने धन्यवाद करियो और जैविक खेती का के फायदा है वह बात महारा सागे और किसाना सागे साझा करी।
2: सरपंच साहब राम राम।
6: राम राम जी।
2: सरपंच साहब आज आपने गांव में ई क्रिपको की तरफ से कार्यक्रम रखो गयो है तो इन बारे में थे के कहना चाहो?
6: बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा गया सर क्रिपको को।
2: बिल्कुल हरा हाथ में है ग्राम पंचायत का हाथ का मां थे ईशा जगह सम्मेलन है ईशा कार्यक्रम जगह है वे आपने जगह कृषि विज्ञान केंद्र है बादशो भी संपर्क करके करवास को
6: जरूर साहब आगे भविष्य में ध्यान रखांगा और जो भी प्रोग्राम है वो समय समय पर करवाऊंगा।
2: और इन अलावा जी आज का कार्यक्रम में जगह अपना किसान भाई लोग भी पुगेड़ा हा तो बने आपने जगह विशेषज्ञ है वे के बातें बताई और थाने किसी बात है सही लगी?
6: राजेश जी गोदारा जी जो क्रिपको के अपने पधारे हुए थे उन्होंने

0: जो बात बताई जो अपने स्वयं उपचारित करके फसल बोनी चाहिए वो सबसे बेटर थी, और टीडी मंडल से जो लोग अपने पधारे हुए हैं विशेषज्ञ, उन्होंने भी जो जैविक खेती करने वाली है जैविक खेती के ऊपर जोर दिया, वो सबसे बढ़िया बात थी। क्योंकि आज हर किसान या हर घर में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, गांव में तो जगह बहुत अच्छी होती है, उसमें अपने सब्जी के बेलें मिर्ची जैसे पौधे वगैरह लगा के अपने जैविक खेती कर सकते हैं और सब्जी जो अपने स्वयं की उत्पादन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल आनल टेम अपने जगह गाँव का राजपुरा गाँव का पंचायत का जगह किसान लोग है बने भी थे जागरूक होगा और धीरे धीरे जैविक खेती का नहीं प्राकृतिक खेती का नहीं बांगो जो रुझान है वो बढ़ाऊगा।
0: हाँ जरूर साहब,
1: बिल्कुल महाराष्ट्र में बात करी वास्ते थारो मोकलो सर धन्यवाद।
2: किसान भाइयों ई त्रिया ई कार्यक्रम को समापन होयो और ऐडा विशेषज्ञ नुई नुई भांतगी नुई नुई जानकारियां जकी है वे जैविक खेती के बारे में ऐडा जागरूक किसाना ने दी और बिंगा फायदा गिनाया। ई कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता नवीन सिसोदिया और वाचन स्वर रमेश चावरिया। बिल्कुल आपने सुनी जानकारी की बता
3: बहुत ही फुट जानकारी है।
2: बिल्कुल और किसान भाई लोगों ने ई जानकारी को जरूर फायदा उठाना चाहिए। अपना आज बुधवार को दिन है नवीन भाई और बुधवार के दिन आप पत्रोत्तर कार्यक्रम ले रहे हैं।
3: पत्रोत्तर तो बहुत जरूरी है, आप पत्र नहीं पढ़े तो अपना श्रोता हो जाए
2: नाराज। अब तावड़ा सा थे यहां करो मोबाइल वाली जी की खिड़की नहीं बा खोलियो और
3: सीधे सच का एड्रेस खिड़की में खोल रखी है। आगे आगे जी को पहला मैसेज है वो एड्रेस रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। एक है कि पत्रोत्तर जी को चौपाल वो आने बहुत बढ़िया लगे, आजकल जी को दो आवाज तीन आवाज में हुए नी वो आने और बढ़िया लगे। एक है किसान भाई खातर से जी की जानकारियाँ दो और जहाँ शुक्रवार ने गीतरो गजरो है मंगलवार ने नाटक है जरूर गुलाम सुने हुए तो सुना तो देखो आप बात तो देखो रामेश्वर भाई पक्की है तो आने बहुत ही बढ़िया लगे तो थे ही सुनता रहो गोस्वामी परिवार। और देखो आगे एक और पत्र ऐड है ये है चक 15 पीएस यूँ सरबजीत सिंह जोशन सरबजीत कौर जोशन गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सूँ आदर्शपाल सिंह जोशन वैंकूवर कनाडा सूँ रोबिन सिंह जोशन हर बार एक कंगारू बना के भेजे कर अब कल कंगारू कौन बनायो
2: कि बाहर ले देश में बैठे है ना
3: ना एक कंगारू बना दे तो मैंने पता लाग जे के ऑस्ट्रेलिया
2: है ऑस्ट्रेलिया से आया वो एक निशान है ना
3: तो ए देखो एक एक चौपाल पत्रोत्तर पेश करता ने घणी घणी रामा श्यामा दिए सारू पहला तो आने शुक्रवार ने गीता रो गजरो बढ़िया लागे भी मैं जिकेते तिल की उन्नत खेती की जानकारी दी और नाटक पग फेरो ये सारी चीजें आना बहुत ही बढ़िया
2: बिल्कुल कार्यक्रम सुनता है और सुन के वो फायदा उठावने नवीन भाई जद मजा की बात
3: जद तो मजा है।
2: आगे भी आपने ती मैसेज है आपने मेल जका है कागज जका है भी मानता
3: है जी आपा आज किया बातचीत सुनाई है हां अब इनको जब तक फायदा नहीं उठावे नहीं
2: बिल्कुल
3: ये तो कोई मतलब बारी बात
2: फिर तो भाई बात है के फिर ये दामड़ कुटिया करया फायदा
3: एक और मैसेज आयो है देखो ये नाम तो कौन लिखियो आपको
2: अच्छा
3: पण ऊपर नाम लिखड़ो है वेद मिड्डा।
2: अच्छा ये आपने वेद मिड्डा जी है अलका मिड्डा जी का सागे है
3: हाँ वेद अलका मिड्डा नाम लिखड़ो नीचे लिखियो कौन भूल गया दिखे मन लागे है एक चौपाल मारो पसंदीदा है और समय पर जी जानकारी दो बाजार भाव दो मौसम की जानकारी है कीटनाशक को चुनाव है और सागे सागे कृषि विशेषज्ञ वार्तालाप है वो आना बहुत बढ़िया लागे गीतारो गजरो आना बढ़िया लागे। सागे देखो गाँव मंडिया हूँ जगदीश ढूकिया प्रमिला ढूकिया ज्योति शिवम ढूकिया सरिता सचिन अमना तमन्ना सायना विष्णु डुकिया और आंगी दोई थी है ईवा धारणिया।
2: अच्छा रल मिल के छे छोटा मोटा जगह टबरी है बा
3: सारे एक है चौपाल पेश करण हारा रमेश्वर भाई जी ने नवीन भाई जी ने घणी घणी राम राम।
2: बिल्कुल
3: तो राम राम सा
2: आने भी मोकली सारी राम
3: ठीक है। एक है कि सारा कलाकार ने मोकली मोकली राम राम राम राम दी है गुरुवार को नाटक सुनियो पग फेरो।
2: अच्छा
3: पग फेरो आना चोखो लाग्यो सा
2: मोकलो सारा धन्यवाद सा।
3: हां तो ए सागर के लिखियो है
2: हां
3: एक है कि छोरियां जी आजकल है छोरों कम को नहीं मैं को आजकल के कदी कम को नहीं
2: कदी कम को नहीं
3: और मैं तो को एकदम आ गई है क्यों
2: बिल्कुल और छोरियां जी की है भी आजकल बनी गुणी है और बिंगो जो को श्रेय है ना वो आपने जका बड़ा बुजुर्ग है आपने जका भाई बंधु है बन ही जावे का बन आगे कर गए और बन पढ़ाने लिखाने को काम कर ला रहे है ना।
3: एक सगे कह के रामेश्वर भाई तिल की खेती में बातचीत करी नहीं ये अपने चंद्रशेखर जी बात करी थे डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ तो क्या आप बहुत बढ़िया ही थे आपने राजस्थानी में जानकारी ली वहां से तो आना बहुत बढ़िया लगी
2: चंद्रशेखर जी और भी दिन पे आपने सगा एडाट
3: हाँ विज्ञान बड़ा वैज्ञानिक है तो कृषि विज्ञान केंद्र का अच्छी बात है बताओ तो देखो यहाँ की जी तिल की खेती है अब आपने आप यहाँ सोचा नहीं एक एक तरह की करे रखा तो काम कौन चल है
2: कौन चल सा कौन
3: फोर फोर के करो कोई तिल की करो कोई की करो कोई की करो बदलोगा जब थारी जी की इनकम है नी जी की आय वह बढ़ेगी
2: है सही है, सही है, सही है।
3: और आना गीतारो गजरो भी चोखा लगा भजन चोखा लगा सारी चीज आने देखो बढ़िया लगे ये थे लिखता रहे करो गमंडिया ढुकिया परिवार
2: हाँ।
3: और सागे देखो पत्र उत्तर चौपाल वास्ते नोर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज सुथार
2: अच्छा।
3: राम राम दिए गांव बिरकाली हूँ नोर से

0: राम कुमार सुथार, दिलीप कामड़, बेगरा सियाग। एक है कि महेश चौपाल का नियमित पक्का श्रोता। हाँ
1: अच्छा, ये तो
0: हाँ
1: बहुत ही सही बात है, अच्छी बात
0: मैं
1: है,
0: तो कोई श्रोता अपना सारा पक्का ही
1: पक्का ही ऐसा,
0: है
1: पक्का ही है। अपने नेस ने जो को है ना, वो सगला श्रोताओं में क्या अपने को।
0: हाँ। एक जानकारी को मैं घणो ही फायदो उठावा, और मंगलवार ने जो चौपाल में नाटक सुनायो वहाँ बहुत ही बढ़िया लगे।
1: बिल्कुल, मोकलो सारो धनवाद सा, कार्यक्रम सुनता रहो, आगे भी थाने सुनने मिलेगा।
0: देखो गांव बांडी वाला फजिल का पंजाब सीमा से जाए,
1: अच्छा
0: ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत तर बेबी गरिमा बगड़िया।
1: हाँ,
0: एक है कि मैं चौपाल प्रोग्राम नियमित रूप से सुना, और बहुत ही बढ़िया खेती बाड़ी के बारे में जानकारी थे देव। 28 तारीख ने नाटक जिको सुनायो पग फेरो, वो आना बहुत ही बढ़िया लागो, जानकारी से भरपूर हो। अरे चंद्रशेखर जी साग जी की तिल की बाती बात करिए आपा खेती की, बेबी आना बढ़िया लगी सा।
1: बिल्कुल। आपा नाटक सुनायो पग फेरो, और बिना लेखक आप बीरू राम जी चावरिया, और आना अच्छो लगे वो आपने की है कि नारी जी की है, महिलाओं जी की है, माताओं बिना बांग ऊपर ही आधारित हो, और आना अच्छो लगे वास्ते मोकलो सारा धन्यवाद। और रही बात तिल की खेती की, तो तिल की खेती तो आपने की है कि सिरमौर मानी जाए,
0: बिल्कुल
1: तो बिल्कुल इनको
0: बिल्कुल।
1: फायदा जरूर उठासी है।
0: एक गांव जोगी वालों, और एक मैसेज आया, प्रेम सारण, मोनिका और मनीष सारण, ये श्रीगंगानगर गांव जोगी वालों है। एक है प्रोग्राम जी को चौपाल है भगवान बढ़िया लगा है, सागी जी को नाटक सुनायो वो भी बढ़िया लगो। सागा ये आ भी कह रहे हैं कि जी पशुधन की देखभाल वास्ते जी की जानकारी दो नहीं,
1: हाँ हाँ
0: बाबी आना बहुत ही चौकी लगा
1: जरूरी
0: सा।
1: है सर, पशुधन बिना तो की काम चाल ही दुनिया
0: हाँ
1: अपनो,
0: क्योंकि अब देखो गर्मी है, तो गर्मी में पशुओं को ध्यान विशेष रखना
1: ध्यान
0: चाहिए।
1: रखना चाहिए साहब। निराचारी जो की है खान पान नहीं तो की है कि लाता लड़ियों करके दूध जो है वो टाल भी
0: रमेश भाई एक
1: सके।
0: जगह में देखियो, कई तो किसान इतना जागरूक है, आप कूलर कौन लगा रखे हो,
1: हाँ
0: आपका जगह पशु धन वास्ता लगा रखे
1: लो बहुत बढ़िया, तो
0: है,
1: पुन को काम भी है
0: यहाँ
1: और
0: भी हुआ
1: जरूरी भी
0: है,
1: है सर।
0: यहाँ भी हुआ है देख लियो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: मैं कहूँ आपका पशु धन है नहीं, आपका परिवार की तरह रखे करो,
1: परिवार की त्रिया राखी जद्दी तो पड़े ऐसा,
0: जद्दी
1: टावरा इतना पालना
0: पड़े।
1: पड़े मेन
0: हाँ
1: भाई, नहीं तो पड़े को नहीं।
0: पड़े को नहीं, नहीं तो फिर अब खत्ती खत पटना के कोई गीत बार कोई सुनाशो थे।
1: हाँ बिल्कुल, था ना आज एक भजन सुना दिया, और इन्हें आपने धर्मपाल भारती जी जगह है तंदूरों कैसे बैठे
0: और
1: है।
0: भाई जी धर्मपाल जी को भजन है तो बढ़िया योसी है।
1: हाँ लो थे भी सुनो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल नवीन भाई, आप भजन सुनो।
3: वाजी धर्मपाल भारती जी को भजन हो कि तो सुनो भजन।
2: हाँ, और अब थे अपना संदेश जकाए,
3: संदेश पढ़ लिया नहीं तो देखो पूरा को नहीं होगा। दिया तो है गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब शू नियमित श्रोता सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, एक है राम राम नवीन जी, रामेश्वर भाई जी राम राम
2: राम राम सा राम राम।
3: एक है लाइव सुनने लाग रहा पत्रोत्तर कार्यक्रम, और पिछले जो प्रोग्राम सुने हो तीन की तिकड़ी जिकी है ना बड़ी अलग ही, जो रंग जमाए हो वो आने बड़ी अलग हो है। एक है कि श्रीपाल जी जगह है प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो भी आने बढ़िया लगे हो सागर जी का आया। तो देखो आपने तो कोशिश आ रहा है कि चौपाल तो चौपाल है, खुली हुआ है,
2: खुली चौपाल है, चार डोलियां डाल लिया बैठ गया सही ग्रह है ना।
3: और के तो है
2: बिल्कुल आना अच्छा लगे वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद।
3: ये दो तारीख की चौपाल में कहानी भी सुनी और प्रोग्राम एक है मैं रोज ही सुना, अच्छी की खेती की जानकारी दो, गीतारो गजरो है, ये सब आना बढ़िया लगे। आंगी माता है
2: हाँ,
3: गुड्डी देवी
2: हाँ,
3: हाँ। बहुत ही चाऊ भजन सुना।
2: बिल्कुल बिल्कुल माता जी ने घणो सारो प्रणाम, और आपने भजन जका है बे आपने बुजुर्ग जका लोग है बन पसंद है और आप सुनाओ भी हां नवीन भाई।
3: बिल्कुल, अरे एक है गर्मियों बचाओ की जानकारी देता रहे करो, गर्मियों बचाओ तो देखो अब जरूरी भी है, देखो
2: जरूरी है ऐसा नहीं तो फिर क्या है दिखते ही दिखते हैं।
3: तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद शर्मा, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन कुमार, साहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, महावीर लोहारा और फूसा राम मील,
2: अच्छा
3: ये अपन ने पत्र भेजे। एक है कि प्रोग्राम आने बहुत ही चोखो लागे सा, प्रोग्राम में खेती बाड़ी की जी की जानकारी है बा भी आना चोखी लागे। एक है सब्जी जी की है
2: हाँ, हाँ।
3: बा अब मैं किसी बीजा
2: बिल्कुल अब कुछ मांडकुल की जी की सब्जी है नहीं जी आपने नरमा जी की नाड़ीबेट क्षेत्र का माँ या फिर बिरानी क्षेत्र का माँ अपना नरमू भी जिक्र है तो बिंग सका बिया तो भिंडी की भी बीजांत करे कर देसी भिंडी की जी की बीजांत है बा भी हो सके। और इनके अलावा आपने क्या है कुछ मांडकुल की जी की कुछ एक जी की सब्जी है वे बीजांत कर सके ऐसा
3: सही है बात सा। एक है देखो बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद वर्मा, ग्राम पंचायत बठना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपन है
2: दूर हुए
3: मैसेज भेजे। एक है छत्तीसगढ़ में धान की खेती जी की है नी बा मानसून पर आधारित हुआ है,
2: अच्छा
3: अभी लोग जगह धान बोने की तैयारी करने ला रहे हैं। एक है की जल्दी पकड़ आ रही बीज और उन्नत किस्म जिके भी माने बताओ।
2: बिल्कुल एक कार्यक्रम तो सुनता रहे और
3: सुनता रहो थाने देखो मैं बता अच्छा
2: किस्म जिकी है भी अपना खेत खलियान में खेती हरा वास्ते जो को कार्यक्रम है बिंग मां भी आपा सुनाओ और टेम टेम पर आपा चौपाल में भी बताता
3: चौपाल में भी बतावा खेत खलियान में बतावा खेती हरा वास्ते में बतावा किस्म वास्ते आपा एक अलग से विशेषज्ञ बुला लेंगे
2: विशेषज्ञ जका है बे भी आता जानता रहे तो बांसु भी थाने
3: फरमाइश पूरी कर सा। राम राम दी अपने चौपाल पत्र उत्तर पेश करने आना है
2: और कण दी है
3: गांव अरायण से बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत और विक्रम जयपाल। एक शुक्रवार गीतारो गजरो नाटक पग फेरो शिक्षा प्रद हो और भाव लेवणियो
2: अच्छा
3: कलाकार ने अच्छा भाग लेवणिया कलाकार ने बधाई दी है
2: पूर्ति होगी हो वे कार्यक्रम सुनता हो सी
3: सुनता है अपना जिगा भी जिगा है कलाकार
2: सुने है।
3: और एक है नींबू किन्नू चार पांच पौधा चार चार साल रा फल कोनी लागे उपाय बताओ।
2: बिल्कुल उपाय वही है कि जड़ा है नहीं बाने थोड़ी सी खोद लियो और बाकी जड़ा में छोटा छोटा जाड़ा बन रहे तो जाड़ा जगाने भी निकालना जरूरी है और सागर सागर नवीन भाई की खाद जो है बाड़को फुड़को देना जरूरी है। और क्या जब आपने नींबू पर फूल आना शुरू है नहीं तो बी टाइम की है हल्की फुल्की जो सिंचाई है वो थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए जी जी अपना नींबू जगह हो जाए नी नींबूली जिड़ी जिड़ा एक बार जकी है
3: लोग फल सान लगे नहीं लोग पानी बढ़ा दे
2: नहीं पानी थोड़ा सा कम करना पड़े और इनके अलावा की है कि आप टेम के हिसाब से भी देखना पड़ेगा अगर टेम आवे जब लगे भी है अगर नाम भी लगे नहीं थाने जानकारी जी की है कोई विशेषज्ञ से जरूर
3: हाँ मिट्टी की भी जांच कर लो क्योंकि कई बार क्या कोई एक जी को पोषक तत्व तो है नहीं वो
2: हाँ,
3: कम
2: हाँ,
3: हुआ है
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: बिंगी वजह के

0: फाड़ है जी के लागे कोनी।
1: सूक्ष्म पोषक तत्व जो पहले भी देना जरूरी है,
0: बाकी और कोई बड़ो कारण कोनी वो नहीं लागना। हाँ, हाथ मिट्टी की जांच कराओ तो बिल्कुल पतो लाग जैसी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है। अब देखो आगे कार्यक्रम किसान वाणी पेश करनिया ना, किसान वाणी कोनी आपने देखो चौपाल
1: है, लेकिन किसान की
0: बात किसान की है। देखो है नवीन जी ने घनी घनी राम राम दिए थाने को दी सा, देखो मैंने मैंने दिए
1: उदीक राक्षस सा अगले साल लेकिन आपने प्रोग्राम में जरूर दिया ला।
0: एक थारो कार्यक्रम में जदी सुना नहीं मारो मन घणो राज्य हो जावे।
1: आधी पड़ती मन्ने दे दियो नवीन जी,
0: मैं कौन दू मेरे लिए जानकारी थाना कौन दू मेरे लिए जी रामा शर्मा मेरी मेरी अलग है।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है तो रुसो ना, कोई बात नहीं फिर रख लियो।
0: एक टाइम टाइम से जी थे जानकारी दो नहीं, अब आवन बहुत ही बढ़िया लगा। गीता रो गजरो बढ़िया लगा है, पुराना लोग गीत जगह सुना भी बहुत बढ़िया लगा है, कृषि विशेषज्ञ जिका है बाकी जानकारियां ने बढ़िया लगा है, नए नाटक जिको थे बार सुनायो वो भी आने बहुत दाय आयो है, कलाकार ने भी मोकली मोकली राम राम दी है। तो पग फेरो जी को पग फेरा वास्ता देखो सारे ही
1: बिल्कुल नाटक फूट रो है सुन है भी, तो नाटक सारा भी अच्छा ही है लेकिन अच्छो लगे वास्ते सारो मोकलो सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सुनता रहो सा।
0: अब देखो नाटक हो नहीं रमेश्वर भाई।
1: हाँ, हाँ।
0: नाटक को उद्देश्य फिर क्या हुआ है?
1: हाँ।
0: उद्देश्य हुआ है कोई एक जी को मैसेज है।
1: हाँ, हाँ, संदेश, जो
0: संदेश जी को वो पहुंचानो। अब एमें देखो सब जी का आप बात समझ गया कि छोरियां जी की छोरों कम कोनी सा
1: और छोरियां जी की है बे मान सम्मान के तौर पर भी देखा तो आपने बड़ा बड़ा पदा पर देखो तो हवाई जहाज का है छोरियां उड़ान ला रही है,
0: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपने राष्ट्रपति है, महिला है भी है?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो सोच बदलने की जरूरत है।
1: हाँ।
0: रामेश्वर भाई एक है कि जिगतेल पर खेती से बातचीत करी थी डॉक्टर साहब भाभी मैंने बढ़िया लगी। अब ये है कौन वो नाम तो पढ़े कुनी आप नाम नीचे नीचे लिख है। ये है संदीप सिंह सोनगरा फंवारा चौक सिरसला चुरू सु।
1: अच्छा अच्छा मोकलो सारा धन्यवाद रंग स्वागत है सर।
0: एक सागे लिखे दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति शिवांश वर्मा ये है गांव पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से।
1: अच्छा दूर बैठे
0: है। हाँ दूर बैठे है। देखो दूर भी अपन याद करे ही
1: याद करे सर याद करे।
0: चौपाल मारो पसंदीदा कार्यक्रम है, खेती किसानी की बात माने बहुत बढ़िया लागे, लोकगीत भी चोखा लागे, अर्थे जी की जानकारी दियो बे लाभदायक हो ऐसा है?
1: बिल्कुल और आपा आपनो उद्देश्य यही है नवीन भाई का आपा जी की जानकारी दिया बिंगा भाई लोग जो कहे बे भरपूर फायदा उठाओ।
0: वासा देखो अलिका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा को मैसेज आयो है कि चौपाल प्रोग्राम आने बहुत ही पसंद आवे और सुरतगढ़ का जिका सारा कार्यक्रम है।
1: हां हां
0: बे आना चोखा लागे
1: मोकलो सारो धन्यवाद सा।
0: सतीश अनेजा विमला अनेजा चंडीगढ़ सिटी से मैसेज करे है।
1: अच्छा
0: ठंडी ठंडी जगह अभी तो बैठे
1: ठंडी जगह है और दूर बैठे और आपने नियमित श्रोता भी है अनेजा साहब।
0: हाँ अनेजा साहब तो बर्फ का कंदर भी घूमते रह गए कई बार
1: थोड़ी सी ठंडी ठंडी थाने भी आती होती है हवा
0: आ रही है देखो माइक में करा दिया।
1: हाँ आ रही है
0: चौपाल प्रोग्राम से बंधे रहते हैं या क्या ठीक है और किसानों के लिए कारगर सिद्ध हुआ बाजार भाव की जानकारी जी कितने आने बढ़िया लगा है गीता और गजरो आने बढ़िया लगा है अरे रागनिया जी की कई बार आप सुनावा।
1: हाँ हाँ।
0: बे भी आना बढ़िया लगे पेश करता की मेहनत ना है जी है रोचक बनाने वास्ते धन्यवाद दिए सबने बधाई को पत्र बताई
1: भी मोकलो सारो धन्यवाद सर।
0: धर्मेंद्र चिंपा कपिल चिंपा ईशान चिंपा और पूजा पड़ियार भोपालगढ़ राजस्थान से कहे है कि कार्यक्रम चौपाल बहुत ही चोखो लगे रोज सुना है और जी की सारी जानकारी है बयान बढ़िया लगे जागरूकता करण हरी जानकारी है सारी की सारी कृषि संबंध जी की भी बात बताओ बे ना सारी बढ़िया लगे सा।
1: बिल्कुल बिल्कुल अंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद आगे भी आगे मैसेज की संदेश की उड़ीक रहे।
0: अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक ये आपा ने कहा कि मैं चौपाल को जी को पत्रों तरह बरोबर सुना।
1: अच्छा
0: ठीक है और पेश करनी है भैया ने राम राम दी है खेती बाड़ी के बारे में जी की मुलाकात जी की थे करी बे सवाल का जवाब जी का
1: हाँ
0: चोखा लगे
1: बिल्कुल आंगो भी मोकलो सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सुनता रहो सवाल जवाब तो थे जगह सवाल पूछोगा जी की प्रतिक्रिया लिखोगा बिको जवाब तो पक्को ऐसा था ना ध्यान
0: आज नहीं तो काल दे देशा। अब देखो पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन है एक है बिजाई और बीज है जी को बीज कौन सो बढ़िया है बुआई को समय कौन सो बढ़िया है जैविक खाद को उपयोग किया करा मिट्टी की जांच किया करा वहाँ फसल में जिसका रोग लगे भंग इलाज किया करा देखो सारी बात थी पूछ रखी
1: नवीन भाई थे यहां करो जोड़ा गमो वो आपने कागज काट लियो और भी पर नोट कर लियो अगले के प्रोग्राम में आप बता
0: सके हेलो लिख ली सा अंग्रेजी में और लिखी है मैं तो सीख ला रहा हूं आजकल।
1: हां बिल्कुल बिल्कुल
0: तो सारा ही पत्र पढ़ो का एक गीत
1: हां गीत सुना बिल्कुल सुनो सा
0: सुनाओ

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
3: बिल्कुल सुनियो गीत नवीन भाई,
4: फूट रो गीत सा। देखो मैसेज और आ गया मेरे को, पढ़ दूंगे। ए देखो एक मैसेज करके डिलीट कर दियो, पण मन दिखन ला रहे फिर भी पढ़ दूंगे।
3: पढ़ दो पढ़ दो।
4: एक चौपाल कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताओ खेती बाड़ी के बारे में, माना बहुत बढ़िया लगा। कार्यक्रम जी को है अनूपगढ़ से भगवती देवी ज्ञानचंद।
3: अच्छा
4: लिखियो तो अपन डिलीट कर दी बाद में, लेकिन अपना जिका नरेश भाई
3: रूस तो कौन के है के?
4: थोड़ा रूस चेक ये अपना नरेश भाई के जिका चौपाल संबंधित कोनी
3: हो। हां भाई कंट्रोल रूम में बैठे,
4: कंट्रोल रूम में बैठे डिलीट कर रखा है तो कई लोग रूस जे फिर
3: रूस ध्यान दियो नरेश भाई।
4: गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा, एक नवीन जी, रमेश्वर भाई ने मारी तरफ घनी ने घनी राम राम।
3: बिल्कुल आने भी मोकली सारी रामा श्यामा, पर आज नवीन भाई भी सागे बैठे है।
4: देख लो मन लगा लार जी बार थाना थाना दी नहीं।
3: भूल गया।
4: चौपाल लेकर रोजाना सुना घनी फूटरी लागे सा, गीत भजन खेती जानकारी, काल ते जी को नाटक सुनायो वो भी आना बहुत ही बढ़िया लागो, जबर लागो सा। पशु खातर जी ज्वार की बिजाई बताओ थे, बताओ को नहीं के मैं करनी चाहवा ज्वार की बिजाई पशुओं खातर, उन्नत बीज और समय जरूर बताया सा, तो बताया था ना?
3: बिल्कुल
4: मांड लियो सा। ठीक है तो मेरे को तो मैसेज देखो इतना ही आड़ा है।
3: बिल्कुल आपने तो मेल भी पुगेड़ा है नवीन भाई, वो लखवाली हेड शू मास्टर भंवरलाल, कृष्णा सौरव, विशाल राजबाला, नव्या लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संग्रिया शू मुकनाराम, महावीर लोरा। ये लिखा है कि चौपाल मारा है हिवड़ा शू जुड़ेड़ो है, चौपाल गीत भजन इनमें जितना भी थे सुनाओ, नाटक है, मौसम की जी जानकारी है, बाजार भाव है, बे मन है बढ़िया लागे सा। तो आंगो भी आप मोकड़ सारो धन्यवाद देवा सा,

0: और अगे भी ये कार्यक्रम सुनता रहे। अगलो जो अपने ते मेल पुगे है वो है लिखने वाला है अपने ते रावसर सिंह, रविशंकर जोशी, माया जोशी, सुमित जोशी और राधिका जोशी, और ये लिखा कि चौपाल कार्यक्रम का सगड़ा साथिया ने मारा कहानी सुन घनी न घनी रामा श्यामा।
1: रामा श्यामा सा सब नहीं।
0: और ये आगे लिखा कि चौपाल कार्यक्रम माने घणो चोखो लागे और माने ई कार्यक्रम की हमेशा उड़ीक रहे सा। मैं चौपाल लगो लग सुन ला रहा हाँ, थे बड़ी चौकी चौकी बातें बताओ, थे जानकारियां बड़ी रोचक दो और थे मारो मेल शामिल करो सा, माने घणो चोखो लागे।
1: माने भी देखो उड़ीक रहे चौपाल की तो है।
0: हाँ थारा थारा संदेश संगे सगे
1: हाँ
0: सगे। और अगलो मेल आपने ते पुग गया कनवाणी रावसर सिंह, लिखने वाला है कृष्ण श्याग, और ये लिखा है कि कार्यक्रम जो माने अच्छो लगे सा।
1: धन्यवाद सा।
0: अब वो मेल पुग गयो है नवीन भाई आपने ती, लिखने वाला है गांव बहलोल नगर सिंह, और लिख्यो है पटवारी राम बेनीवाल, संदीप और राधा देवी। ये लिखा है कि कार्यक्रम जो है वो माना अच्छो लगा और थे बिजाई के बारे में जिसकी जानकारी दियो ना बेमान बड़ी दाया आवे। तो बिल्कुल अन आप आई बात के श्या बिजाई जकी है, अब तुरता फुर्त कर लियो, मौसम जो है वो थोड़ा सा खुल्लेड़ो है नवीन
1: खुले
0: भाई,
1: अभी तो
0: है
1: मौसम अभी
0: ना।
1: अभी कर
0: और
1: लेनी चाहिए।
0: हाँ छांटा
1: हाँ
0: छिड़काव कोई पतो को लगे, मौसम कद
1: हाँ
0: पलटी खा जाए, और वो एक दो ही है नी आपने
1: केक
0: मनसो का को केक रहे है
1: हाँ
0: कह ब्याह बिगाड़ा दो जना,
1: हाँ
0: कह ब्याह बिगाड़ा दो जना कह मुंजी कह मे,
1: अच्छा
0: ब्याह बिगाड़ा दो जना कह मुंजी कह मे, अरे मुंजी दिलो खर्चे खर्चे को नी मे धड़ा धड़ दे। पतो को लगे सारी चीज को।
1: सही बात
0: हाँ
1: है।
0: अगला मेल की बात करा, गांव बनवंता हनुमंता फाजिल का पंजाब शिव, विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, अंगा माता जी, विद्या देवी। और ये लिखा है कि माने कार्यक्रम जो का वो अच्छा लगे और नाटक जीता भी थे सुनाओ वे भी अच्छा लगे, और भारती जी को जो को भजन सुनायो वो भी माने पसंद आयो
1: आ
0: सा।
1: देखो मतलब तुरंत फुरत आ गई है। अरे
0: हाँ अपा के है सामने बैठे सा आतो आती। ओ मेल पुग्यू है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुखचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, ए भी का कार्यक्रम जो है मैंने अच्छा लगा सा। और वो मेल पुग्यू है अपना नितवंद्या श्रोता है साधुल शहर से, राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड।
1: वो तो बहुत ही बड़ो मेला पड़ चुकिया थे।
0: पढ़ देंगे सा देखो साहब भी थे हूँ लपेटो मार दे सू
1: पढ़ो
0: अभी।
1: पढ़ो पढ़ो।
0: ये लिखा गया पत्र उत्तर चौपाल पेश करने वाला ने रमेश चावरिया जी और अपना नवीन सिसोदिया जी बने गणिन गणी रामा श्यामा,
1: राम
0: और
1: राम
0: 27 तारीख ने तक पत्र उत्तर जो है वो 3 आवाज़ा में सुनो बड़ो अच्छो लाग्यो, और इंगमा कह मारो शिकायती मेल जो कहे वो शामिल हो, तो ये वास्ते नवीन जी ने कह घना लखदात।
1: मैं तो के कहूँ शिकायती मेल तो मैंने ज्यादा बढ़िया लगे।
0: रागा लिखे गए 28 तारीख ने रामेश्वर भाई जो को डॉक्टर चंद्रशेखर जी शेखर जी से बातचीत करी ना वह बड़ी पसंद आई, और आगे लिखे है कि नाटक जो को है वो भी बढ़िया हो, और नाटक में संदेश जका भी थे दो वे भी अच्छा है, संस्कार के रूप में जिसकी घर की लड़कियां है और बन आपा ने प्रोटनी चाहिए है, बन आगे बढ़ाने को काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और आगा लिखे है कि 29 तारीख ने 29 मई ने कह गीतारू गजरो जो को कार्यक्रम हो वो आने पसंद आयो, और भी मां गीत जका है बे भी शामिल होया और संदेश जका है मेल जका है बे भी थे शामिल करिया सा, और 30 मई ने प्राकृतिक खेती के बारे में जिसकी जानकारी दी वह भी आने पसंद आई सा।
1: वाह सा।
0: तो आंगो भी मोकलो सारा धन्यवाद देवा सा, और आगे भी ये आप उड़ीक रखा कई मेल आपने ती जरूर मांडा। 82 RB राजनगर से चेतनराम सारसवा, नरोराम सारसवा, प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता सारसवा, नानू देवी सारसवा, सोन जांगिड़, शिव प्रकाश खाती, धनराज भांबू, द्वारका प्रसाद, सुथार, सुनील डाल, नरसिंह सिंह और प्रवीण सरावगी, ये सगड़ा रल मिल के मेल मांडवे लिखे कि मने चौपाल कार्यक्रम बड़ो अच्छो लगे और आकाशवाणी का मे रोजाना सुना माने बड़ो पसंद आवे, सुन के जी सुर हो जे कह।
1: आहा, और मारो जिस हो गए इसो मैसेज पड़ गए।
0: हाँ आगा लिखे आकाशवाणी का 90 वर्ष पूरा हो गया और प्रोग्राम सूरतगढ़ में राखी हुई वास्ते श्रोताओं ने घनी सारी मुगल सारी बधाई, और आगा लिखे कह मन्ने थे कह सिग्रीम तो कौन दियो सा।
1: आ शिकायत तो देखो रहसी है
0: हाँ तो अगली बार
1: पूरी
0: नवीन,
1: कर
0: हाँ नवीन भाई
1: और
0: ध्यान
1: क्या। तो
0: रखियो ध्यान रखियो।
1: हो
0: और आगा लिखे कि रामेश्वर भाई नवीन जी ने कहा मारा कहानी सुन गणिन गणि रामा श्यामा, अरे कह थारी बोली जी की बड़ी मीठी लग गया सा, चौपाल कार्यक्रम में 2 आवाज़ पेश करो बड़ो आनंद हुआ, और चौपाल प्रोग्राम में लाइव सुन ला रहा हाँ मोकलो सारा धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: बिल्कुल
1: सा।
0: आम बात लिखी है कि बोली जी की बोली तो सगड़ा मीठी रखनी चाहिए नवीन भाई, है
1: बोली
0: ना
1: मिट्टी नहीं रहे तो जोड़ो जे।
0: जोड़ हो जाए ऐसा बोल केक रहे कह अपने सियाणा मीने केक रहे कह
1: हाँ
0: जितो मीठो बोला गो बितो ही अपन अच्छो है, अपने सामने कौन है बड़ो है बुजुर्ग है तो भी हिसाब से अपन बातचीत जी की हवा करनी
1: मैं
0: चाहिए
1: तो
0: है।
1: एक बात और बताऊं रामेश्वर
0: हाँ
1: भाई,
0: हाँ
1: अगर थारे साथ कोई कड़वो भी बोलतो है नहीं,
0: हाँ हाँ
1: मैं तो कुबिंगा सा कभी मिठो ही बोलो थे।
0: बोलनो चाहिए और मीठी बोली जिकी है बाकी है क्या ऊपर चढ़ा दे, और कड़वी बोली जिकी है बा हेटा भी नाक दे नवीन भाई।
1: जिकी थारी बोली है नहीं,
0: हाँ
1: बात
0: हाँ
1: थारा पूरा व्यक्तित्व के बारे में अगला ने बता देवे।

0: कथे किस्सा को,
1: हाँ
0: तो
1: सही सही
0: हमेशा मीठी मीठी बात करया
1: मीठी
0: करो।
1: बात बोलो, और भाषा जकी है अब आपकी बढ़िया बोलोगा तो जग में सराहो।
0: आपकी बोली से कोई को दिल ना दुखाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो ढाणी लाल खां शू नोहर शू जावेद खां अरमान खां इमरान खां सीमा बानो और विनोद खां और मुख राम आरिफ खां ईयान खान अरशद खां अरमान खां भी लिखे, एक एक माने नाटक जो है वो तो सुनाओ बढ़िया लगे, और गीत भजन भी जितना भी सुनाओ वे भी माने अच्छा लगे। ओ आपने ते मेल पुगे अमरपुरा जालू खाट सुन जगदीश चंद्र प्रजापति बिमला प्रजापति मोनू प्रजापति राजेंद्र प्रजापति आ लिखिए के सह सुपेली तो रामेश्वर भाई ने और नवीन भाई ने गणी गणी रामा श्यामा और एक तारीख ने कह चौपाल में सुनियो राजन की आवाज़ का वहाँ तो बड़ो अच्छो लाग्यो, और इनमें जितनी भी थे जानकारी दी वे माने बड़ी पसंद आई।
0: वैसा राजन भाई भी बढ़िया प्रोग्राम दिया तो आपने।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और राइसनगर से सोनलाल जांगिड़ मंजू जांगिड़ संजय रवि शिवप्रकाश सुनील जांगिड़ धनराज भांबू प्रवीण सरावगी द्वारका प्रसाद साहब राम स्वामी आम भी कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है, लिखिया के रामेश्वर भाई और नवीन भाई ने मारकानी छू घणी घणी रामा श्यामा दो आवाजा चौपाल जो है वो थे पेश करो बड़ो दुआ आवे, और नवीन सिसोदिया जी थारी जी की जोड़ी बड़ी शानदार है और आज का जोड़ी जी की है वाह बड़ी जबरी लाग रही है सारे।
0: वासा जोड़ी बनाए रखे भगवान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जोड़ी बनाए रखे और थारो नेह स्नेह प्यार मोहम्मद कोड लाड जक है बे मारते यही पूता रहे जांगिड़ साहब। आगा लिखी है कि 100 बातों की एक बात है कि आ बताओ कि नौ तपो पूरा हो या को नहीं।
0: आज पूरा हो गयो।
1: आज पूरा हो गया सर, पर नौ तपा में तो की है कि थोड़ा सो खिंडल भी चढ़ो गयो है ना बेचारा छांटा छिड़को जो है वो थोड़ा सो का गयो, तो बिंग वजह से की है कि नौ तपो जो है वो पूरा लगभग कोनी हो नहीं, फिर भी अपन ने ध्यान रखना
0: मीटर
1: जरूरी है
0: खींच
1: सर।
0: दो, टाइम हो रहा है फटाफट।
1: और चलता चलता अभी बता दें कि मुकलावा बॉर्डर एरिया से अपने तीन मेल भेजे मदन बरोड़ मंजू बाला प्रीति बरोड़ दिव्या बरोड़ हितेश बरोड़ कामना बरोड़ लुभानी बरोड़ आरती बरोड़ अजय पेंटर मुकेश पेंटर राजू पेंटर अंगा माऊ बापू हनुमान बरोड़ इमृति देवी ए भी का कार्यक्रम जो वो आना अच्छा लगे। और गांव भोमपुरा से सुनील डाल पुष्पा डाल विकास डाल रामेश्वर डाल कंचन डाल आ भी कार्यक्रम की बधाई लिखी ऐसा तो अंगो भी मोकलो सारा धन्यवाद। और गांव गंधेली से लिखे अपने तीन पालाराम स्याग रमेश संदीप और अंगा मम्मी पापा बिमला स्याग मोनिका भावना पोतो अंगो राघव है ए भी का कार्यक्रम जो मैंने अच्छो लगे ऐसा। पर एक चलता चलता अपना मेल और पढ़ते सा मलकी सर स्टेशन लूनकर सर बीकानेर से केवल शर्मा और लिखे कि एक का कार्यक्रम जो वो मैं रोजाना सुना सा।
0: रामेश्वर भाई जिया जिया घड़ी चला नहीं, थारी जबान एकदम तावड़ी तावड़ी चला, देखो अब
1: जरूरी है
0: चलो।
1: सा जरूरी है सा। पर आज को कार्यक्रम तो नवीन भाई इतो ही है क्यों
0: इतो
1: ना भाई
0: ही
1: लोगों लेवा सीख और चला
0: चलो सा,
1: राम राम
0: राम
1: सा
0: राम सा, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ग्रामीण श्रोता अभी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे रमेश चावरिया और नवीन सिसोदिया। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओं लीजिए सुनिए, जोनी मेरा नाम फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और उषा खन्ना की।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रही हैं। 8 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है बॉबी। जी हाँ श्रोताओ, फिल्म बॉबी का निर्देशन महान शोमैन राज कपूर ने किया था। इस फिल्म ने ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को रातों रात स्टार बना दिया। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के गीतों ने फिल्म को अमर बना दिया। यह युवा प्रेम कहानी पर आधारित उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। नमस्कार श्रोताओं, राजेंद्र शर्मा की ओर से आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब प्रेम की मासूमियत पर्दे पर उतरती थी, जब गीत केवल सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बस जाते थे। वर्ष 1973 में आई फिल्म बॉबी ने भारतीय सिनेमा में युवा प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी। एक अमीर घर के लड़के राज और एक साधारण परिवार की लड़की बॉबी की प्रेम कहानी ने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने 5 दशक पहले लगते थे। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को इस गीत के साथ।

0: वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। साथियों, किसी से पहली बार प्यार हो जाए तो शब्द अपने आप कविता बन जाते हैं, दिल की धड़कनें गुनगुनाने लगती हैं और इंसान कह उठता है कि भले ही मैं शायर नहीं, लेकिन किसी की मुस्कान ने मुझे शायरी सिखा दी। इसी मासूम एहसास को बहुत खूबसूरती से बयान करता है हमारा अगला गीत, जिसमें दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कहती हूँ

दोस्तों, प्यार की शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं, नजरों से होती है। बहुत कुछ कहना होता है लेकिन होंठ खामोश रहते हैं, और जब दिल

बोलना चाहता है तो बस यही कहता है जो अभी आपने गीत में सुना, मुझे कुछ कहना है। और अब कहानी आगे बढ़ चुकी है, दोनों दिल एक दूसरे के ओर करीब आ चुके हैं। प्यार में शरारत भी है, सपने भी हैं और भविष्य की मीठी कल्पनाएं भी। तो आइए सुनते हैं फिल्म का सबसे लोकप्रिय और सदाबहार ये गीत।

ये गीत एक गाना नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का एक यादगार अध्याय है। दशकों बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। उस दौर के युवाओं की कल्पनाएं, उनकी शरारतें और उनकी मासूम भावनाएं इस गीत में साफ दिखाई देती हैं। साथियों, अभी तक आपने जो गीत सुने वो आनंद बख्शी ने लिखे थे और आवाजें थी लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे ये लिखा है विट्ठल भाई पटेल ने, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। और बात करें इस गीत की तो प्यार के सफर में केवल रोमांस ही नहीं होता श्रोताओं, कभी कभी छोटी छोटी नोक झोंक और मीठी तकरार भी रिश्तों को और खूबसूरत बना देती है। तो पेश है एक चुलबुला और बेहद लोकप्रिय गीत। ये गीत ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया है, जिसमें वे एक ग्रामीण नृत्य का आनंद ले रहे हैं।

तो इस गीत की मस्ती और चंचलता आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। शादी ब्याह, संगीत समारोह और पारिवारिक कार्यक्रमों में ये गीत आज भी पूरे उत्साह के साथ बजाया जाता है। अब हम पहुंच रहे हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। श्रोताओं, प्रेम केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि दिलों का ऐसा रिश्ता होता है जो धन दौलत, ऊंच नीच और समाज की दीवारों से कहीं ऊपर होता है। फिल्म बॉबी का यही संदेश उसके अंतिम गीत में बड़ी खूबसूरती से दिखाई देता है।

साथियों, फिल्म बॉबी केवल एक सुपरहिट फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक अध्याय थी जिसने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। इसकी प्रेम कहानी, संगीत संवाद और कलाकारों की अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है। इसी के साथ हमारा ये संगीत में सफर यहीं समाप्त होता है। आप सभी ने प्रोग्राम सुना, आपका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि और संगीत के इन मधुर सुरों के साथ मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आगे दीजिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी बॉबी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स में रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गद्दे ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर प्रज्ञानानंदा ने मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को और महिला टीम ने सिंगापुर को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने आज चीन के वेंग होंगयांग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पोहान को 21-14, 21-14 से मात दी। एचएस प्रणय को आयरलैंड के नहत गुएन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशियाई जोड़ी कांग काई जिंग और आरोन ताई के खिलाफ पहले ही सेट में कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-15, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर ओपन जीतने के बाद भारतीय प्रशंसकों को सात्विक चिराग से उम्मीदें थी, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अब सबकी निगाहें पीवी सिंधु पर होगी, जहां वो वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कल मुकाबला करती नजर आएंगी। और अब रुख कर लेते हैं शतरंज की ओर। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहले भारतीय चैंपियन बनने की अपनी दावेदारी को मजबूत किया।

0: प्रज्ञानंदा इस वर्ष क्लासिकल बाजी में कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलीट डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में उन्होंने पहले भी कार्लसन को क्लासिकल बाजी में हराया था। इस जीत से 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा के 12 अंक हो गए हैं और वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इस हार से कार्लसन की 8वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अब केवल 2 राउंड रह गए हैं और ऐसे में मौजूदा चैंपियन कार्लसन के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा। कार्लसन का यह अभियान उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें उन्हें 4 बार क्लासिकल बाजी में हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा 9वें दौर में काले मोहरों से भारत के ही गुकेश से खेलेंगे। इस बीच अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आर्मागेडन टाई ब्रेक में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया, जिससे उनके अंक 14 हो गए हैं। फ्रांस के फिरोजा ने क्लासिकल मुकाबले में गुकेश को हराकर 13 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश की खिताब जीतने की उम्मीदें 8वें दौर में फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा से एक और करारी हार के बाद खत्म हो गयी। वे 8 अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर आ गए हैं। 2024 में विश्व चैंपियन बनने के बाद गुकेश का खराब प्रदर्शन जारी है। इस टूर्नामेंट में गुकेश की क्लासिकल बाजी में ये तीसरी हार थी। इससे उनकी इस साल के आखिर में उज्बेकिस्तान के चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप के अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी को भी झटका लगा है। उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबायोवा ने दिव्या देशमुख को क्लासिकल बाजी में हराकर खिताब की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन की झू जिनर ने भी क्लासिकल में जीत हासिल की। उन्होंने मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेंजुन को हराकर 10 अंक के साथ दिव्या की बराबरी कर ली है। मौजूदा चैंपियन अन्ना मुजिचुक और कोनेरू हम्पी ने अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ किया। इसके बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहने से हम्पी को बोनस अंक मिल गया, क्योंकि वे काले मोहरों से खेल रही थी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: पर अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला अंडर 18 एशिया कप हॉकी के पुल ए के अंतिम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराया। भारत प्रतियोगिता में पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है।
2: भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। भारत के कम 10 खिलाड़ियों ने गोल किए, जिनमें नौशीन नाज सबसे आगे रहीं। उन्होंने 8वें, 13वें, 17वें, 18वें, 40वें, 92वें, 98वें मिनट में गोल दागकर कुल 7 गोल किए। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही गीताश्री नामी ने 5 गोल किए, जबकि कप्तान स्वीटी कुजुर ने 4 गोल का योगदान दिया। प्रियंका मिज ने 22वें, 37वें, 53वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक बनाई। दिया 27वें, नैन्सी सरोहा 36वें, श्रुति कुमारी 40वें, पुष्पा मांझी 47वें, रश्मीन कौर 47वें और संदीपा कुमारी ने 91 मिनट में गोल करके अपना अहम योगदान दिया। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान स्वीटी ने दूसरे ही मिनट में पहला गोल दागा। नौशीन ने 8वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद गीताश्री और नौशीन ने 13वें मिनट में एक एक गोल करके भारत की पकड़ मजबूत कर दी। भारतीय टीम ने इसके बाद भी गोल करना जारी रखा और अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की। पूल ए में भारत ने मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर को हराकर 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूल ए मैच के मुकाबले में आज भारत ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराया। भारत ने कजाकिस्तान, कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत के साथ अपने पूल मैच खत्म किए, जबकि मेजबान जापान से उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे टीम को 4 मैच में 9 अंक मिले। भारत शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। रुख कर लेते हैं प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 और 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता आर्यना सबालेंका आज क्वार्टर फाइनल में डायना साइडर के खिलाफ 3-6, 7-5, 6-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अलेक्जेंडर ने कल राफेल जोडर को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में ज्वेरेव का मुकाबला मेंसिक से होगा। आइए जानते हैं क्वार्टर फाइनल कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
3: पिछले साल फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव को कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर पहले सेट में 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने कड़ी

0: टक्कर दी। जरेव ने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 2 घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में और इस सीजन में क्ले कोर्ट पर 19 जीत के साथ सबसे आगे रहने के बावजूद 19 वर्षीय स्पेनिश ने पहले सेट में सर्व तोड़कर 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन जरेव ने अगले 6 में से 5 गेम जीतकर मैच को टाई ब्रेक तक पहुंचा दिया। इसके बाद जरेव तेजी से 3-3 की बराबरी पर पहुंचे और फिर लगातार 4 पॉइंट्स जीतकर सेट अपने नाम कर लिया। वहां से जरेव पूरी तरह हावी हो गए। अपनी पहली सर्व पर 71% पॉइंट्स जीतकर और जोरदार फोरहैंड लगाते हुए उन्होंने दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी से लगातार 7 गेम जीते और 2 सेट की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस साल जरेव ने यहां 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 सेट गवाया है और यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो जरेव पहले ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने के प्रबल दावेदार हैं। उधर भारत के एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन से 3-6, 4-6 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैंट।
1: एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह 20 और 21 जून को चीन के सांग्यू में भारत की 29 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम 6 रिले स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। एशियाई रिले चैंपियनशिप का तीसरा सत्र चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होने वाली एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले तथा महिलाओं की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय टीम मिक्स्ड 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेगी। भारतीय टीम में पुरुषों के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष, रिंस जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बरात श्रीधर हिस्सा लेंगे। वहीं 4x100 मीटर और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अनिमेश कुजूर, गुरिंदर वीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, राहुल कुमार, गणेश कुमार, सेंथिल कुमार, तमिल राजु प्रतिस्पर्धा करेंगे। जबकि महिलाओं के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में रशदीप कौर, पुअम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजय कुमारी जी के, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुबह वी, गौरी नंदना चुनौती पेश करेंगी। और 4x100 मीटर मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, अभिनया राजराजन दमखम दिखाएंगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की युवा पीढ़ी से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, आज देश की युवा शक्ति से साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
3: मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
1: डॉक्टर मांडविया ने साइकिलिंग को पर्यावरण संरक्षण का सबसे टिकाऊ माध्यम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जिक्र किया।
3: जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
1: और अब बात क्रिकेट की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम महिला टी20 विश्व कप में अपनी

0: में 11 को लेकर काफी स्पष्ट हैं और वे इससे पहले दो अभ्यास मैच का उपयोग कुछ और संयोजन आजमाने तथा राधा यादव और भारती फुलमाली जैसे खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए करेंगी। भारत महिला T20 विश्व कप पहला खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद से इंग्लैंड पहुंचा है, लेकिन वे मेजबान इंग्लैंड से 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2-1 से हार गया, जिससे ICC के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारियों को झटका लगा। स्मृति मानधना ने तीसरी T20 के बाद कहा कि इंग्लैंड में सीरीज खेलना जहां हमें विश्व कप खेलना है तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। विश्व कप में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम होगी।
1: Coming early and playing a series in England, we're going to play a World Cup definitely. In terms of the preparations, definitely extremely good to do that. But yeah, again, taking back, definitely I think me and Shefali both have a huge role to play going forward. And we'll take it in our stride again with our bowling. Again, we'll go back to the drawing board, see which options can be better. We did that before this series. Maybe we can go back again. And now I think we know that these conditions, what balls to be bowled. I think those 2-3 things, I mean, I'm sure that it's going to help a lot of our players.
0: भारत आगामी विश्व कप में अपना पहला मैच 14 जून को बर्मिंघम में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
3: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 800

0: 30 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी।

0: खरीदने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का

0: संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal

0: हाईवे फ्रॉम रामेश्वर टू पारादीप इन ओडिशा।
1: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जिसका फेज वन आज अप्रूव हुआ है।
2: इन ओडिशा द फेज वन ऑफ द कोस्टल हाईवे वॉज अप्रूव टूडे। इट विल एक्सटेंड फ्रॉम रामेश्वर थ्रू कोणार्क अप टू पारादीप, कवरिंग द स्ट्रेच फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ ओडिशा टू इट्स सेंट्रल रीजन रीचिंग पारादीप। एडिशनली अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन बिहार, दैट इज द फोर लेनिंग ऑफ द रोड बिटवीन खगड़िया एंड पूर्णिया।
1: खगड़िया से पूर्णिया के बीच में फोर लेनिंग।
0: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मेहती हसन।

मेहदी हसन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। चर्चा का विषय ये कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Cero.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जे पी एस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
4: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जब मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मानसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
2: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट

0: जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको मैं शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे बहुत फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेढ़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रन ऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि
1: जी
0: नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार तो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घ अवधि औसत का, इसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण

0: जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर ये मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज़्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं। उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पर बांध बने हुए हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है। अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही।
1: जी
2: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उस ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहाँ हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के, या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात की, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी।

0: किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खास कर
1: देवास जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं। और
1: जी
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारे सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है?
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी अल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले है, जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एल नीनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में

0: उसको पोटाश और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन पौधे काफ़ी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफ़ी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज़्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेस्टल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: टपाल
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए। तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म

0: इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, और इसके और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है, और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आप यहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है, और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया। अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सेटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहा है उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं, और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान
1: जी
2: दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मानसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और

0: चुनौतियों पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है।

हम आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो मन भवन। प्रस्तोता रोहिता शर्मा, निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया।

नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को आज रोहिता शर्मा की ओर से। किसी शायर ने लिखा है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवास ही आवास है।

दोस्तों एक पुरखलूस सा आवाज, सुमन कल्याणपुर, हिंदी फिल्म संगीत का वो सुनहरी दौर जहां गीत संगीत आवाज बाकमाल बेमिसाल।

कभी लता मंगेशकर की छाया गिनी जाने वाली सुमन कल्याणपुर ने ऐसे गाने गाए जहां वहम नहीं यकीन सा होता कि ये तो लता ही है।

सुमन कल्याणपुर को याद करें। अलबत्ता यह आवाज हमारे साथ हमारे बाद यूं ही दिलों को प्यार से लबरेज करती रहेगी। लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर जी,
0: नमस्ते जी।
1: रोहिताल शर्मा जी से बात हो रही है।
0: अरे वाह, क्या हाल है आपके रिवार्ड साहब?
1: आवाज के हम सफर साथियों को शहडोल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रिवार्ड का प्यार भरा नमस्कार।
0: अरे वाह, क्या बात है रिवार्ड साहब, आपका फोन आज के हमारे इस कार्यक्रम में पहले पहल लगा है।
1: सर ये मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि रोहतास शर्मा जी के जब प्रोग्राम आएगा तो मैं कॉल अवश्य मिलाऊंगा।
0: अरे वाह, क्या बात है। अच्छा रिवार्ड साहब, आपने आखिरी बार फोन कब किया था?
1: लगभग 1 महीना कुछ दिन ऊपर हो गए हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारा जो एक नियम है, अपना जो सबका साझा एक नियम है, उसका आपने पालन किया और 1 महीने बाद में आपने कॉल किया।
1: सर मैं पालन हमेशा से करता आ रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ श्रोताओं से कि हमें सभी श्रोताओं का सहभागिता होनी बहुत आवश्यकता है। सभी को मौका मिलना चाहिए प्रोग्राम में और ये कॉल मैं करी है उसके बाद में शायद 2 महीने तक मैं करूँ।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ चंद्रकला रिवार्ड हैं, वो तो हैं ही, और कौन है?
1: बहुत सारे श्रोता जो आपकी मीठी आवाज का आनंद ले रहे हैं, सभी अपने साथ रहते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आज के दिन कार्यक्रम में हम आपको क्या सुनवाएं?
1: सर आज हम एक सुर कोकिला हमारे से बिछड़ चुकी है सुमन कल्याणपुर जी,
0: जी,
1: उनको हम याद करेंगे आज के प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल।
1: और जानवर फिल्म का गीत है सर, उस बहुत खूबसूरत आवाज हूबहू लता जी की आवाज है, सुमन कल्याणपुर जी को हम कभी भूल नहीं पाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जानवर फिल्म का, हसरत जयपुरी का लिखा ये गाना हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए आप सभी दोस्तों के साथ।
1: सर चंद लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: उम्र भर भटकता रहा तेरी ही तलाश में, उम्र भर भटकता रहा तेरी ही तलाश में, तू मिले भी तो क्या मिले उम्र गुजरने के बाद।
0: अरे वाह, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे और मुकद्दर में चलना था चलते रहे,
1: जी
0: वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, मगर उम्र भर हाथ मलते रहे।
1: क्या बात है, बहुत दर्द है इस बातों में।
0: सुनिए गाना।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, नमस्कार। मैं वंदना तिवारी बोल रही हूँ इंदौर
0: कहाँ?
1: से। जी
0: तो आकाशवाणी सूरतगढ़ के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ, बहुत अच्छे से एकदम स्पष्ट आवाज आती है यहाँ पर। जी,
0: अच्छे लगते कार्यक्रम हमारे?
1: बहुत अच्छे लगते हैं आपके, बहुत सारे कार्यक्रम सुने मैंने।
0: आपने मेरे ख्याल से पहले टेलीफोन भी मिलाया हमारे कार्यक्रम में, है ना?
1: जी हाँ, मिलाया था।
0: अच्छा, आज के दिन आप क्या सुनेंगे?
1: देखिए, ऐसे तो जो आप चाहें सुना दे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज सुमन जी की आवाज में कुछ सुनवाए आप।
0: जी बिल्कुल, आज का कार्यक्रम समर्पित हम उन्हीं को कर रहे हैं, सुमन कल्याणपुर को। सो उनका
1: जी,
0: गाया कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: जो आपको अच्छा लगे। देखिए, मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम सुने और आपके सारे गाने ऐसा लगता है जैसे कि सारे मेरे फेवरेट
0: जी,
1: हैं।
0: रेडियो पे जो गाने अच्छे लगते हैं ना, एक्चुअली पुराने गाने अच्छे लगते हैं, हम वही गाने बजाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, है ना?
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: सुमन कल्याणपुर का गाना हम आपको सुनवाएंगे। और कौन लोग हैं आपके साथ?
1: जी, मेरे साथ में मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं। कविता जी हैं, शोभा जी, मोनिका जी, अर्चना जी, मधु जी, और बहुत सारे और भी मित्र हैं जो आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपका
0: सारे सुनेंगे आज के दिन ये कार्यक्रम?
1: जी हाँ, सारे लोग सुनेंगे आपका ये जो प्रोग्राम है, ये हम सबको बहुत पसंद है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी और हम सब की पसंद का ये गाना।
1: जी, थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो सर जी, सर
0: नमस्कार जी।
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका सर अशोक सिंह बात कर रहा।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: अशोक सिंह,
0: अशोक सिंह।
1: काफी दिनों बाद लगा सर फोन। अरे
0: कितने दिन हो गए, मतलब कब मिला था आखिरी फोन आपने, याद है आपको?
1: सर हमको याद ही नहीं, 2 महीने से ऊपर हो गया होगा।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक नियम अपने लिए बना रखा है कि 1 महीने से पहले अपने कॉल ना करें, है ना?
1: जी सर, वो तो हर जगह है।
0: क्या करते हैं आप अशोक जी?
1: मैं रिटायरमेंट हूँ, 75 से रेडियो का दीवाना।
0: अरे वाह, क्या बात है अशोक
1: इनकम
0: जी।
1: टैक्स
0: अच्छे लगते हैं रेडियो सूरतगढ़ के कार्यक्रम आपको?
1: सब अच्छे लगते, हर जगह जुड़ा रहता हूँ तो आपके भी सुन लेता हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सुमन कल्याणपुर के कुछ गाने लाए हैं, चूंकि वो हमसे
1: जी
0: विदा
1: जी
0: हो चुकी है, तो आप उनका कौन सा गाना सुनेंगे?
1: सुमन कल्याणपुर का जी सर हो गया, जिंदगी इम्तिहान ले लेती है।
0: जी, बिल्कुल। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कौन सा बोल रहे हैं आप?
1: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ सर।
0: कहाँ से?
1: मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूपी उत्तर प्रदेश खंडिया गेट कॉलोनी जिला चाकू वाले रामपुर से जुड़ा हूँ सर। सर
0: अरे वाह, क्या काम करते हैं आप?
1: जो मेरा काम रहता है हैंडवर्क का रहता है, जो कढ़ाई का काम होता है, जरी का काम, सूटों पे जो सितारे और मोती रेशम सिलते हैं सर वो।
0: अरे वाह, बहुत नाजुक काम आपका।
1: जी,
0: क्या बात है, आपके हाथों को चूमने का जी चाहता हमारा।
1: जी सर, काफी मेहनत का काम है हमारा, और जब हम किसी सूट पे गले पे डिजाइन करते हैं या साड़ी पे करते हैं, लहंगे पे करते हैं, तो सर उसमें तरह तरह के फूल बनाते हैं और तरह तरह का मटेरियल लगाते हैं उसमें, तो
0: वाह,
1: काफी खूबसूरत बनाते हैं। कोई भी डिजाइन होता है, कोई भी फूल होता है।
0: क्या बात है। वो एक शेर मुझे याद आता है कि मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती है,
1: जी
0: मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती है, मैं भाई की कलाई के लिए राखी बनाता हूं।
1: जी बिल्कुल, कहना
0: कुछ
1: चाहूंगा कि लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है,
0: हाँ,
1: लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत।
0: अरे वाह, क्या बात है। गाना आपको कौन सा सुनवाए हम?
1: सर मुझे गीत सुनना है, फिल्म का नाम रहेगा नसीब, और गीत के वो रहेंगे जिंदगी इम्तिहानी लेती है।
0: अरे वाह, क्या बात है। सुमन कल्याणपुर का ये दो गाना आप सुनेंगे, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी सूरतगढ़ ये कार्यक्रम पेश कर रहा है।
1: जी
0: सुनिए।
1: सर, मैं आपके प्रोग्राम मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ, और काफी खूबसूरत आपके प्रोग्राम होते हैं, साथ ही साथ आपके प्रोग्राम तो खूबसूरत होते हैं और आप लोगों का प्रोग्राम पेश करने का अंदाज दिल को छू जाता है। निवी तारीफ की जाए आपके आपके कार्यक्रमों की और आपकी आवाज की हमारी नजर में कमी कम है सर। थैंक
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
1: यू सर, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो मन भावन।
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: छत्तीसगढ़ से कौन बोल रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े।
0: योगेश जांगड़ी।
1: हाँ जी।
0: योगेश भाई, आपने हमें पहली मरतबा फोन किया है क्या आज?
1: नहीं, पहली मरतबा तो नहीं, लेकिन काफी दिन हो गया भैया, 2-3 साल हो गया होगा।
0: जी, क्या करते हैं योगेश भाई आप?
1: खेती बाड़ी का मूल काम है
0: खेती बाड़ी करते हैं।
1: जी।
0: मौसम कैसा है इन दिनों उधर?
1: बहुत गर्मी है भैया अभी।
0: गर्मी है, बारिश वगैरह कुछ थोड़ा बहुत नहीं हुआ?
1: अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी मानसून का इंतजार है।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: मेरे को तो भैया लगभग 22-23 साल हो गया है। हाँ,
0: अच्छा। योगेश भाई, आज के इस कार्यक्रम में और कौन लोग हैं आपके साथ?
1: हमारा पूरा परिवार है भैया, और बहुत से रेडियो साथी भी हैं।
0: जी, बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं रेडियो पे आपने।
1: हाँ जी।
0: अच्छा योगेश भाई, गाना आपको हम क्या सुनवाएं आज?
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जो बांधता
0: अरे वाह, क्या बात है, ब्रह्मचारी फिल्म का ये गाना है ना?
1: जी, धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल, सुनिए आप अपनी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो,
1: श्रीमती नमस्कार। अच्छा,
0: नमस्कार जी।
1: आप मोहम्मद हनुमानगढ़ टाउन से हैं?
0: अच्छा, हिमाचल से हनुमानगढ़ आ गए हैं अब।
1: जी,
0: गाना कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: ये अप्रैल फिल्म फिल्म का गाना है जी, करते हैं करते रहेंगे। हाँ,
0: तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे।
1: साथ मेरे परिवार मेंबर है जी,
0: हाँ जी बताइए।
1: शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान।
0: अरे वाह, क्या बात! आपके सारे नाम तो जिस तरह आपको याद है उस तरह हमें याद है, हमारे रेडियो सूरतगढ़ को याद है पूरी तरह से।
1: हाँ, याद है ना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम सुनते हैं और कार्यक्रम में आपने फोन किया।
2: तुझे

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: प्रजाज जी, नमस्कार। कृष्ण
0: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: डाबी बात कर रहा हूँ, गांव टूंगिया, जिला
0: अरे
1: बालोतरा
0: वाह, क्या बात है डाबी साहब, आपका फोन आखिर मिल गया
1: से।
0: है ना।
1: चला तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, 11 बजे लगा है। मैं कहा तो शर्मा जी से बात करके ही रहना है,
0: जी बिल्कुल
1: सफलता मिल गई।
0: बिल्कुल। आखिरी बार आपने फोन कब किया था?
1: समय हो गया काफी सर, समझो 2-3 महीने हो गए।
0: 2-3 महीने हो गए। अच्छा, मौसम कैसा है उधर?
1: मौसम सर 2 दिन से आंधी तूफान बना हुआ है, और दिन को तेज धूप और गर्मी उमस भरी रहती है, और शाम को बरसात आ जाती है आंधी के साथ में।
0: अच्छा, तो फिर को रात को तो मतलब ठंडक हो जाती है।
1: नहीं 2 दिन से बहुत उमस है, कल रात को तो बहुत उमस थी, फिर 10-11 बजे रात को आंधी तूफान आ गया था। फिर भी रात को भी गोरबंद प्रोग्राम सुना था, विकास जी ने दिया था, अच्छा लगा प्रोग्राम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद
1: बस
0: आप।
1: एक श्रोताओं से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से
0: हाँ जी
1: कि सर जो भी श्रोता पत्र भेजने वाले उनको बोलना चाहता हूँ कि आप पत्र यदि भेज रहे हैं तो मेल और व्हाट्सएप संदेश नहीं करें, और जो व्हाट्सएप संदेश करना चाहते हैं उनको मेल और पत्र नहीं भेज रहे हैं, और जो मेल भेजना चाहते हैं उनको व्हाट्सएप और पत्र नहीं करना है।
0: जी, ऐसा हम श्रोताओं को कहते भी रहते हैं और आपने भी अब उनसे अपील की है, तो शायद आपकी अपील का कुछ असर हो। आज के
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम
1: बिल्कुल।
0: में आपके साथ और कौन है?
1: सबसे पहले तो मैं अपनी पसंद का गाना आज बता देता हूँ आपको, फिर
0: जी
1: कुछ दोस्तों का नाम दूंगा। अभी 2 दिन पहले सर मशहूर जो पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी का देहांत हो गया है,
0: जी
1: तो बहुत ही अच्छी गायिका थी, और उन्होंने जो भी इस फिल्मी दुनिया में जो भी हिंदी गाने गाए हैं वो सब सबसे अच्छे और खूबसूरत गाने हैं। तो
0: बिल्कुल सही बात है
1: उन्हीं की गानों में से मेरी पसंद का गाना है सगुन फिल्म से,
0: जी।
1: और रफी साहब की आवाज उनके साथ में है, और गीत के बोले पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बजते
0: अरे वाह, क्या बात, प्यारा सा
1: रहे।
0: गाना मांगा है, पर्वतों के पेड़ों पर।
1: जी जी
0: जरूर हम गाना आपको
1: जी
0: सुनवाएंगे, नाम बताइए अपने दोस्तों के।
1: जी सर, मेरे साथ में मेरी वाइफ राधा डाबी, मेरा छोटा भाई भूपेंद्र डाबी, और मेरा लड़का विक्रम, और मेरी बेटी अर्चना डाबी साथ में इधर। दोस्तों के नाम भी ले लूं आप यदि
0: हाँ
1: आ कैसे
0: बिल्कुल
1: रहे हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सर? कुछ एक मेरे दोस्त हैं अपने गांधीनगर गुजरात से, सुरेश राठौड़ जी, वो भी आपका प्रोग्राम नियमित सुनते हैं।
0: जी
1: शाहजहापुर मध्य प्रदेश से मनमोहन राजावती, और सुभाष गोदारा जी पंजाब से, और सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से।
0: अरे वाह, सब दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार, और ये गाना आप सबके लिए।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ
1: जी,
0: जी
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी।
1: फैसल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: फैजल इमाम बोल रहे हैं आप? अच्छा, मौसम इन दिनों फैजल कैसा है बिहार में?
1: बहुत गर्मी हो रही है।
0: गर्मी
1: पिछले
0: है
1: दो
0: ना।
1: दिन पहले तो मौसम ठंडा था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज और कल से मौसम बहुत गर्म है
0: गर्म है। क्या करते हो फैजल आप?
1: सर। मैं यूडीसी पोस्ट पे कार्यरत हूँ
0: अच्छा, किस महकमे
1: और
0: में?
1: मैं कॉलेज है उसमें हूँ,
0: कॉलेज में है?
1: सरकारी कॉलेज। जी।
0: अरे वाह, क्या बात है। आप तो फिर बच्चों के बीच बच्चे बने रहते हैं हमेशा, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चों के बीच बड़े बच्चों को रेडियो के लिए प्रेरित भी करते रहते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बहुत अच्छी बात है फैजल। ये तो आज के दिन आपके साथ और कौन दोस्त हैं आप?
1: फिलहाल तो सर बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी मैं जब काम में हूँ तो
0: जी
1: फिलहाल तो अभी कोई नहीं आते हैं
0: जी बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: सर। ऐसे तो सुमन कल्याणपुर का अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ,
0: जी
1: उन्हीं का एक गीत है सूरज फिल्म का, मोहम्मद रफी द्वारा गाया हुआ उनके साथ। सुना
0: हाँ।
1: है तुमसे प्यार मुझे मेरे रास्ता।
0: वाह, जितने की आसमान पे तारे हैं बेशुमार।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: बिल्कुल, ये गाना हम आपको सुनवाएंगे फैजल। आप सुनते रहिए आकाशवाणी सूरत करके कार्यक्रम।
1: थैंक यू सर।
2: इतना है तुमसे प्यार मुझे।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो मन भवन।
0: हाँ जी, हेलो मन भावन।
1: सर जी, मैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल बोल रहा हूँ।
0: राजेश भाई, आपने आखिरी बार फोन कब किया था हमारे कार्यक्रम में?
1: मैंने ये कार्यक्रम के लिए पहली बार फोन किया सर जी।
0: पहली बार फोन किया आपने?
1: जी।
0: अच्छा राजेश भाई, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं एक्चुअली छत्रपति संभाजी नगर में रिकवरी का बैंक रिकवरी का DSA हूँ, तो
0: अच्छा,
1: बैंक रिकवरी करता हूँ मैं।
0: काम तो आपका अच्छा है, लेकिन आप परेशान तो नहीं करते ज्यादा रिकवरी के दौरान?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान तो नहीं करते हैं। जैसे
0: चलिए,
1: कस्टमर के हिसाब से, मतलब उनसे पेमेंट कलेक्ट करवाते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा अपना काम होता है। खैर, काम तो
1: जी
0: करना ही पड़ता है इंसान को। रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: रेडियो एक्चुअली वैसे कहा जाए तो बचपन से, लेकिन सक्रिय सहभागी मैं 1992 से हूँ। तो जैसे यहाँ पे स्थानीय रेडियो श्रोता, रेडियो आकाशवाणी है, तो
0: जी
1: वहां से सहभागिता शुरू हुई मेरी। फिर धीरे धीरे बाकी सब, अभी तो फिलहाल मोबाइल एप्लीकेशन पे भारत के सभी आकाशवाणी हम सुन रहे हैं,
0: जी
1: इसलिए बहुत सारी आकाशवाणी मेरी सहभागिता रहती है।
0: आकाशवाणी सूरतगढ़ को कहाँ
1: पर
0: ठहराते हैं इन सारे आकाशवाणी केंद्र के बीच में?
1: बिल्कुल ये अलग है, और यहाँ के प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं।
0: अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं ज्यादातर फरमाइशी प्रोग्राम सुनता हूँ। गीतमाला है, गीत बहार है, गुलाबहार में है, मन भावा में,
0: जी,
1: और
0: बहुत
1: उसके
0: बहुत
1: साथ
0: बढ़िया।
1: साथ बाकी सभी जो भी मतलब समय अनुसार समय मिलता है तो
0: जी
1: कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: जी आज के कार्यक्रम में आपको क्या सुनवाएं?
1: आज के कार्यक्रम में प्रथम मैं सुमन कल्याणपुर जी के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि
0: जी
1: उन्हीं के गाए फिल्मी गीतों पर आधारित आज का ये हेलो मन भावन है। तो
0: जी
1: मैं फिल्म दिल ही तो है का, यूं ही दिल ने चाहा था, ये सोलो गीत सुनना चाहता हूँ उनकी आवाज में।
0: क्या बात है, बिल्कुल राजेश भाई, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, आप सुनिए अपने दोस्तों के साथ।
1: जी, ओके, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी। आवाज हमें कुछ जानी पहचानी लगी।
1: मैं सर कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ, 4M से।
0: कुलविंदर भाई, क्या हाल है आपके?
1: हाँ बढ़िया सर जी।
0: अच्छा कुलविंदर भाई, आपके साथ और कौन है?
1: साथ में ये शोकप्रीत है, जसदीप है, प्रेम राज जी, अंकित जी, अजय सुनते हैं।
0: ये सारे सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, इन दिनों आप खेती बाड़ी में क्या कुछ लगा है खेत में आपके?
1: अभी तो सर नरमे की बिजाई हुई कराई है।
0: अच्छा, नरमे की बिजाई है। सब्जी वगैरह नहीं लेते आप?
1: हाँ जी, सब्जी नहीं बीते सर।
0: नहीं बीजते? अच्छा, आसपास तो खेतों में सब्जी कई लोग लगाते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी, लगाते हैं सब्जी बहुत।
0: है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: मैंने कहा कहीं आप कहो कि सब्जी लगाते हैं तो हम भी कहें कि आपको यार कुलेंद्र भाई बंगे हमें अच्छे लगते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया
0: अच्छा कुलेंद्र भाई, गाना आपको कौन सा सुनवाए?
1: सुमन कल्याणपुर सुना दे, कोई भी गीत सुना दे।
0: सुमन
1: हाँ जी,
0: कल्याणपुर को याद करते हुए कोई भी गाना आप
1: याद
0: सुनेंगे?
1: करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी सुना दे।
0: चलिए सुनिए कुलेंद्र भाई।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: भूपेंद्र मिशन।
0: अरे वाह, क्या बात है विजन साहब, आपकी आवाज के तो दीवाने हम भी रहे हैं एक जमाने में।
1: 5 साल हो गए मुझे आपकी फोन मिलाते मिलाते, हाल ही हो गया, अब सीनियर सिटीजन बना दिया, फोन नहीं उठाते हो।
0: नहीं, ऐसी बात नहीं, आप तो भूपेंद्र भाई हमारी जान है, हमारी शान है। आपका कार्यक्रम में फोन आया, आपको हम सलाम करते हैं।
1: बिल्कुल, और मेरी भी आप लोगों के प्रति शुभकामनाएं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, 5 साल बाद फोन लगा तो सही।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया भूपेंद्र सर। और कौन है, मैडम तो है ही साथ में, आपके बच्चे सबको नाम बताएं।
1: मैडम है, और आजकल पहले जैसे मेरी बहन की बेटी होती थी बेबी बेबी खुशबू, उसी तरीके से आज हमारे साथ मेरी पोती रहती है बेबी जानवी का।
0: अरे वाह, क्या बात है, पोती के साथ खेलते हैं पूरा दिन आप।
1: बिल्कुल, पूरा दिन मैं क्या खेलता हूँ, वो खिलाती है मुझे, असल में मैं उसका जीवन जी रहा
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल सही बात है भूपेंद्र भाई, बहुत बढ़िया।
1: बिल्कुल,
0: अच्छा, आज के कार्यक्रम में गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: और आज मैं अभी रास्ते में हूँ, अभी पिछले 15 दिन से सिक्किम गंगटोक में था,
0: जी
1: और यहाँ आने के बाद में मौसम बहुत चेंज रह रहा है, वहाँ 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर रहता है सिर्फ।

0: जी जी जी
1: सुमन कल्याणपुर का कोई भी गीत सुना दीजिएगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी दो तीन दिन पहले सुमन कल्याणपुर को अपने यहाँ से सुना है
0: जी जी,
1: लेकिन आप सुनाइएगा कोई भी गीत, अच्छा लगेगा।
0: ये प्यारा सा गाना सुमन कल्याणपुर का आपके लिए
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं?
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: अरे वाह, क्या बात है हारून बाबू, आपने बहुत दूर से हमें फोन किया। कैसे लगते हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कार्यक्रम? आप
1: बहुत अच्छे लगते हैं,
0: अच्छे लगते
1: हेलो
0: हैं
1: आकाशवाणी जो आता है ना बुधवार को 10 बजे से,
0: जी।
1: वो अच्छा लगता है, लाजवाब।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी करते हैं। इन दिनों गर्मी
1: जी
0: होगी है ना?
1: जी अभी तो थोड़ी बहुत राहत तो हुई है, लेकिन अभी 4-5 रोज से अच्छी आंधी चल रही थी, 2-3 दिन से। पहले भी आंधी तूफान चला, लेकिन
0: अच्छा,
1: जब से आंधी तूफान 2-3 दिन से है, थोड़ा सी राहत भी मिल गई है। बादल भी हो गए हैं, 2-3 दिन से बादल भी हो रहे हैं।
0: हारून साहब, आप जिस गांव में रहते हैं,
1: जी
0: वो गांव कितना बड़ा है?
1: गांव छोटी सी बस्ती है।
0: छोटी बस्ती है।
1: हाँ जी, कुल मकान 60-70 मकान होंगे,
0: अच्छा,
1: कुल समाज के आदमी रहते हैं उसमें।
0: और स्कूल वगैरह?
1: हाँ स्कूल भी है बकायदा, 8 छठी तक का।
0: अच्छा, बच्चे बच्चे जाते पढ़ने? हाँ
1: जी बच्चे तो जाते हैं, लेकिन अभी छोटे हैं।
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: भाई बड़ा मंझला भाई उधर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
0: अच्छा, रेडियो सुनना आपको कैसा लगता है?
1: बस रेडियो का तो एक तो दीवानगी है,
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा लगता है लाजवाब।
0: अरे
1: कम से
0: वाह,
1: कम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है। अच्छा, खेत में जब होते हैं तो रेडियो साथ होता है आपके? हाँ
1: ये रेडियो तो नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल ऐप के जरिए सुनता हूँ पूरे स्टेशन।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मैं 2 या 3 महीने में फोन लगाता हूँ पूरे
0: हाँ
1: हालो आकाशवाणी में, गैप गैप से लगाता
0: हाँ बहुत अच्छी बात है। आपके पीछे जो पक्षी बोल रहे हैं, इसका मतलब खेत में हो क्या अभी आप?
1: हूँ। नहीं मैं पेड़ के नीचे है, आम वगैरह पेड़ के नीचे छाया आ गया
0: आम का पेड़ लगा है?
1: जी।

0: लगा है ब्रो, इसमें कूलर में आता है तो उसमें डिस्टर्ब हो रही थी बात करने में।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आम के पेड़ के नीचे आप खड़े हैं। एक शेर हमें याद आ रहा है कि
0: जी
1: अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप,
0: जी
1: अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप।
0: जी
1: है ना, गाना कौन सा सुनेंगे
0: बहुत
1: आप?
0: अच्छी, बहुत अच्छी शायरी लगी आपकी, लाजवाब।
1: गाना कौन सा सुनेंगे आप?
0: सुमन कल्याण जी का आवाज में कोई सा भी गाना सुनवा देना, इस दुनिया में नहीं रही। जी
1: जी बिल्कुल, हम आपको सुमन कल्याणपुर का ये गाना सुनवाते, सुनिए।
0: धन्यवाद आपका।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में सूत्रधार की भूमिका में मैं आपका दोस्त रोहिता शर्मा, संयोजक नवीन सिसोदिया, तकनीकी साथी अजय नूनिया और कप्तान सिंह, डॉक्टर बशीर बद्र को याद करें उनके शेर के साथ सुमन कल्याणपुर को श्रद्धा सुमन भेंट करें कि गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। नमस्कार।

0: गीतों का कार्यक्रम हेलो मन भवन, प्रस्तोता रोहिता शर्मा, निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुने।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:52 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।